प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि शक संवत 1948, तदनुसार 2 जून 2026 दिन मंगलवार, प्रातः के 5:55 हुए हैं और अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्वेच्छा भक्ति संगीत कार्यक्रम पुष्पांजलि में। मंगलवार का पावन दिन है और जब बात आज के दिन की हो तो मन अपने आप उन महाबली के चरणों में झुक जाता है जो संकट मोचन है, जो भक्ति की पराकाष्ठा है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की आराधना के साथ।

हर शुभ कार्य की शुरुआत हर विघ्न को हरने वाले से होनी चाहिए जी। तो अपने इस पुष्पांजलि में सबसे पहले हम याद करते हैं प्रथम पूजनीय रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी को, जिनकी सूंड तिरछी है, जिनका मन विशाल है और जिनकी कृपा अपार है।

हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वे रुद्र अवतार हैं, यानी स्वयं शिव जी का ही रूप। तो आज हनुमान जी के दिन पर उनके आराध्य देवों के देव महादेव को याद करते हैं। वैराग्य जिनके श्रृंगार में है और ब्रह्मांड जिनके डमरू की थाप पर थिरकता है। आइए उन्हीं भोलेनाथ के चरणों में श्रद्धा के दो फूल अर्पित करते हैं।

जहाँ शिव है वहाँ शक्ति, बिना शक्ति के तो सृष्टि की कल्पना भी अधूरी है। माँ पार्वती जो ममता की मूरत है और दुष्टों का संहार करने वाली दुर्गा भी। जब जीवन में कभी कमजोरी महसूस हो तो माँ की शक्ति को याद कर लीजिएगा, भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठेगी।

प्रातः के 6:27 हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम पुष्पांजलि, आज स्वेच्छा के साथ।

कहते हैं जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी के हृदय में वास करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का नाम ही अपने आप में एक महामंत्र है और राम नाम की महिमा तो स्वयं ईश्वर भी गाते हैं।

अदृश्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी के हृदय में वास करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का नाम ही अपने आप में एक महामंत्र है। और राम नाम की महिमा तो स्वयं ईश्वर भी गाते हैं।

बड़े बड़े योद्धा बड़े चिंतित खड़े थे और हनुमान जी कोने शांत भाव के साथ मौन बैठे थे। तब जामवन जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई और कहा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है कठिन है जो आपके लिए असंभव हो। और जैसे ही जामवन जी के शब्द हनुमान जी के कानों में पड़े, उनके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आया और तब उन्होंने ये नहीं देखा कि समुद्र कितना बड़ा है, बल्कि अपने भीतर के राम नाम पर विश्वास किया। और फिर जो हुआ वो तो हम सबको पता है। जब तक हनुमान जी चुप बैठे थे, समुद्र असंभव लग रहा था। जैसे ही उन्होंने अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास किया, वही समुद्र रास्ता बन गया। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई समुद्र जैसा बड़ा संकट सामने आए ना, तो घबराइएगा नहीं। आंख बंद कर एक गहरी सांस लीजिएगा और अपने भीतर को याद कर कहिएगा, जय श्री राम।

कभी-कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगने लगता है कि सामने खड़ी मुसीबत बहुत बड़ी है और हम बहुत छोटे। हम हार मान लेते हैं, पर ऐसे वक्त पर संकट मोचन हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि ताकत हमारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपे विश्वास में है। बात उस वक्त की है जब सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी की टुकड़ी समुद्र के किनारे खड़ी चिंतित थी कि कौन इस विशाल समुद्र को पार करेगा। अंगद, जामवंत जैसे महान

भक्ति में जब तक प्रेम का रंग ना घुले तब तक आनंद अधूरा रहता है, और प्रेम की जब भी बात आती है तो जुबान पर एक ही नाम आता है, राधे कृष्ण। निश्चल प्रेम, वो यमुना का किनारा और वो कान्हा की बांसुरी की तान।

0: अक्सर हम भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ईश्वर किसी पते पर नहीं रहते, वो तो हमारे विश्वास में रहते हैं। भक्ति का मतलब सिर्फ हाथ जोड़ना नहीं है, भक्ति का मतलब है खुद को पूरी तरह से उन परम शक्ति को सौंप देना, इस भरोसे के साथ कि जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे। वक्त इतनी जल्दी आगे बढ़ गया कि पुष्पांजलि भक्ति संगीत कार्यक्रम का एक घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। और अब कार्यक्रम पुष्पांजलि को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज हनुमान जी की कृपा से आपके मन को शांति और शक्ति दोनों मिलेगी। चलते चलते बस इतना ही कहना है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, क्योंकि हमारे साथ महाबली बजरंग बली हैं। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आज की पुष्पांजलि का ये आखिरी भजन सुनते रहिए।
1: भक्ति पर

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
0: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
1: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को आज एक और टूरिस्ट स्पॉट मिल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से कराए गए चिलुआ ताल के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य का आज लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आज कुशीनगर में 376 करोड़ की 271 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तमकुहीराज में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का निरीक्षण, योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण करने के साथ ही मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। वो कुशीनगर विकास भवन में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। इनमें प्रदेश स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए

टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। वहीं जनपद स्तर पर टॉप 10 में स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों को 21,000 रुपए, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकलविहीन ढंग से संपन्न हो रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। 35,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। सुश्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण में जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का आग्रह किया है। मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी हिस्से में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं कल प्रदेश के कई जिलों में मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। हमीरपुर और जौनपुर में तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहे और कहीं कहीं बारिश भी हुई। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे अखबारों की सुर्खियों के साथ प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

नमस्कार सुप्रभात, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं स्वेच्छा। सुबह की इस ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी होती है और इस खामोशी में अगर किसी पुराने गाने की धुन घुल जाए तो ऐसा लगता है जैसे दिल को उसकी पसंदीदा आवाज मिल गई हो। तो चलिए आज के इस हसीन सुबह की शुरुआत करते हैं मोहब्बत के कुछ ऐसे सुरों के साथ जो सीधे आपके रूह को छूने लगते हैं।

इसलिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होते

सुबह की पहली चाय का कप जब हम हाथ में लेते हैं तो अक्सर पहला ख्याल उन्हीं का आता है जिनसे हम बेपनाह प्यार करते हैं। वो तो और बड़ा खूबसूरत था जब किसी की यादों में खोकर चाय ठंडी हो जाती थी और दिल गर्म जज्बातों से भर जाता था। तो आज की चाय की चुस्की के साथ पेश है मोहब्बत का ये बेहद खूबसूरत तराना।

आजकल मोहब्बत टेक्स्ट मैसेज और इमोजीज पर सिमट कर रह गई है। पर याद कीजिए वो रेट्रो का दौर, जब सिर्फ एक बार हाथ छू जाने पर हफ्तों तक नींद नहीं आती थी। वो एक छोटी सी मुस्कुराहट, वो चोरी छुपे देखना और धड़कनों का बेकाबू हो जाना, उस मासूम से इश्क का जादू आज भी इन पुराने गानों में जिंदा है।

मोहब्बत में जो मजा इंतजार का है वो आज के इस फास्ट फॉरवर्ड जमाने में कहां। वो हफ्तों लगाकर एक खत लिखना, उसमें गुलाब की एक पत्ती छुपाना और फिर धड़कते दिल से उसके जवाब की राह देखना। उस कागज पर सिर्फ स्याही नहीं, रूह छिपी होती थी।

7:28 का वक्त सुबह की इस खिलखिलाती सुबह प्रातःकाल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ स्वेच्छा, और आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत।

याद है अपनी ज़िंदगी का वो पहला एहसास जब किसी को पहली बार देखकर लगा कि वक्त ठहर गया हो। ना तब कोई बात हुई ना कोई वादा, बस एक नज़र मिली और पूरी कायनात खूबसूरत लगने लगी। आज सुबह सुबह दिल के किसी कोने में दबी उसी पहली नज़र की मोहब्बत को आइए जगाते हैं इस नगमे के साथ।

0: वेरी गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग टीचर.
2: गुड मॉर्निंग बेटा.
3: गुड मॉर्निंग बॉस.
4: गुड मॉर्निंग मम्मा.
5: गुड मॉर्निंग.
6: गुड मॉर्निंग.
7: गुड मॉर्निंग.
8: गुड मॉर्निंग.
9: गुड मॉर्निंग.
10: गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हेलो एंड हाउ आर यू.
11: करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, बर्थडेज, ट्रैफिक, वेदर, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट, सब कुछ मिलेगा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग लखनऊ में हर सुबह 8:15 से ओनली ऑन रेनबो, धड़कन लखनऊ की.

इश्क सिर्फ शुरुआती दिनों की बात या शुरुआती दिनों का नाम नहीं है। असली मोहब्बत वो है जो उम्र के साथ उस ढलान पर भी साथ निभाए, जब चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएं और आँखों में वही पुराना सम्मान और प्यार नजर आए। जैसे हमारे ये पुराने गाने हर दौर में लाजवाब रहते हैं, वैसे ही वो उम्र भर का साथ भी सदाबहार होता है।

0: कभी कभी जब सुबह सुबह हल्की सी बूंदा बांदी होती है तो सौंधी मिट्टी की महक के साथ ही दिल और भी खिल उठता है। खिड़की पर पानी की बूंदे और दिल में बस एक ही शख्स का चेहरा। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो ये अगला गाना खास आपके ही जज्बातों को बयां करने के लिए है।
1: सुनो कहा
2: सुना
1: कुछ हुआ क्या
2: अभी तो नहीं।

मोहब्बत के इन्हें खूबसूरत बातों और तरानों के साथ अब वक्त हो गया है आज के इस सफर को यहीं थामने का। चलते चलते बस इतना ही कहना है कि दुनिया में नफरत बहुत है, आप बस प्यार बांटते चलिए। जिनसे मोहब्बत करते हैं आज उनसे बता जरूर दीजिए कि वो आपके लिए कितने खास हैं। वक्त हो गया है मेरे यानी स्वेच्छा का सदाबहार गीत कार्यक्रम से आपसे विदा लेने का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार हिंदी में हमारे दिल्ली केंद्र से, और ठीक 8:15 बजे होगी हमारी आपकी मुलाकात एक बार फिर से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ के साथ। तब तक के लिए आज के कार्यक्रम सदाबहार गीत का ये आखिरी गाना आप सभी के लिए।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटक

0: भारतीयों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउं लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउं लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है।

0: साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
1: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुँचता है।
3: बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
4: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे

0: वाददाता से।
1: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत।
1: सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
2: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
1: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
2: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
1: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
0: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
1: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
2: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान, द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7।

0: 107 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो लेकर हाजिर हो चुके हैं आपके दो दोस्त। मैं हूँ स्वेच्छा और हमारे साथ जुड़ चुकी है एक और आवाज।
1: जी हाँ, मैं हूँ आपका दिल आरजी निखिल। वेरी वेरी लवली गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो। स्वेच्छा, सुबह की जो शुरुआत है आज मेरे लिए बहुत ही खास रही, क्योंकि जब मैं सो के उठा तो ड्यूटी करने आना था रेनबो में, और उसके बाद मैं रेडी वगैरह होकर घर से अपनी 2 जून की रोटी के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब रास्ते से निकल ही रहा था तब पता आया चला कि आज 2 जून की रोटी के लिए निकला भले हूँ, लेकिन आज तो रोटी नहीं पूरी मिलेगी।
0: जी, पूरे शहर में भाई ज्येष्ठ माह चल रहा है, बड़ा मंगल है आज, हनुमान जी का खास दिन। और आज के दिन बड़ा मंगल जो होता है ना, कोई भी खाली पेट नहीं सोता।
1: बिल्कुल, कोई भी खाली पेट नहीं सोता है, क्योंकि लखनऊ की गलियों तक में आपको कहीं ना कहीं भंडारा जरूर मिलेगा, और वो भगवान का जो प्रसाद होता है ना, वो अपने आप में ही एक बहुत अद्भुत होता है। फिलहाल आज मंगलवार का दिन है, 2 जून की तारीख, साल का 154वां दिन है, और गुड मॉर्निंग लखनऊ का प्रोग्राम निखिल है सुरक्षा के साथ, तो कुछ स्पेशल है, बहुत सारी बातें, सारी चीजें आपको बताएंगे। फिलहाल इस म्यूजिकल ट्रैक के साथ बने रहिए।

0: आज का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र
1: जी। सुबह सुबह जब हम किसी पॉजिटिव नोट के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो हमारा दिन और भी खूबसूरत हो जाता है और हमारे विचार और भी सुंदर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं आज का मॉर्निंग मंत्र हमसे क्या कहता है।
2: आज का मॉर्निंग मंत्र कहता है कि झुकने का अर्थ ये कदापि नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दिया। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। ईश्वर और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इन्हीं में से एक है, इसलिए हमेशा सभी का सम्मान करते रहिए।

0: मुद्दा आज का।
1: जी तो अब बारी है गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम में आप सभी से आज का हमारा जो मुद्दा है उसको शेयर करने की, क्योंकि मुद्दा हमारा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही खास है, आप सभी के लाइफ से जुड़ा हुआ है। और वो मुद्दा क्या है?
2: मुद्दा बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज को लेकर टारगेट सेट करता है और वो टारगेट उसका इसलिए भी सेट किया जाता है ताकि वो उसको अचीव करे और पूरी तरीके से मेहनत करे और आगे बढ़ता रहे। तो हमारा आज का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है कि अपने टारगेट को हासिल करने के लिए आपके द्वारा प्रयास किस तरह से किए जा रहे हैं, वो क्या प्रयास है, आप हमसे साझा कर सकते हैं।
1: जी हमारी ईमेल आईडी है fmakashwani@gmail.com।
2: वैसे साथ में आज का दिन मंगलवार है तो बहुत सारे लोगों के भी कई सारे टारगेट होते हैं मंगलवार के दिन, स्पेशली खासकर बड़े मंगल पे, तो वो भी शेयर करिए हमसे और बने रहिए एफएम रेनबो पर निखिल और शिक्षा के साथ।

0: 8:34 का वक्त 100.7 FM रेनबो आप सुन रहे हैं स्विक्षा और निखिल के साथ। जी हाँ, गुड मॉर्निंग लखनऊ का प्रोग्राम चल रहा है और जैसे कि गुड मॉर्निंग लखनऊ में हम आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं जिससे कि आप अपडेट रह सके, तो उसी कड़ी में अब हम बात करने वाले हैं आज कौन सा स्पेशल डे है जिसको हर जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या फिर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे।
1: आज है 2 जून और आज मनाया जा रहा है तेलंगाना स्थापना दिवस। ये हर साल 2 जून को मनाया जाता है और ये दिन 2014 में भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना के गठित की स्मृति में मनाया जाता है।
0: और आपको बता दें कि ये जो राज्य बना वो आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर बना, जो कि दशकों की लंबी संघर्षपूर्ण आंदोलन का ही परिणाम था और वर्षों तक चले इस आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के बाद साल 2014 में संसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित किया जिससे तेलंगाना राज्य का गठन हुआ।
1: और हमें एक और राज्य मिल गया। साथ ही आज मनाया जाता है फेस्टा डेला रिपब्लिका, यानी इटली में 2 जून 1946 को हुए जनमत संग्रह के बाद राजशाही समाप्त होने और गणतंत्र की स्थापना की खुशी में ये राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है।
0: तो ये तो कुछ विशेष दिन हुए, इसके अलावा एक विशेष दिन और भी है जो कि सभी के लिए है, वो इसलिए है खासकर लखनऊ वालों के लिए सबसे ज्यादा खास होता है ये, क्योंकि आज है बड़ा मंगल, पांचवा बड़ा मंगल है ज्येष्ठ मास का और इस दिन लोग पूजा अर्चना विशेष तौर से हनुमान जी की जाती है। इसके अलावा जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया जाता है।
1: बिल्कुल, तो भाई आज के दिन का बिल्कुल उत्साह मनाइए, खुशी मनाइए और हमारे साथ सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ।
1: जी हाँ, गुड मॉर्निंग लखनऊ सुनते रहिए। 8:40 का वक्त हो चुका है, क्योंकि गुड मॉर्निंग लखनऊ एक ऐसा ही आम प्रोग्राम नहीं है आप सबके लिए, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं बहुत सारी अपडेट्स और आपकी हिस्ट्री से जुड़े किसका स्पेशल बर्थडे है, और इसके अलावा हमारा मॉर्निंग मंत्र और मुद्दे पर भी हम बात करते हैं। और मुद्दे पर बात करने के लिए हम आप सबके लिए एक मेल का ऑप्शन रखते हैं, जिसके जरिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। तो अब हम उसी की बात करने वाले हैं। शिक्षक, किस किस का मेल आया हुआ और भाई क्या लिखा है उन्होंने खास?
2: जी, रामराज जी हमें मेल करते हैं, लिखते हैं, श्री गणेशा इनवा सदाबहार गीत इन्हें पसंद आया, जिला रायबरेली से मेल कर रहे हैं और लिखते हैं, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको नमस्कार और शुभ आशीर्वाद, गाने इन्हें बहुत अच्छे लगे, धन्यवाद।
1: अगला मेल है वारिस अली खान जी का, जो कि आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त स्वेच्छा को खान परिवार का प्यार भला सलाम भेजा इन्होंने, और इनको ये कहना है कि आज की रोटी जरूर खाएं, क्योंकि 2 जून की रोटी किस्मत वालों को मिलती है और मेहनत करने वालों को भी मिलती है। और इन्होंने लिखा है कि सुबह 6 बजे से जुड़ा हुआ, बहुत ही शिद्दत से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। पुष्पांजलि जो प्रोग्राम था, उसके जो भजन थे, गाने थे, इनको बहुत ही ज्यादा पसंद आए और इनको मेलोडी सॉन्ग सुनने का बहुत शौक है। तो अगर इनका ये भी कहना है कि अगर सुनने को मिले तो अच्छा है वो भी।
2: बबीता राव हमें गुड मॉर्निंग लिखकर भेजती हैं, साथ ही में हमारे साथ सुबह 5:55 से जुड़ी हुई हैं, सदाबहार गीत और पुष्पांजलि कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना प्यारा सा गुलदस्ता भेजने के लिए।
1: अगला मेल है महेंद्र दीपन जी का, जो की

0: गांव रूण जिला नागौर राजस्थान से हमेशा हम लोगों को मेल करते रहते हैं और इन्होंने लिखा है कि आज की सुबह की शुरुआत आपके सदाबहार गीतों और आपकी मधुर आवाज के साथ बहुत ही शानदार रही। रात भर हुई बारिश के बाद खिड़की से आती ठंड हवा और साथ में चाय की चुस्कियों के साथ सदाबहार गीत का ये प्रोग्राम मन को बहुत सुकून दे रहा है उनको।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मतलब कुछ लाइनें इन्होंने एक ये भी लिखी है कि शब्दों में जादू और गीतों की है पहचान, सुनकर आपकी आवाज महक उठा है जहान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेल करने के लिए और कितनी अच्छी लाइनें लिखी उन्होंने।
1: राजेश कुमार जी हमें गुड मॉर्निंग के साथ लिखकर भेजते हैं। इन्होंने एक घंटा पहले मेल किया था, लिखा है कि मैं इस समय खाना बना रहा हूँ और आप गाने जो बजा रही है पसंद आ रहे हैं, बढ़िया एंजॉय करते हुए खाना बनाते हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: भैया मोनू सेठ जी ने आज बड़े मंगल के अवसर पर बड़े मंगल की शुभकामनाएं दी है और साथ में लिखा है कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। मतलब हे प्रभु, संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो आपसे नहीं हो सका, आपकी कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसा इससे सभी कार्य संभव हो जाते हैं
1: जी। और अब आते हैं सुधांशु जी के मेल पर। इन्होंने सुबह से हमें कई सारे मेल्स कर दिए हैं। इन्होंने सुबह का कार्यक्रम पसंद है पुष्पांजलि सदाबहार गीत और फिर इन्होंने मेल किया कि इन्हें सुविचार आज का बहुत अच्छा लगा और अब इन्होंने मुद्दे पर बात की है कि मेरा टारगेट पढ़ाई करके सरकारी नौकरी पाने का है। वर्तमान में ये लखनऊ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और मैं अपने इस सेमेस्टर की तैयारी के साथ साथ सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए भी लगातार पढ़ाई कर रहा हूं। और FM रेनबो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ऐसा टॉपिक दिया जाता है कि हम लोग खुलकर बात रख सकें, फिर चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज़ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए सुधांशु जी।
0: बिल्कुल, सुधांशु जी का मेल ऐसा है कि उसको देख करके हम लोग को भी ऐसा लगता है कि आप FM रेनबो को लगातार सुनते भी हैं और साथ में उससे कुछ सीखते भी हैं। उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी इससे सीखेंगे और टारगेट अचीव करेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जो मॉर्निंग मंत्र हम लोग सुनाते हैं उसको भी अचीव करेंगे। इसके अलावा भी हमें बहुत सारे लोगों के मेल आए हुए हैं, धीरपाल यादव जी का, छविराम जी का, शैलेंद्र जी का, अरुण कुमार जी का भी, तो इन सब के भी मेल हम अपने गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम में लेंगे, बताएंगे आपको उन्होंने क्या लिखा है। तब तक उससे पहले ये एक म्यूजिकल ट्रैक आप सबके लिए।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।
1: जी हाँ दोस्तों, आपका कंप्लीट नाश्ता शो चल रहा है जिसका कि नाम है गुड मॉर्निंग लखनऊ ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो पर, जहां आपके साथ है दो दोस्त निखिल और शिक्षा। तो अब जो हम बात करने वाले हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ के प्रोग्राम में, वो आपसे यानी पूरे समाज से जुड़े हुए और जो कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनसे जुड़े हुए, और जो आपकी रोज बिजली की दर है या बिजली का मीटर है उससे जुड़ी कुछ बात करने जा रहे हैं।
2: बिल्कुल, मीटर पोस्ट पेड अगर नहीं करवाया है आपने अभी तक तो फॉर्म भर दीजिए। इससे रिलेटेड आज की खबर ये है कि राजधानी में जिन भी उपभोक्ताओं ने बिजली मीटर अब तक प्रीपेड से पोस्टपेड नहीं किए, वो अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि मई में ही मीटर जो है वो पोस्टपेड किए जा चुके हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अगर मीटर अभी नहीं बदले गए तो आप जल्द से जल्द अपने नजदीकी कार्यालय जो है वहां जाकर फॉर्म भर सकते हैं, और 3 दिन के अंदर ये पोस्टपेड होने का मैसेज आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा।
1: और अगली खास खबर ये है कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जो 21 जून को दोबारा से परीक्षा होने जा रही नीट यूजी की, उसको ऑनलाइन कराने से मना कर दिया है, और उनका ये कहना है कि भाई अब कलम कागज यानी मैनुअल तरीके से ही इस परीक्षा को कराया जाए ताकि इसको नकल विहीन बनाया जा सके। तो भाई अगर आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं तो प्लीज इस बात का ध्यान जरूर दें कि इस बार 21 जून को जो परीक्षा होने वाली नीट यूजी की, वो आप मैनुअल तरीके से दे सकते हैं।

0: जी। और दोस्तों 8:56 का वक्त हो गया है और ये वक्त हमसे कह रहा है कि गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम का जो फर्स्ट हाफ है वो अपने वाइंड अप की ओर आ गया है। चलते चलते हम 2-3 मेल और शामिल कर लेते हैं। धीरपाल यादव जी हमें जैतीपुर शाहजहांपुर से मेल करते हैं, लिखते हैं मुद्दे पर कि अपना टारगेट पाने के लिए मैं तो अपना 100% देता हूँ। और राधे राधे आपको भी धीरपाल जी।
1: इसके अलावा छवि राम सिंह जी का भी ईमेल आया है फरुखाबाद से और ये लिखते हैं कि ये नियमित श्रोता हैं और एफएम रेनबो इनके दिल की धड़कन है, सुनते रहते हैं और जैसे आप लोग स्टूडियो में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं वैसे हम लोग भी आपके गाने सुनकर इंजॉय करते रहते हैं।
0: शैलेंद्री शर्मा हमें मेल कर रही है बाराबंकी से और लिखते हैं प्रणाम गुड मॉर्निंग, गाने पसंद आ रहे हैं और लिखा है कि आज मेरी भांजी विनय वान्या का बर्थडे है, जानकीपुरा में रहती है तो उसको ढेर सारी शुभकामनाएं। और लिखती है कि प्लीज मेल शामिल कर लीजिए, तो मेल आपका शामिल हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेल करने के लिए।
1: अरुण कुमार जी का मेल आया हुआ है घमुइया हरदोई से और इनका पूरा नाम है अरुण कुमार कुशवाहा और इन्होंने प्यार भरा नमस्कार भेजा, गुड मॉर्निंग बोला है, आपको भी गुड मॉर्निंग। साथ में इन्होंने लिखा है कि मॉर्निंग मंत्रा बहुत ही प्रेरक था और आज के मुद्दे में मुझे ये कहना है कि बच्चों को वो सारी शिक्षाएं देनी चाहिए और उनको प्रैक्टिकल

0: स्वयं करने देना चाहिए, उनको टारगेट स्वयं करने देना चाहिए और उनकी मेहनत पर हमेशा नजर रखनी चाहिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमें मेल करने के लिए 8:57 का वक्त, और ये वक्त हमसे कहना है कि एक प्यारा सा ट्रैक हो जाए और फिर लौटेंगे न्यूज ब्रेक के उस पर।

0: नमस्कार, सुबह के 9 बजे हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कल विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को सम्मानित किए जाने की खबर को हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स और अमर उजाला ने अपनी लीड स्टोरी बनाया है। अखबारों ने लिखा कि लोकभवन में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अच्छे अंक लाने हैं तो सोशल मीडिया से दूर रहें बच्चे, प्रतिदिन समाचार पत्र जरूर पढ़ें। उन्होंने माता पिता से बच्चों को स्मार्टफोन ना देने और उन्हें रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने की अपील की है। समारोह में उन्होंने 223 मेधावियों को सम्मानित किया।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कल बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए परिवारों को भूमिधरी अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए जाने को दैनिक जागरण और अमृत विचार ने अपनी पहली खबर बनाया है। अखबारों ने लिखा कि इस मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद की हालिया घटना का जिक्र करते हुए कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग अपनी नालायक औलाद को नहीं समझा पा रहे हैं, वे समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। उन्होंने गोमता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर कहा कि गाय तो हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है और ये स्वघोषित है।
0: भारत नेपाल सीमा पर सोमवार को कस्टम हाउस एजेंटों, क्लियरिंग एजेंटों और ट्रक चालकों की हड़ताल की खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता से खबर दी है। अब अखबार ने लिखा कि बेमियादी हड़ताल से सीमा पर आयात निर्यात पूरी तरह से ठप हो गया है और आईसीपी परिसर में 200 से अधिक ट्रक फंस गए हैं।
1: उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पावर कॉरपोरेशन की ओर से जून माह के बिजली बिल में 10% ईंधन अधिभार लगाए जाने को गैरकानूनी बताए जाने की खबर को हिंदुस्तान और अमर उजाला ने पहले पन्ने पर जगह दी है। अखबारों ने लिखा कि राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने कहा कि पुराने भुगतान को अधिभार शुल्क में समायोजित करने की व्यवस्था एमवाईटी में नहीं है।
0: आईआईटी में दाखिले के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस के नतीजे घोषित होने की खबर

0: भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक जागरण ने बताया कि लखनऊ के अन्वेष पटेल ने 68वीं, शशांक कुमार सिंह ने 455वीं, अवशी पांडे ने 1246वीं रैंक हासिल की।
1: सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट यूजी की 21 जून को प्रस्तावित पुनर्परीक्षा को सीबीटी मोड में करने की मांग को ठुकराए जाने की खबर में अमर उजाला लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन पर इस बार नीट यूजी कलम कागज से ही कराई जाएगी।
0: आफत, सीबीएसई का पोर्टल शुरू नहीं हुआ, शीर्षक से प्रकाशित खबर में हिंदुस्तान ने लिखा कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन के लिए 1 जून से शुरू होने वाला सीबीएसई का पोर्टल सोमवार को तय समय पर शुरू नहीं हो सका।
1: वहीं मौसम की खबर में अमर उजाला ने लिखा कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर जाएगा। इसके साथ ही कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने और हमीरपुर में बेतवा नदी पर पुल गिरने की जांच शुरू होने की खबर भी आज अखबारों के पहले पन्ने पर प्रकाशित हुई है। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां समाप्त होती हैं। अगला बुलेटिन समाचार सुबह 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTEC Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।
3: जी हाँ, गुड मॉर्निंग लखनऊ आप सुन रहे हैं। सुबह 9:04 का ये वक्त और सुबह 8 बजे से लगभग 8:15 से हमारा गुड मॉर्निंग लखनऊ का प्रोग्राम ये चल रहा है, जिसको कि आप इंजॉय कर रहे हैं, लगातार अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं और कुछ ऐसी अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं जो आपके लिए है बहुत ही ज्यादा उपयोगी।
4: और हमने मुद्दे की बात भी की, आज आपका मुद्दा ये है कि आप अपने टारगेट को हासिल करने के लिए आपके द्वारा कौन कौन से ऐसे प्रयास है जो आप करते हैं, ये भी आप हमें बताइए हमारी ईमेल आईडी पर fmakashwanilakhnau@gmail.com।
3: इसके अलावा आज का क्या है इतिहास, किन महान सेलिब्रिटीज का होता है जन्मदिन और कुछ ऐसे लोग जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा गए, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक आप सबके लिए।

0: तो दोस्तों लीजिए हम भी वापस आ गए गुड मॉर्निंग लखनऊ का प्रोग्राम लेकर के 9:10 का ये वक्त, और अब दोबारा से हम आपको बताने वाले हैं कि भाई किन किन लोगों ने हमें मेल किया है और क्या लिखा हुआ है।
1: जी नीलू यादव जी हमें मेल करती हैं राधे राधे बंगला बाजार लखनऊ से मेल कर रही हैं अर्चना से और लिख रही हैं अपनी दोनों बेटियों के साथ हमें सुन रही हैं अनुराधा और श्रेया। गुड मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाई लेकिन अपने बच्चों के लिए कोशिश जरूर करूंगी कि उनके सपने जरूर पूरे कर सकूं।
0: लखीमपुर खीरी से मेल आया हुआ है मुनेश कुमार राज जी का, जो कि जिनका की गांव है भानपुर हरौआ, और इन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग सुरक्षा मैम और निखिल जी एंड गुड मॉर्निंग बोला। साथ में इन्होंने दो लाइनें लिखी कि हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल। मुद्दे पर कुछ लाइनों के साथ इन्होंने लिखा है कि मुझे तो अपने लुटा गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती डूबी वहीं जहां पानी कम था, हमारा टारगेट था वो हो गया फेल क्योंकि उसमें अपने लोग ही करते रहे खेल, हमारी ख्वाहिश रह गई अधूरी, कुछ लोगों को थी जलन और कुछ मजबूरी, अब एक ही रास्ता सुने एफएम और किसी से नहीं वास्ता। क्या बात है, मतलब इन्होंने अपनी जो बात थी अपने दिल की भी बात इन्होंने यहाँ पर लिख दी, साथ में इन्होंने बताया कि इनका भी एक टारगेट था लेकिन हासिल नहीं कर सके। खैर कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत लंबी है। 2 जून की तारीख है, 154वां दिन है, तो अभी साल तो अभी काफी बचा हुआ है, काफी दिन बचे हुए हैं, तो आप अभी से एक नया टारगेट सेट कर सकते हैं और अपने आप को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं।
1: बिल्कुल। मोनू सेठ जी हमें लिखते हैं इतने मधुर और सुपर हिट गाने बजा रहे हैं आप कि हम इन गानों में खो गए और मुद्दा ही भूल गए। तो भाई मुद्दा ये है कि टारगेट आप कैसे हासिल करते हैं, आप क्या क्या एफर्ट्स लगाते हैं टारगेट को हासिल करने के लिए, आपको हमें ये बताना है।
0: या फिर आपने अगर कोई टारगेट हासिल कर लिया है तो उसके लिए क्या प्रयास किया था वो भी हमें जरूर बताइए, ताकि हम बहुत सारे लोगों तक वो पहुंचा सके, हो सकता है उससे लोग मोटिवेट हो जाएं और वो भी अपना टारगेट हासिल कर ले। फिलहाल राम मोहन गुप्ता जी का भी अगला मेल आया है और इन्होंने लखीमपुर खीरी से हमें मेल किया है। इन्होंने चंद लाइनें लिखी हुई है। इन्होंने लिखा है लक्ष्य परिवार संघ करना सहयोग समाज का, बढ़ते रहना सम्मान लिए भाव स्नेह सद्भाव का, हो सके जितना सदा ही वांछित की मदद करना, सेवा निवृत्ति उपरांत भी रहकर

0: फिक्री आगे बढ़ना। कहने पाए न कोई भी कभी हो चुके हो रिटायर, और भी ज्यादा सक्रियता से करते रहना है फायर। खातिर इसके ही विभिन्न क्रिया क्षेत्रों में रह सक्रिय, करता रहता हूँ उत्साह पूर्वक हर गतिविधियाँ अपनी।
1: क्या बात है, राम मोहन गुप्त अमर लखीमपुर के लिए समय मेल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन्होंने मेल किया। 9:12 का वक्त, अब पारी है प्यारे से ट्रैक की।

0: हाल के, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं TSI विकास सिंह जी।
1: हेलो सर, वेरी वेरी लवली, गुड मॉर्निंग।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज सर वर्तमान में यातायात सामान्य गति से गतिमान है, क्योंकि पीक आवर्स का समय है सर, तो लखनऊ शहर में पीक आवर्स में थोड़ा ट्रैफिक लोड रहता है, और ये ट्रैफिक लोड हमारा लखनऊ अयोध्या मार्ग पर कमता से चिन्हट वाले रोड पर पॉलिटेक्निक की तरफ होता है, सीतापुर मार्ग पर हमारा मड़ियाओं की तरफ, और तथा लखनऊ कानपुर मार्ग की बात करें तो बारा बिरवा और स्कूटर इंडिया के पास में थोड़ा ट्रैफिक प्रेशर रहता है। परंतु वर्तमान में ट्रैफिक पुलिस और नागरिक पुलिस मौजूद रहकर सुगम यातायात का संचालन करा रही है। कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं सर। आज बड़ा मंगल है और बड़े मंगल के अवसर पर हमारे लखनऊ शहर के जो चार प्रमुख हनुमान जी के मंदिर हैं, जैसे कि अगर महानगर क्षेत्र की बात करें तो हनुमान सेतु मंदिर, और दूसरी तरफ अगर हम चौक क्षेत्र की बात करें तो बालाजी हनुमान मंदिर और हनुमंत धाम जो कि क्लार्क तिराहा के पास है, परिवर्तन चौराहे के पास, ये हमारे प्रमुख मंदिर हैं। अलीगंज में हमारा बड़े दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर और पंचमुखी हनुमान मंदिर, और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर हजरतगंज में मुख्य मार्केट में है।
1: तो
2: यहाँ पर जो अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, इस दौरान आसपास के क्षेत्र में जो हमारी पार्किंग व्यवस्था है, जैसे हजरतगंज में हमारी मल्टी लेवल पार्किंग है, वहाँ हम पार्किंग करा रहे हैं। हनुमान सेतु के पास में लखनऊ विश्वविद्यालय और कालविन तालुकेदार का जो ग्राउंड है पार्किंग का, वो हम यूज कर रहे हैं पार्किंग के लिए। और वहीं हनुमंत धाम पर लक्ष्मण मेला मैदान की तरफ का जो पार्किंग है वो हम पार्किंग के लिए यूज कर रहे हैं
0: जी।
2: तो ऐसे में श्रोताओं से अनुरोध है कि यदि आप दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं तो कृपया अपने वाहनों को पार्किंग स्थल पर ही पार्क करें
1: जी।
2: रोड पर यत्र तत्र कहीं पार्क ना करें, इससे अनावश्यक रूप से लोगों को आवागमन में असुविधा होती है और आपको भी असुविधा हो सकती है। हमारे टोइंग जो व्हीकल्स हैं वो आपको आपके वाहन को टो करके ले जाएंगे, तो इसमें आपको भी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको असुविधा नहीं होगी और आप जो है अच्छे से दर्शन पूजन कर पाएंगे और दूसरों को भी असुविधा नहीं होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत ही जरूरी बात आपने बताई है।
2: जी जी सर। और शहर में सर कई जगह जो है भंडारे का आयोजन है, तो भंडारे के दौरान हमारा आयोजकगढ़ से अनुरोध है कि कृपया आप जो है भंडारे के दौरान ट्रैफिक मार्शल का जरूर लगाएं, जो ट्रैफिक वॉलंटियर के रूप में कार्य करें। आपके भंडारे के दोनों तरफ जो है ट्रैफिक वॉलंटियर्स रहें, जिससे कि जो है लोगों को असुविधा ना हो।
0: जी
1: सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी अपडेट्स देने के लिए कि भाई ट्रैफिक के लिए हमें किस तरीके से संभलना है और दूसरी चीज हमें खुद कैसे अवेयर रहना है। थैंक यू सो मच सर।
0: धन्यवाद सर। जी तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ TSI विकास सिंह जी, जिन्होंने हमारे शहर के ट्रैफिक के हाल हमें बता दिए, और अब बारी एक प्यारे से ट्रैक की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।
2: जी दोस्तों, और गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम में अब बारी है आप सभी के शहर से जुड़े ट्रैफिक के।

0: happy, happy birthday to you.
1: Yes, very, very happy birthday उन सभी लोगों को जिनका की आज है स्पेशल डे, होता है उनका हैप्पी बर्थडे. इसके अलावा उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां जिनकी की आज भी होती है हैप्पी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी.
0: आपके इस स्पेशल डे की, खास दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि आपका आज का दिन और साथ में आने वाले सारे दिन, सारे कई साल बहुत सारी खुशियों से भरे रहे और बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में लाए.
1: इन खुशियों के साथ में आप अपना बर्थडे किस सेलिब्रिटी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हमारा गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम कुछ ऐसा ही है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1948 की, जब बर्थ हुआ अंजन श्रीवास्तव जी का, जो कि टेलीविजन के सुनहरे दौर में जब दूरदर्शन पर हर भारतीय परिवार के मनोरंजन का केंद्र था दूरदर्शन, तब एक अभिनेता ने अपनी सादगी और भरोसेमंद अभिनय से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई, और वो अभिनेता है अंजन श्रीवास्तव जी. अंजन श्रीवास्तव ने कई बार टीवी सीरियल और फिल्मों में भी काम किया. ये जो है जिंदगी, नुक्कड़ और वो हुए ना हमारे जैसे सीरियल्स में उनके किरदारों को दर्शकों ने खूब पसंद किया. बॉलीवुड सिनेमा में उन्होंने गोलमाल, मिस्टर इंडिया, साथिया और संजू जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई, जो कि उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती हैं.
0: और आज के दिन 1956 में जन्म हुआ था मणिरत्नम साहब का, भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक, जो मुख्यतः तमिल सिनेमा और

0: बॉलीवुड में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नायकन, रोजा, बॉम्बे, दिल से, गुरु और पोन्नियिन सेल्वन जैसी कई ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्में बनाई और उनकी फिल्मों में गहराई, भावनात्मकता, संगीत और सिनेमेटोग्राफी का उत्कृष्ट संतुलन होता है। मणिरत्नम साहब जी को कई राष्ट्रीय और फिल्मफेयर पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया और वे भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले फिल्मकारों में से एक हैं।
1: अब बात होती है एक स्पेशल प्लेबैक सिंगर की। जी हाँ, 1986 में जन्म हुआ अदिति सिंह शर्मा जी का, जो कि फेमस प्लेबैक सिंगर हैं और अपनी दमदार आवाज से कई सुपरहिट गाने गाए। उन्होंने मुख्य रूप से अनुराग कश्यप की फिल्म देवडी के गाने यही मेरी जिंदगी से बॉलीवुड में उनको बड़ी पहचान मिली। उसके बाद उन्होंने धूम 3, टू स्टेट्स रॉय जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी आवाज दी उनके गानों में, और जो कि मुख्य रूप से हिंदी के अलावा बंगाली, तेलुगु फिल्मों में भी अपनी आवाज का जादू बिखेर चुके। फिलहाल एक प्यार से म्यूजिकल ट्रैक फ्रॉम मूवी धूम 3। एंजॉय दिस ट्रैक।
2: You know that thing must be 100 years old.

0: मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेली लॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।
4: गुड मॉर्निंग लखनऊ, आप प्रोग्राम सुन 9:32 का वक्त और इस जो प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक अभी आपने सुना, उस पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उन महान हस्तियों के बारे में जिनका की आज होता है हैप्पी वाला बर्थडे।
5: और आप आज किन किन लोगों के साथ अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं ये हम बात बता रहे हैं। अब बात करते हैं साल 1963 की, जब आज के दिन डॉक्टर नीतीश भारद्वाज का जन्म हुआ था। डॉक्टर नीतीश भारद्वाज एक भारतीय टेलीविजन और फिल्म अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, रंगमंच कलाकार, पशु चिकित्सक और पूर्व लोकसभा सांसद

0: जिनका कि आज होता है हैप्पी वाला बर्थडे।
1: और आप आज किन किन लोगों के साथ अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं ये हम बात बता रहे हैं। अब बात करते हैं साल 1963 की, जब आज के दिन डॉक्टर नीतीश भारद्वाज का जन्म हुआ था। डॉक्टर नीतीश भारद्वाज एक भारतीय टेलीविजन और फिल्म अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, रंगमंच कलाकार, पशु चिकित्सक और पूर्व लोकसभा सांसद। उन्हें बी आर चोपड़ा के टेलीविजन धारावाहिक महाभारत में भगवान कृष्ण की उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। बी आर चोपड़ा के धारावाहिक विष्णु पुराण में भगवान विष्णु और उनके कई अवतारों के अभिनय के लिए भी उन्हें काफी सराहना भी मिली है।
0: 1980 में बर्थ हुआ डोला बनर्जी जी का, जो कि भारत की पहली महिला तीरंदाज हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। वो अपने कुशल प्रयास से न्यूयॉर्क में आयोजित 42वीं विश्व तीरंदाजी आउटडोर चैंपियनशिप में सफल रही और ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए क्वालिफाई किया। डोला पहली भारतीय खिलाड़ी है जिन्हें तीरंदाजी में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी होने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें साल 2005 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
1: और आज बर्थडे हो रहा है बॉलीवुड की एक बेहतरीन एक्ट्रेस का। 1987 में जन्मी सोनाक्षी सिन्हा हिंदी बॉलीवुड सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और प्रसिद्ध अभिनेता और राजनीतिज्ञ शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2010 में फिल्म दबंग से की, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फीमेल डेब्यू के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। और राउडी राठौर, आर राजकुमार, अकीरा, लुटेरा, दबंग, टू सन ऑफ सरदार उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं। और इतना ही नहीं, वेब सीरीज तहाड़ में भी उनके काम को काफी सराहा गया।
0: जी हाँ, और अब जो अगला म्यूजिकल ट्रैक आने जा रहा है ना, उसको सुनने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे और सोनाक्षी सिन्हा की एक तस्वीर आपके जहन में आ जाएगी।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जी नमस्कार, 41 मिनट का वक्त और गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम में अब बारी है आपके शहर से जुड़े मौसम की अपडेट लेने की, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ते हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी।
2: सर वेरी वेरी लवली गुड मॉर्निंग, एफएम रेनबो में आपका स्वागत है।
3: जी गुड मॉर्निंग
2: सर, कैसा रहेगा मौसम सर, इसके बारे में सर प्लीज थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मौसम हमें जो है हर दिन कुछ नया रूप देखने को मिल रहा है।
3: जी बिल्कुल, मौसम तो आज ऐसे सुहाना रहेगा, दिन में बादलों की आवाज आए के साथ कहीं छीटा करती हल्की फुल्की हो सकती है
2: जी,
3: और मौसम खुशनुमा रहेगा। बीच में थोड़ा सा जैसे बादलों की आवाज आए ऐसे बीच में हल्का हल्का धूप भी खिल सकते हैं, तो थोड़ा सा गर्मी का एहसास होगा, लेकिन ओवरऑल काफी खुशनुमा मौसम रहेगा आज के लिए। बाकी कल परसों थोड़ा सा मौसम में खुलेगा, हालांकि उतार चढ़ाव वाला ये रहेगा, थोड़ा बादलों की आवाजाही रहेगी, बहुत एक्सट्रीम टाइप की कोई गर्मी होने वाली नहीं है
2: जी।
3: और 4 तारीख से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो आने वाले दिनों में फिर बादलों की आवाजाही ये सब बना रहेगा, तो कुल मिला के कई एक हफ्ते तक मौसम उतार चढ़ाव वाला रहेगा और खुशनुमा रहेगा, कोई एक्सट्रीम टाइप का वेदर नहीं रहेगा।
2: चलिए सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने अपडेट दी है, क्योंकि गर्मी से लोग परेशान हो गए थे और अब अगर मौसम ऐसा उतार चढ़ाव वाला रहेगा तो थोड़ा सा गर्मी भी लगेगी, लेकिन थोड़ा सा मौसम अच्छा रहेगा तो सुहावना भी लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी अपडेट देने के लिए।
3: ओके धन्यवाद।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ अपने वाइंड अप की ओर 9:51 का वक्त और अब बारी है आप सभी के मेल्स शामिल करने की। हमारे पास मेल है तालिब अंसारी जी का, जिन्होंने हमें गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम में सबको गुड मॉर्निंग लिखकर भेजा हुआ है।
2: बहुत बहुत आपको भी गुड मॉर्निंग और शुक्रिया आपके इस मेल के लिए। वारिस अली खान जी का भी मेल आया हुआ है और इन्होंने इस बार जो बात की मुद्दे पर बात लिखी है और लिखा है कि आदाब निखिल और शिक्षा जी को और शुभकामनाएं दी है पांचवे बड़े मंगल के और मुद्दे पर लिखा है कि मुझे जो बनना था मैं बन गया, लेकिन एक ख्वाहिश है कि मैं भी एक उम्दा शायर बनूं। मैं 15 साल की उम्र से लिख रहा हूं, मेरी रचना न्यूज़पेपर में भी छपती रहती है और मेरी एक सार्थक रचना है जिसकी कुछ लाइंस आपसे शेयर कर रहा हूं। और इन्होंने लिखा है, गर्मी अपना सितम ढा रही है, हर पल हमको झुलसा रही है, बनने लगे हैं जब से कंक्रीट के मकान, गर्म हवाएं अपना कहर बरपा रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब बूंद को एक एक बूंद को तरसेंगे हम, ये जो दुनिया फिजूल पानी बहा रही है। इन्होंने ऐशबाग से मेल किया है और आपकी जो रचना है वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ है और लोगों को इस पर सोचने की जरूरत है।
1: महेंद्र दीपन जी हमें लिखकर भेजते हैं, राजस्थान से मेल कर रहे हैं और लिखते हैं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेरा मंत्र बहुत सीधा और अडिग है, दृढ़ निश्चय और निरंतरता, सकारात्मक दृष्टिकोण, अनुशासन, परिवार की प्रेरणा। और अंत में लिखते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता।

0: हौसलों से उड़ान होती है।
1: इसके अलावा टाइगर खान नाम से एक मेल आया हुआ है, उनका नाम है नरगिस, जो कि बिलाई तहसील संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई से। इन्होंने हमें मेल किया, गुड मॉर्निंग बोला है, साथ में लिखा मुद्दे पर कुछ नहीं लिख पाई हूँ, देर में ज्वाइन किया इसलिए, लेकिन प्रोग्राम अच्छा लग रहा है।
0: और शालिनी चौरसिया हमें लखनऊ से मेल करती है, लिखती है यही कहना चाहूंगी मुद्दे पर कि नेवर गिव अप ऑन योर गोल एनी हाउ। टारगेट को हासिल करने के लिए आज तक हमने अपना साहस नहीं खोया है, इस उम्मीद में कि एक दिन मुझे मेरा टारगेट जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए।
1: इसके अलावा बाबू अंसारी जी का बाराबंकी से मेल आया हुआ, लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और गाने भी जबरदस्त हैं।
0: और मोनू सेठ जी ने जीवन में पढ़ाई में शिक्षा का क्या महत्व है इसके बारे में बताया। आप सभी लोगों ने जिन्होंने मेल किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और दोस्तों साथ में आपको चलते चलते बता दे कुछ खास स्पेशल, क्योंकि आज का दिन क्यों होता है खास, तो आज के इतिहास की अगर हम बात करें तो 2 जून 1896 को मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ के पेटेंट के लिए आवेदन किया और जिसे बाद में स्वीकार कर लिया गया।
0: और आज के दिन 1966 में अमेरिका ने अपने पहले प्रयास में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान सर्वेयर 1 को उतारा था।
1: इसके अलावा इतिहास में कुछ ऐसे लोग भी दर्ज हुए आज के दिन जो कि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। 1978 में प्राण कृष्ण पारिजा जी, जिनकी की मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, और भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करने के कारण ये विषय वहां से पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम भारतीय छात्र बने।
0: 1990 में आज ही के दिन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हमसे इस दुनिया से विदा लेकर चले गए थे, भारत के एक प्राचीन ऋषि जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की।
1: इसके अलावा साल 2004 में डॉक्टर श्रीकंद जिचकर जी का देहांत हुआ था, जो कि भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से माने जाते थे, और उन्होंने 42 विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की और लगभग 20 से ज्यादा डिग्रियां हासिल की।
0: और भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक जिन्होंने भारतीय हिंदी सिनेमा को एक नया मुकाम दिया, राज कपूर साहब, आज के दिन उनका भी निधन हो गया था। उन्हें व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा और मनोरंजन के इतिहास में सबसे महान शोमैन माना जाता है, और उन्हें भारत में 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 11 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया।
1: इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें कला में योगदान देने के लिए 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया, और सिनेमा में भारत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 1987 में उन्हें प्रदान किया गया, और 1935 में 10 साल की उम्र में उन्होंने इनकलाब से अभिनय की शुरुआत की और मेरा नाम जोकर उनके करियर की सबसे बेमिसाल फिल्म साबित हुई, जिसके बाद कई फिल्में आई, आवारा, श्री 420, संगम उनकी कई प्रमुख फिल्में हैं।
0: उन्होंने बॉबी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, प्रेम रोग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्देशन भी किया, और भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में उनका योगदान अमूल्य है।
1: तो दोस्तों ये थी वो महान हस्तियां जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, लेकिन जाते जाते हमारे देश का नाम और परिवार का नाम वो इस तरह से रोशन कर गई कि आज हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं।
0: अब बारी है मेरी यानी स्वेच्छा की आप सभी से विदा लेने की, 9:56 का वक्त। मैं स्वेच्छा मिलूंगी किसी और दिन किसी और वक्त।

नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए दो अलग अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। हमीरपुर के डीएम अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नमामि गंगा कर रहे हैं, घटना से संबंधित सभी प्रशासनिक, तकनीकी और प्रतिक्रियात्मक पहलुओं की विस्तृत जांच कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन ने विशेषज्ञ मूल्यांकन करने के लिए 3 सदस्यीय तकनीकी समिति का गठन किया है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में जान गंवाने वाले 6 श्रमिकों के परिवारों को सरकार द्वारा 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त निर्माण कंपनी ने प्रत्येक मृतक श्रमिक के परिवार को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। श्रम विभाग की योजनाओं के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 1,25,000 रुपए की सहायता भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर जिले के तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के हरिहरपुर में आयोजित समारोह में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कुशीनगर में निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम गोरखपुर में चिलू आताल घाट पर 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कराए गए चिलू आताल के पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कल गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद है। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: वेलकम बैक अगेन ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो, जहां आपके साथ है आपका दिल आरजे निखिल। 10:04 का ये वक्त और जो टाइम हो चुका है, ये है सुपरहिट सॉन्ग्स का। तो सुपरहिट सॉन्ग्स कुछ स्पेशल इस बार आपके लिए लेकर आया हूं एक नए कलेवर में, क्योंकि सुपरहिट सॉन्ग्स आप तो जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन अगर आपको उनका एक नया फ्लेवर मिल जाए तो कैसा लगेगा? जी हाँ, सुपरहिट सॉन्ग्स जो आपने अब तक सुन रखे हैं उन्हीं का रिमिक्स फ्लेवर आज कुछ खास। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग और साथ में आप FM Rainbow। Oh God, one more.

से इसे सफल बनाएं, हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

Again, remix of Superman song. And the song name is Oye Oye from the movie Azhar. 10:13 का वक्त सुपर हिट सॉन्ग्स का ये प्रोग्राम एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे म्यूजिकल विद द लार्ज निखिल सुनते रहिए।

जी दोस्तों, कुछ याद आया? ये म्यूजिकल ट्रैक पहले आपने सुना था बीवी नंबर वन मूवी में। और अभी म्यूजिकल ट्रैक आ चुका है मूवी में, है जवानी तो इश्क होना है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी दोस्तों, उम्मीद है कि आज के गाने आपको बहुत ही मस्त मस्त लगे होंगे। सुपर हिट सॉन्ग्स का ये प्रोग्राम, फिलहाल 10:57 का ये वक्त। तो अब मुझे आपको टाटा बाय बाय कहना होगा इस प्रोग्राम से, क्योंकि न्यूज ब्रेक के बाद 11 बजे आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसका की नाम है संदेश आपके गीत हमारे, जहां आप हमको संदेश भेज सकते हैं और उसको हम अपने जरिए यानी कि 100.7 FM रेनबो के जरिए बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसके लिए आप अपना संदेश हमें भेज सकते हैं fmakashwani@lucknow.gmail.com पर। आप हमें फोन कॉल भी कर सकते हैं 0522 2238 852 पर या फिर 0522 2238 845 पर। एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक जाते जाते स्टे ट्यून्ड एंड स्टे म्यूजिकल विद दिल आरजे निखिल।

नमस्कार, सुबह के 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएएस और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके नेटवर्क के माध्यम से वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीय युवाओं को पैसे का लालच और उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर भर्ती कर रहे थे। उन्हें कट्टरपंथी बनाकर स्लीपर सेल के रूप में काम करने और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तैयार कर रहे थे। 5 राज्यों में चुनाव सकुशल संपन्न कराने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने गृह जनपद आगरा स्थित निवास पहुंचे, जहां उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। आज सुबह उन्होंने सिकंदरा स्थित प्रसिद्ध कैलाश शिव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ उनकी पत्नी, माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। बाद में मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है, आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी होंगे। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झांसी की ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को आधिकारिक रूप से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। 253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाली इस परियोजना के तहत 5.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी में मुख्य रूप से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग स्थापित किए जाएंगे। आज ज्येष्ठ माह का 5वां बड़ा मंगल है। लखनऊ के अलीगंज स्थित पुराना हनुमान मंदिर, नया मंदिर हनुमान सेतु, हनुमंत धाम, हजरतगंज स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर, पक्का पुल स्थित लेटे हनुमान जी का मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। कई मंदिरों और भंडारों के आसपास ट्रैफिक पुलिस ने यातायात डायवर्जन लागू किया है। इस दौरान वाहन चालक वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करके गंतव्य की ओर पहुंच सकेंगे। ट्रैफिक डायवर्जन के दौरान किसी प्रकार की समस्या पर लोग ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला आज चीनी ताइपे से होगा। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

तो दोस्तों एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का 100.7 FM रेनबो पर 11:04 का वक्त और आपका दिल आरजेने के लिए एक बार फिर के आपके साथ जुड़ चुका है। तो ये जो 11 बजे का वक्त है ना ये बहुत ही स्पेशल होता है क्योंकि इसमें आप हमसे बात कर सकते हैं ऑन एयर। जी हाँ, और वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है संदेश आपके गीत हमारे। आप हमारे संदेश हम तक पहुंचाइए और हम उसको एफएम रेनबो के माध्यम से बहुत जगह तक पहुंचाएंगे जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522-2238-852 पर या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522-2238-845 पर। अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप हमें ईमेल कर दीजिए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। तो जल्दी से हमें कॉल करिए, ईमेल करिए और अपने दिल की बात हमसे कह डालिए। एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक आप सबके रेडियो सेट पर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे म्यूजिकल विद द दिल आरजे निखिल।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: जी हाँ दोस्तों, 11:10 का वक्त, आपके साथ आपका दिल आरजे निखिल और प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे। तो हमारे साथ फोन लाइन पर कोई जुड़ चुका है अपना संदेश बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए। हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, और बताइए कैसी हैं?
3: बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं?
2: हम भी बहुत अच्छे हैं। आपका गुड नेम?
3: जिला सीतापुर पचानापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं।
2: शमा परवीन जी,
3: मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार, और बड़े मंगल के सभी सुनने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं।
2: क्या बात
3: सर,
2: है
3: आपको भी
2: बहुत बढ़िया, इतना सारा प्यार सभी श्रोताओं को, क्योंकि भाई अक्सर आपका कॉल आता रहता है और आप नियमित श्रोता हैं और आपका कॉल भी लगता रहता है।
3: रेगुलर लिसनर हैं सर।
2: जी जी जी, बिल्कुल सही बात कह रही है। तो ये बताइए कि जैसा कि हमारा प्रोग्राम है संदेश आपके गीत हमारे, क्या संदेश रहेगा आज आपका?
3: आज का संदेश सर ये है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, अपना भी ख्याल रखें,
2: बिल्कुल,
3: पशु और पक्षियों का भी ख्याल रखें, और अच्छा काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें।
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। ऐसा अक्सर होता है कि लोग थोड़ा सा अपने मार्ग से भी भटक जाते हैं और ये जो गर्मी है अपना ध्यान नहीं रखते, काम करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते खुद पर।
3: जी, ध्यान देना बहुत जरूरी है। और सर, हम अपने भाई बहनों का नाम लेना चाहते हैं।
2: बिल्कुल जरूर लीजिए।
3: गुलब साप्ती, साहिबान सारी, साजिया अंसारी, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम, विनीत कुमार भाई, सत्यम कुमार भाई, और मोहम्मद फैज भाई, बाबू अंसारी भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, वकील अहमद मंसूरी भाई, जावेद अख्तर भाई।
2: क्या बात है, आपने इतने सारे लोगों का नाम लिया और काफी अच्छा लगा आपका कॉल आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए।
3: ओके बाय।
2: तो दोस्तों, शमा परवीन के तरीके कुछ आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमसे ऑन एयर बात कर सकते हैं लाइव वो भी, और अपना संदेश हमारे जरिए बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
4: तू नहीं है, ये भी ना जानू क्यों नहीं है।
2: और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522 22 38 852 पर, या फिर 0522 22 38 845 पर। अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, प्लीज fmakashwani@gmail.com पर आप हमें मेल करिए, आपके मेल को हम जरूर पढ़ेंगे और सभी तक पहुंचाएंगे। फिलहाल स्टे ट्यून विद दिल आरजे निखिल।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: मानसी शेख अलाबख्श और जगाराम साहू, हिंदुस्तानी ब्रह्मेश रामराज, एम के राज, मोहम्मद आसिफ, मनीष गुप्ता, भैया मोनू सेठ, रामधीर गुप्ता, टाइगर खान, वकील अहमद, तालिब अंसारी, भाई इतने सारे, बहुत सारे लोगों के

0: तक ईमेल पहुंच चुके हैं और सब लोगों ने अपना अपना संदेश हम तक पहुंचाया है, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे, जहां आपके संदेश रहते हैं और गीत हमारे रहते हैं, और आपके संदेश को हम वहां तक पहुंचाते हैं जहां जहां तक FM रेनबो की आवाज पहुंचती है, जहां जहां तक लोग उनको सुनते हैं। फिलहाल दोस्तों हमारे साथ फोन लाइन पर भी कोई कनेक्ट हो चुका है, जानते हैं वो कौन है और उनका क्या संदेश है। हेलो।
1: आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा जी। आंखों में रहा उस दिल में उतर कर नहीं देखा
0: जी।
1: कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पर पत्थर समझता है मुझको मेरा चाहने वाला। पत्थर समझता है मुझको मेरा चाहने वाला
0: जी।
1: मैं मोम का था उसने छू कर नहीं देखा।
0: क्या
1: मैं मोम का था उसने छू कर नहीं देखा।
0: क्या बात है, मतलब आपकी जो ये चंद लाइनें हैं ना, बिल्कुल बहुत ही गहराई में है और इन्हें समझने सोचने की जरूरत है, और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
1: जी बिल्कुल जरूरत है,
0: और जो इसको सोचेगा समझेगा वो कहीं ना कहीं गहराइयों में उतर जाएगा।
1: उतरना चाहिए भी कभी कभी, ऊपर रह के क्या, जब तक आप अंदर उतरते नहीं, गहराई में उतरते नहीं, तो अंदाजा नहीं लगता कि कितनी गहराई है।
0: जी बहुत ही बेमिसाल आवाज और बेमिसाल आपकी चंद लाइनें। फिलहाल आपका शुभ नाम?
1: अकबर अंसारी बोल रहे हैं, चौपंडी बाराबंकी।
0: तो अकबर अंसारी जी वैसे क्या करते हैं आप?
1: वैसे तो मैं जरी का काम करता हूँ, पुणे में रहता हूँ, फिलहाल इस वक्त मैं घर पर हूँ।
0: जी बहुत बढ़िया, तो हमारे प्रोग्राम में आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी लिसनर्स को?
1: ये गर्मियाँ तो सर बहुत ज्यादा पड़ रही, तो मैं उसी पे कुछ कहना चाहूंगा कि
0: जरूर
1: आप लोग बाहर निकलते हैं तो अपना थोड़ा ध्यान रखें, घर से जब निकलते हैं तो पानी पी कर निकलें, और जब बाहर जाएं तो उस सर पे कुछ बांध लें, गमछा वगैरह
0: जी,
1: और ताकि आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो। और जब बाहर जाएं तो कहीं पेर जूस वगैरह है, शरबत वगैरह बेल का है, तो ये सब चीजें हैं लोग से आपको बजाती हैं, तो आपका जो तबीयत जो रहती है वो फ्रेश रहती है और एनर्जी बनी रहती है।
0: नहीं बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, और लोगों के स्वास्थ्यवर्धक बात है।
1: जी ने कहा कि पक्षी के लिए पानी की व्यवस्था, तो मैं कहना चाहूंगा साफ पानी के लिए उनकी व्यवस्था।
0: जी हेलो हेलो, ओहो कोई बात नहीं, बात करते करते शायद फोन लाइन कट हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, इनका जो संदेश था वो बहुत ही साफ है, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है तो अपना ध्यान जरूर रखें। 11:21 का वक्त, प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक फ्रॉम द मूवी वार 2, स्टे ट्यून्ड विद द लार्ज एनिकल, सुनते रहिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

तो दोस्तों 11:25 का वक्त और संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम चल रहा है। शेख अल्लाह बख्श जी का भी हमें ईमेल आया है और इन्होंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, शेख अल्लाह बख्श, बेगम रविया शेख और शेख रहीम मुन्ना और तेलंगाना नजीमाबाद से इनका ये मेल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। और जग्गाराम साहू जी का मेल है छत्तीसगढ़ से और इन्होंने कुछ नाम लिखे हुए, बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्य साहू। बहुत बहुत शुक्रिया राम साहू जी आपका मेल करने के लिए। इसके अलावा ब्रह्मेश जी का भी हमें मेल आया हुआ है, बाराबंकी से इन्होंने मेल आया और ये कहना चाहते हैं कि जो लोग अपने माता पिता जी की इज्जत नहीं करते हैं, उनसे हर बात पर बहस कर लेते हैं, प्लीज वो ऐसा ना करें। जी बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, आपसे बड़े हैं, हमें उनसे सीखने की जरूरत है ना कि उन्हें सिखाने की। तो प्लीज अपने माँ बाप की और अपने से बड़ों की जरूर इज्जत किया करें। रामराज जी का मेल आया हुआ है, श्री गणेशाय नमो लिखते हैं और साथ में लिखते हैं संदेश आपके गीत हमारे इस प्रोग्राम में इनको शामिल कीजिए। बिल्कुल आप शामिल है और पहाड़ीपुर रायबरेली से इनका ये मेल है और इन्होंने नाम लिखे हैं रामराज, राजू भान शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु बजरंगी काका। प्यार भरा नमस्कार बोला है और लिखा है कि आज मंगलवार है तो सभी लोग भंडारे में पहुंचे, प्रसाद खाएं, 2 जून की रोटी की जगह आज पूरी खाएं, क्या बात है। सबकी मदद करने की भी इन्होंने अपील की है। लखीमपुर खीरी से भी मेल आया हुआ है मुनेश कुमार राज जी का, सादर प्रणाम आपको भी इन्होंने लिखा, साथ में 2 लाइनें लिखी हैं, हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल। वाह, ऐसे ही आप सुनते रहेंगे क्योंकि हमारे सारे गीत ऐसे ही लाजवाब होते हैं और सारे ही प्रोग्राम बेमिसाल होते हैं। इन्होंने संदेश ये दिया है कि कड़वा है लेकिन सच बोला करें। कड़वा सच तो नीम की तरह कड़वा जरूर होता है मगर उसकी ठंडक हिमालय की तरह होती है। बिल्कुल सही बात कही है, हमेशा सभी को सच बोलना चाहिए। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ अंसारी जी हैदराबाद तेलंगाना से इनका ईमेल है और ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं और इनका संदेश ये है कि प्रोग्राम में जो संदेश होते हैं उन्हें हमें अमल जरूर करना चाहिए क्योंकि ये खुद भी उसको अमल करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे संदेश होते हैं, तो प्रोग्राम से हमें बहुत कुछ सीखने की भी जरूरत है, इनका ऐसा कहना है। और साथ में इन्होंने कहा एक बेजुबानों के लिए कुछ जरूर काम करें और इस गर्मी में उनके लिए जरूर थोड़ा सा पानी कहीं ना कहीं भर के जरूर रख दिया करें। और सादिया अंसारी, साबिया अंसारी, समा अंसारी, नेहा अंसारी और गुलसफा सिद्दीकी का इन्होंने नाम लिखा हुआ। इसके अलावा मनीष गुप्ता जी का भी हमें मेल आया हुआ है और ये लिखते हैं गुड मॉर्निंग। भाई आपको भी गुड मॉर्निंग मनीष गुप्ता जी, गोसाईगंज से इनका ये मेल आया। फिलहाल ये शिमला में रह रहे हैं तो वहाँ से सुन रहे हैं हमें और इनका संदेश ये है कि आजकल के बच्चों में, युवाओं में जो नशे की लत है वो बहुत तेजी से बढ़ती हुई है जा रही है, जिसको कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इससे सभी को नुकसान होता है और जो लोग नशे का सेवन करते हैं, बहुत ही गलत बात होती है, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, साथ ही साथ परिवार को भी नुकसान होता है। तो पेरेंट्स को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मोनू सेठ जी का हमें ईमेल आया हुआ, इन्होंने लिखा है

भैया जी नमस्ते। पौधे लगाएं, गर्मी दूर भगाएं और धूप में भी छांव फ्री में पाएं। क्या बात है मोनू सेठ जी, आप जो कुछ लिखते हैं ना एक अलग ही रिदम में चलता है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। रणधीर गुप्ता जी का ईमेल है, रेडियो मित्र निखिल जी प्यार भरा सप्रेम नमस्कार, आपको भी नमस्कार। कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं, क्या बात है। और साथ में इन्होंने दिल्ली से ओखला संगम विहार से हमें मेल किया है, नाम लिखे हुए हैं रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता का इन्होंने नाम लिखा हो, तो लीजिए सबके नाम भी लिख दी ले लिए मैंने। और साथ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। टाइगर खान जी का मेल आया हुआ है, गुड मॉर्निंग लिखा है, हरदोई से इन्होंने हमें मेल किया है और पूछा कैसे हम, बहुत अच्छे भाई, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। इसके अलावा साथ में लिखा है, इनका संदेश ये है कि भरोसा खुद पर रखो तो। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है और अगर दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बन जाती है। इन्होंने नाम लिया है सबरीन, बहुत बहुत शुक्रिया सबरीन जी आपका हमें मेल देने के लिए। इसके अलावा वकील अहमद तालिब अंसारी, अरुण कुमार जी और भी बहुत सारे लोगों का भाई मेल है, कॉल भी लगातार आ रहे हैं, आप सबको वो मेल क्या है जरूर बताएंगे, कॉल पर कौन है ये भी सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक आप सबके रेडियो सेट पर। 11:29 का वक्त, आपके साथ आपका दिल आरजे निखिल, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे म्यूजिकल।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: ग्यारह बजकर 34 मिनट का वक्त, संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम और आपके साथ आपका दिल प्रिया आरजे निखिल। दोस्तों, बहुत सारी चीजें लोग बता रहे हैं हमको।

0: हमारी जनगणना हमारा विकास। ग्यारह बजकर 34 मिनट का वक्त, संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम और आपके साथ आपका दिल प्रिय आरजे आरजे निखिल। दोस्तों बहुत सारी चीजें लोग बता रहे हैं हमको और बहुत सारे संदेश भी हम तक पहुंचा रहे हैं जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसी कड़ी में हमारे साथ फोन लाइन पर कोई जुड़ चुका है, ये जानते हैं कौन है वो। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आपका शुभ नाम?
1: जी, एफएम रेनबो पे हर वक्त धड़कने वाली आपकी अपनी जानी पहचानी श्रोता पिंकी की बात कर रहे हैं, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली।
0: क्या बात है पिंकी जी, रेनबो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू। और सर
0: कैसा लग रहा है?
1: अच्छा करके गुड मॉर्निंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा सर।
0: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपका कॉल लगा है, ऑन एयर बात हो रही है, इस समय आपको हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है?
1: काफी देर से ट्राई कर रहे थे सर, बिल जा रही थी लेकिन कॉल ही नहीं रिसीव हो रही, तो हमें लगा सर आज हमारी कॉल ही नहीं लगेगी, फिर अचानक से मेरी कॉल मतलब रिसीव हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही।
0: इसीलिए कहा जाता है आप प्रयास करते रहिए, प्रयास करना बिल्कुल भी मत छोड़िए आप।
1: जी सर, जिस मैं बताना चाहूंगी, बहुत करते लेकिन सर हम लोग एक एक घंटे एक एक हफ्ते प्रयास करते रहते, कभी कोशिश मतलब कभी सफलता मिल पाती कभी नहीं मिल पाती, लेकिन कभी हम लोग कोशिश करना नहीं छोड़ते, तो कहीं ना कहीं हमारे श्रोताओं की दुआएं और अनाउंसरों का प्यार है जो हमारी कॉल लग भी जाती है।
0: बिल्कुल जरूर लगेगी, कॉल सबकी लगती है और हम सबसे बात भी करते हैं जिनका कॉल आता है, बस ये होता है कि किसी से बात कर रही होते हैं तो किसी की कॉल तो वेटिंग में रहती है।
1: करते रहिए, कभी ना कभी आपकी कॉल जरूर लगेगी, क्योंकि हमारी कॉल लगती है तो आपकी भी कॉल लगेगी, हम भी श्रोता है आप भी श्रोता।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइए क्या संदेश देना चाहती है आज आप?
1: सर सबसे पहले तो सर आज बड़े मंगलवार की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और सर थोड़ा सा प्रसाद हमारे लिए भी बचा के ले आइएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपको प्रसाद भी मिलेगा लेकिन आपको भंडारे तक जाना पड़ेगा।
1: नहीं सर, हम लोग नहीं जा पाएंगे, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा हमारे भी लिए मतलब सभी श्रोता और आप भी बचा लाना।
0: जी जी, संदेश क्या रहेगा आज आपका?
1: जी सर, और सर मेरा संदेश ये है, जैसे सर अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है तो बहुत से लोग होते हैं जो पानी में कूड़ा करकट फेंक देते हैं, तो इससे कि मतलब पानी गंदा भी हो जाता है, उसमें मच्छर भी उत्पन्न होते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां होती है, और पशु पक्षी मतलब जैसे प्यासे होते हैं तो गंदा पानी भी पी लेते हैं, तो उनको बीमारियां हो सकती है, तो कृपया ऐसा ना करें।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, पानी को बर्बाद करने से तो बचाना ही है, साथ में गंदा होने से भी बहुत बचाना है।
1: पता सर हमारे यहाँ इतना पानी बर्बाद करते हैं सर, हमें तो बहुत बुरा लगता है, बहुत से लोग मान जाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं अरे बहने दो आपका क्या जाता है।
0: बिल्कुल समझाना चाहिए, ऐसे लोगों को जरूर समझाना चाहिए, बाकी ये जो सारी चीजें हैं लोग अपने ऊपर स्वविवेक से भी जरूर सबको सोचना चाहिए,
1: तो सर हमें पीने के लिए ही प्रयोग करना चाहिए, अगर हमारे पास काम नहीं है तो हमें मतलब नल को बंद कर देना चाहिए।
0: बिल्कुल, फिलहाल किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: जी सर, सबसे पहले मेरी दोस्त है पूनम दीदी, साहिब अंसारी, साहिब ममता जी,
0: जी
1: भाई और सुन रहे हैं, और वकील अहमद भाई है जो अक्सर अपने मेल में हमारा नाम मतलब लिखते हैं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी संदेश देने के लिए। तो दोस्तों ये तो पिंकी का कॉल था और इन्होंने किस तरह से संदेश दिया है आप तक वो संदेश भी पहुंच चुका है। अगर आप भी हमें कोई संदेश देना चाहते हैं तो प्लीज हमें जल्दी से कॉल करिए 0522 2238852 पर, या फिर 0522 2238845 पर। कॉल नहीं लग रहा कोई बात नहीं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर मेल करिए और सुनते रहिए अपने दिल को आरजे निखिल को।

तो दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे 11:42 का वक्त और मैं हूं आपके साथ आपका दिल आरजे निखिल। बहुत सारे लोगों के हम तक ईमेल भी आए हैं तो जल्दी से चलिए आपको बता देते हैं कि भाई ईमेल में लोगों ने क्या मैसेजेस दिए हैं। वकील अहमद जी का मेल है, गुड मॉर्निंग लिखते हैं, साथ में लिखा है कि संदेश ये है कि आम लगे हैं पेड़ों पर, बच्चों को चढ़ने ना दे पेड़ों पर, वहां से गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, और साथ में इन्होंने बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं भी बोली है। वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, जिला सीतापुर, साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, औरगुल सफा, सिद्धपी, अहमद नवाब, इन सब के नाम उन्होंने मेंशन किए। बहुत बहुत शुक्रिया वकील अहमद जी आपका हमें ईमेल करने के लिए। तालिब अंसारी जी का फिर से ईमेल आया हुआ है कटरा बाराबंकी से, लिखते हैं कि सर गीत आज सुपर डुपर प्ले हुए हैं और बहुत ही इंजॉय किया है, और इनका मैसेज ये है कि आजकल इतनी गर्मी है, हीट वेव चल रही है, सभी लोग इससे प्लीज बचकर रहें, कपड़े पहने, पूरा अपने जो शरीर है उसको ढककर रखें, और दोपहर में निकलने से पहले हिदायत जरूर रखें, पानी पीकर ही निकले या ORS का घोल भी साथ में रखें, नींबू पानी जरूर पीते रहें, बाकी सब लोग अपना अपना जरूर ख्याल रखें, इंजॉय करते रहें FM रेनबो जिस पर कि आज गीत बहुत मस्त प्ले हो रहे हैं। थैंक यू सो मच तालिब अंसारी जी आपका इस मेल के लिए।

इसके अलावा अरुण कुमार जी का भी मेल आया हुआ है। अरुण कुमार जी घुमैया हरदोई से लिखते हैं हमें, प्यार भरा नमस्कार भाई, आपको भी प्यार भरा नमस्कार रेनबो की तरफ से। और संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम इनको अच्छा लग रहा है, धन्यवाद दिया है, साथ में संदेश दिया है कि बरसात का मौसम आ गया है, अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल को भरा ना होने दें ताकि मच्छर और मक्खी से बचाव हो सके और हम सब सुरक्षित रह सके। अरुण जी आपकी जो बात है बिल्कुल सबको सोचने समझने की इसलिए जरूरत है क्योंकि बीच बीच में जब भी बारिश होती है कहीं भी अगर पानी भर जाता है तो मच्छर उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं और फिर वो हम ही लोग को काटते हैं, तो इसलिए प्लीज हर जगह सब लोग सफाई का जरूर ध्यान रखें। गुलसफा जी का मेल आया है, गुड मॉर्निंग लिखा है गुलसफा सिद्दीकी संडीला से, इन्होंने मेल किया हुआ है और इनका संदेश ये है कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए और आज हम लोग जो भी हैं सब उन्हीं की बदौलत है, इसलिए अपने माँ बाप का ध्यान जरूर रखें और क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के हम तक मेल पहुंच रहे हैं और अगर आप भी हमें ईमेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें ईमेल कर दीजिए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर, और आप हमें अगर कॉल करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल करिए 0522 2238 852 पर या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522 2238 845 पर। एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक आ रहा है आप सबके रेडियो सेट पर फ्रॉम द मूवी एक विलन रिटर्न्स। स्टे ट्यून्ड विद योर आरजे निखिल, सुनते रहिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: की गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: तो दोस्तों 11:53 का वक्त हो गया है और प्रोग्राम को वाइंड अप करने का धीरे धीरे टाइम हो रहा है, बट कोई बात नहीं, फिर भी हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी, आपका गुड नेम रेनबो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है?
2: मेरा नाम पीयूष है, मैं सीतापुर से बोल रहा।
1: जी पीयूष जी, कैसे हैं?
2: मैं ठीक हूँ।
1: वैसे क्या संदेश रहेगा आज आपका?
2: मेरा संदेश ये रहेगा, लोग कार से चले, बाइक से चले, थूके नहीं और रोड पे कचरा नहीं फेंकें।
1: जी,
2: 4 लीटर पानी पिए दिन भर।
1: बहुत ही फतेह की बात आपने की है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग गंदगी फैलाते रहते हैं, ऐसा हमने देखा है, और जिसको जहाँ आराम मिलता है वहाँ पे ही वो ऐसा काम करने लगता है। जैसे कि आपने अभी बताया, लोग कार से चलते हैं और राह चलते थूक देते हैं, गलत बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। और उम्मीद करते हैं कि आपने जो संदेश दिया है, हमें बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और इस पर अमल करेंगे। किसी का नाम लेना चाहेंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो पीयूष जी का हमें ये कॉल था और उन्होंने किस तरीके से इतनी

अच्छी बात मैसेज हम तक पहुंचाया है। फिलहाल दोस्तों 11:54 का ये वक्त हो रहा है और धीरे से आपको अब मैं कहूंगा टाटा बाय बाय, इसलिए कहूंगा क्योंकि अब जाने का तो वक्त हो गया है और अगला प्रोग्राम लेकर शिखा बिल्कुल तैयार है। तो एक प्यार से म्यूजिकल ट्रैक आप सबके लिए मैं बजाने जा रहा हूँ, उसको सुनिए, इंजॉय करिए और मैं कहता हूँ आपको टाटा बाय बाय।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया है कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउ लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। विभिन्न कोर्ट में लंबित वादों के निस्तारण के मामले में जौनपुर जिला ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अबंस्ट ने बताया कि मही माह में शासन स्तर से रैंकिंग जारी की गई है। इसमें जौनपुर को प्रदेश में पहला स्थान मिला है, जबकि 5 कोर्ट में जिले की 3 कोर्ट को प्रदेश के शीर्ष 5 में स्थान मिला है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। 2026 की एशियाई खेलों में से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा कि इन खिलाड़ियों को योजना में शामिल करने का उद्देश्य केवल पदक जीतने की संभावना पर ध्यान केंद्रित करना नहीं, बल्कि विभिन्न नौका श्रेणियों में सक्षम समूह तैयार करना है। चयनित समूह अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027।

जी 12:04 का वक्त और ये वक्त होता है आपके दिल को छू लेने वाले कार्यक्रम शतरूपा का, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त शिखा।

तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये कार्यक्रम खास कर है हमारी प्यारी प्यारी महिलाओं के लिए, जो उन्हें बनाता है हर क्षेत्र में सुपर एक्सपर्ट। तो आज दिन है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को हम क्या खास लाते हैं आपके लिए, तो आप थोड़ा गेस करिए और गेस करके हमें बताइए। और अगर नहीं गेस कर पाए तो भाई शिखा है ना यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि ट्यूसडे को बातें कौन सी होती हैं। तो बातें तो अभी ढेर सारी होंगी आपसे, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा ट्रैक मैंने लगा कर रखा है आप लोगों के लिए, तो सोच रही हूँ वो आप तक भेजूं, फिर उसके बाद बातें करते हैं ढेर सारी। तो चलिए एंजॉय करते हैं बेहतरीन सा गाना आपके रेडियो सेट्स पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जी 12:11 का वक्त, और दोस्तों अभी प्यारा सा ट्रैक आपने सुना, लोचा ए उल्फत हो गया। तो भाई ये प्यारा सा जो गीत आपने सुना, इसके बाद एक बार फिर से स्वागत करती है आपकी अपनी दोस्त शिखा कार्यक्रम शत्रुपा में। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वो सुन रहे हैं, अभी तक उन्होंने टॉपिक को गेस कर लिया होगा, क्योंकि इतने दिल से जो जुड़े होते हैं ना, हर दिन प्रोग्राम जो इतने प्यार से सुनते हैं, तो डेफिनेटली आज गेस करा होगा कि कौन सा प्रोग्राम और क्या बातें होने वाली हैं आज। और अगर नहीं गेस कर पाए तो भाई शिखा बताने वाली है कि आज हम बात करने वाले हैं फैशन की, जिसके लिए हम महिलाएं होते हैं बड़े ही क्रेजी। अच्छा दोस्तों, दादी का दौर हो या मम्मी का दौर, फैशन की एक खास बात रही है, और शायद यही वजह है कि फैशन ट्रेंड्स समय के साथ बदलते जरूर हैं, लेकिन अक्सर वापस लौट आते हैं। आज के समय में नई पीढ़ी उस दौर के कपड़े और एक्सेसरीज को नया ट्विस्ट दे रही है, जिससे वे पुराने होते हुए भी ट्रेंडी लगते हैं। ऐसा ही एक फैशन ट्रेंड लौट कर आया है। जी हाँ, ऐसा ही एक फैशन ट्रेंड लौट कर आ चुका है, जिसे कहते हैं Y2K। क्या बोलते हैं? जी हाँ, उसको बोलते हैं Y2K। तो हम आज बात करने वाले हैं कि क्या होता है Y2K। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गाना लगाया है वो भेज दूं आप तक। तो हमारे लिसनर्स कह रहे हैं जी हाँ भाई शिखा, गाना भेजिए, फिर हम बात करेंगे क्या होता है Y2K।

जी 12:22 का वक्त और प्रोग्राम शत्रुपा में आज हम बातें करने जा रहे हैं फैशन ट्रेंड Y2K के। जी हाँ, शत्रुपा में आज हम बात करने जा रहे हैं फैशन Y2K के बारे में। क्या होता है Y2K? तो आपको बता दूं, Y2K यानी ईयर 2000 का फैशन ट्रेंड उस दशक की शुरुआत का ग्लैमरस और बोल्ड स्टाइल था। पॉप कल्चर से प्रेरित यह ट्रेंड फैशन में नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी यादों को जोड़ते हुए आपको नए अंदाज से जीने का मौका देता है। नई पीढ़ी के लिए यह इस गर्मी का आकर्षक केंद्र बन गया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इन समर्स ये जो Y2K का जो ट्रेंड है ना, वो बहुत ज्यादा प्रचलन में है। नई पीढ़ी Y2K फैशन को मॉडर्न ट्रेंड्स और पर्सनल स्टाइल के साथ कॉपी कर रहे हैं। जो पुराने दौर को नए जमाने से जोड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर अभी तक आपने इस तरीके का फैशन ट्रेंड ट्राई नहीं किया है तो अब ट्राई करने की है बारी। क्योंकि दोस्तों, इस तरीके का जो ट्रेंड होता है ना, आप पुराने चीजों को भूल

नहीं है, आप उनको बिल्कुल नए लुक में ले आते हैं और आप खुद भी इतने ज्यादा गॉर्जियस लगने लगते हैं कि लोग वाह वाही करते करते थकेंगे नहीं आपकी। तो जरा आप देखिए कि आपके वार्डरोब में ऐसी कौन सी पुरानी ड्रेस है जिसको आप एक नया लुक दे सकते हैं Y2K फैशन ट्रेंड के साथ। तो आप दीजिए अपने आप को एक नया लुक और एक प्यारा सा गाना, हम भेजते हैं आप तक। तो चलिए एंजॉय करते हैं हम और आप दोनों ये प्यारा सा ट्रैक। और साथ में भाई आपको ये भी देखना है कि कौन सा फैशन ट्रेंड आपको Y2 के साथ मैच करना है अपनी पुरानी ड्रेसेस और नए ड्रेसेस के मेल के साथ। तो चलिए गाना आ रहा है, उसको एंजॉय करिए और थोड़ा दिमाग लगाइए।

जी हाँ, 12:30 का वक्त, और कहते हैं हर गम फिसल जाए जब आप अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगी, अपने को बिल्कुल बेहतर से बेहतरीन बनाने लगेंगी, और वो भी नए नए टिप्स को अप्लाई करके। तो भाई क्या लगने वाली हैं आप? लगने वाली हैं स्टनिंग। वो स्टनिंग कैसे लगना है हम आपको बताते हैं। जी हाँ, हर ट्यूसडे इस फैशन सेगमेंट में तो आज हम बात कर रहे हैं Y2K। तो जब हम बात करते हैं फैशन की, तो सिल्वर और गोल्ड शेड्स जैसे ग्लासी लुक देने वाले मटेरियल्स Y2K फैशन की पहचान है। आपको पता है ये जो शेड्स होते हैं ना, ये पार्टी वेयर, बैग, फुटवेयर और मेकअप में खूब देखे जाते हैं। उनका चमकदार फ्यूचरिस्टिक लुक उस दौर की टेक्नोलॉजी और पॉप कल्चर से प्रेरित था। उस समय जो म्यूजिक जो फेमस थी, जो कल्चर था, जो टेक्नोलॉजी थी, उस टाइम का जो था 2000 का, वो उससे बहुत ही ज्यादा प्रेरित था। और ऐसे में अगर आज आप Y2K ट्रेंड को अपनाते हैं, तो उसमें ही मेटेलिक जो जैकेट्स हैं, शाइनी एक्सेसरीज हैं, फिर से हम महिलाओं को आकर्षित करते हैं और एक दिखाते हैं हमको एलिगेंट। तो भाई अब एलिगेंट लगना है तो ये, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और चीजों को और अच्छे से करना होगा, और भाई Y2K जो ये ट्रेंड है उसको जरूर से अपनाना होगा।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आप शार 100.7 FM रेनबो पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

क्योंकि ये हर तरीके की स्कर्ट्स के ऊपर ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये जो स्कर्ट के साथ आप ये टॉप पहनते हैं, आप Y2 के फैशन को साथ में जब मिक्स करके पहनते हैं ना, तो एक बोल्ड और परफेक्ट लुक देता है आपको। आज जेन जी और मिलेनियल्स ने इन्हें फिर से ट्रेंड में लाकर एक नया ट्विस्ट दिखाया है। वे इन्हें टैक टॉप, ट्यूब टॉप और ओवरसाइज जैकेट के साथ मैच कर स्टाइलिश और मॉडर्न लुक क्रिएट कर रहे हैं। और भाई, अगर आपने स्नीकर्स, बूट्स और मिनी बैग्स साथ में अप्लाई कर लिए, साथ में ले लिया, तो भाई क्या कहने वाले हैं लोग, कहने वाले हैं क्या लग रही हो। तो इस तरीके का जो ट्रेंड है ना, बहुत ही अमेजिंग है। और हमें लगता है कि जितने भी लोग हैं, एक बार इसको ट्राई जरूर करना चाहिए। और दूसरा एक चीज और बहुत जरूरी है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी ड्रेस पहने वो ड्रेस हमारे अकॉर्डिंग हो, ठीक है, हम हमारी एज के अकॉर्डिंग हो, हमारा जो फिजिक है उसके अकॉर्डिंग हो। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको वो कंफर्ट देनी चाहिए। फैशन को अपनाइए, लेकिन फैशन के साथ आप कंफर्ट को मत भूलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो हम टाइट कपड़े पहनते हैं, टाइट भी बहुत एक ट्रेंड चलता है कि ट्रेंड जो टाइट कपड़े में बहुत अच्छा लुक देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइट कपड़े आप अपने अकॉर्डिंग पहनिए कि आपको वो बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में रखें, और जब आप उसको पहने तो आपको कहीं से हार्म ना हो, और साथ ही साथ आप दिखें स्टनिंग। जब आप इस तरीके का ट्रेंड अपनाएंगे और अपना रही हैं अगर, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने अभी तक इस ट्रेंड को नहीं अपनाया, तो अब अपनाने की बारी है। और साथ में आप देखिएगा कि कितना ग्लैमरस लुक आपका लगेगा और हर जगह आपको खास दिखाएगा। तो चलिए, एक प्यारा सा गाना लगा के रखा है, वो इंजॉय करते हैं, फिर आते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं अभी आपसे। स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 12:38 का वक्त और आज आपकी दोस्त शिखा है आपके साथ कार्यक्रम शत्रुपा में, जिसमें आज हम बातें कर रहे हैं 2000 के फैशन की। जी हाँ, जो उस समय का दौर था, उस समय हम कौन सा फैशन अपनाते थे और आज उसको ट्रेंडी वे में साथ में यूज करके कैसे हमें देखना है एलिगेंट। तो आपको बता दूं कि Y2K फैशन में ना प्लेटेड मिनी स्कर्ट्स का खास ट्रेंड था, तो आप मिनी जो स्कर्ट्स थी वो तो ट्राई कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में उसके साथ आप लॉन्ग जो टी शर्ट हैं, जो लॉन्ग स्कर्ट्स हैं, उसको भी आप उसके ऊपर भी आप Y2K जो ये फैशन है उसको ट्राई कर सकते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी दोस्तों 12:47 का वक्त और हम बात कर रहे हैं Y2K फैशन ट्रेंड की। तो आपको बता दें कि जो Y2K का ये जो फैशन है उसमें क्रॉप टॉप को भूल नहीं सकते हैं हम लोग। जी हाँ, क्रॉप टॉप अपनी जगह वैसे ही बनाए हुए है। यह स्टाइल पहले भी ग्लैमर का प्रतीक था और आज की नई पीढ़ी इसे और भी बोल्ड अंदाज में अपना रही है। लो राइज जीन्स के साथ इन टॉप्स को पेयर कर आप पा सकती हैं ग्लैमरस लुक। Y2K ये जो फ्यूजन है ना, ये पुराने दौर की झलक के साथ साथ आज के जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना उसको भी बढ़ा रहा है, उसकी फैशन को बढ़ा रहा है। तो इस फैशन सेंस को आप जरूर से ट्राई करें और देखिएगा कि क्या भाई लगने वाली हैं आप इनको। हम कहते ना, कभी कभी कहते हैं कि भाई तुम इतने प्यारे लग रहे हो कि उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वर्ड्स नहीं है हमारे पास। तो कुछ आप भी ऐसे ही लगने वाली हैं जब आप ये Y2K फैशन ट्रेंड को अपनाएंगी। और साथ ही आपको एक जरूरी जो सूचना है वो भी दे दें, प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इनवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल NIPP की अंतिम तिथि जो 31 मई 2026 थी उसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 तक कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं https://prasarbharti.gov.in/NIPP और https://akashwani.gov.in/files/NIPP.pdf। तो अब इतनी ढेर सारी बातें करने के बाद हमारे जो लिसनर्स हैं उनकी जो डिमांड है वो हम भैया बिना कहे ही सुन लेते हैं। और वो डिमांड है कि एक प्यारा सा ट्रैक भेज दें हम तक और बातें तो

जी 12:54 का वक्त और कितना सही गाना प्ले हो रहा था कि कितना रिश्ता छोड़ू ना। जब आप इतने प्यारे लगेंगे ना तो आप आपको देखकर जाने का किसी का हटने का मन करेगा क्या? और हर इंसान आपसे कहेगा तेरा रास्ता छोड़ू ना, तेरा रास्ता छोड़ू ना। तो कितनी अच्छी बात इस गाने ने कह दी। और आज हम लोग बात भी तो ऐसे ही कर रहे हैं कि फैशन हो, फैशन और वो फैशन जो हम लोगों को क्रेजी बना देता है और उसके लिए हम रहते हैं कि आज ऐसे हेयर स्टाइल करने, आज ऐसे कपड़े पहने, आज ये बैग अपनाना है और आज ऐसे हमें फुटवेयर पहनने हैं, तो हम कितना ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। तो

आज हम लोगों ने जो बात करी, आपको एक की पॉइंट बता दूं कि जो आज हम लोगों ने फैशन Y2K के बारे में जो बात करी है ना, तो वो बिल्कुल सही है. इस समय का जो सीजन है, गर्मी का जो सीजन है ना, Y2K फैशन ट्रेंड को अपनाने का बिल्कुल सही समय है. ब्राइट कलर जैसे पिंक, ऑरेंज, येलो और मेटेलिक, है ना, ये सब जो शेड्स है Y2K के लुक को और भी कहते ना जीवंत बना देते हैं. तो बस अभी तक अगर आपने, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अगर आपने इस तरीके के फैशन ट्रेंड को अभी तक नहीं फॉलो किया, अभी तक नहीं अपनाया, तो बस इन समर्स आपको ये फैशन अपनाना है और सबसे अलग नजर आना है. और देखिए, टाइम का इशारा भी हो गया है, 12:55 हो गए आपसे बात करते करते, और ये समय कह रहा है कि शिखा भाई बातें बहुत कर ली और अब प्रोग्राम शत्रुपा को यहीं पर करना होगा वाइंड अप. लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आपकी ये जो दोस्त है ना, ये अभी बहुत ढेर सारी बातें करने वाली है अगले प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में. तो बस बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता देने का भरोसा दिया। जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों को मुख्यमंत्री ने खूब दुलार और आशीर्वाद दिया, साथ ही उन्हें खूब पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए चॉकलेट दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मंदिर की गौशाला में जाकर गौ सेवा भी की थी। लखनऊ मेट्रो भी अब वन नेशन वन कार्ड ला रहा है। इस कार्ड के धारक देश के किसी भी शहर में चल रहे मेट्रो में सफर कर सकेंगे। बस इसके लिए उन्हें अपने कार्ड में पर्याप्त बैलेंस रखना होगा। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसी पखवाड़े में नया कार्ड लॉन्च करेगा। मौजूदा समय में लखनऊ मेट्रो में रोजाना सफर करने वालों के लिए मेट्रो रेलवे स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इसे एक माह से लेकर साल भर के लिए रिचार्ज कराया जा सकता है। मेट्रो प्रवक्ता ने बताया कि एनसीएमएससी कार्ड लॉन्च करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसी पखवाड़े में इसे लॉन्च किया जाएगा। वन नेशन वन कार्ड को स्मार्ट कार्ड की जगह लाया जा रहा है। लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की सुविधा को देखते हुए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 11 जून कर दिया है। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सुधार की सुविधा भी अब 10 जून तक उपलब्ध रहेगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार जिन पाठ्यक्रमों में लिखित परीक्षा आवश्यक नहीं है उनकी मेरिट सूची 13 जून को जारी होगी। वहीं बीबीए, बीसीए, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बी फार्मा और डी फार्मा पाठ्यक्रमों के लिए लिखित परीक्षा 14 जून 2026 को होगी। इनकी मेरिट सूची 15 जून को घोषित की जाएगी। चंदौली के धानापुर विकासखंड के गुरेहू गांव में कल यूपी एग्रीज परियोजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वाराणसी के वैज्ञानिकों ने किसानों के बीच धान की सीधी बुआई का लाइव प्रसारण दिखाया। वैज्ञानिकों ने उपस्थित किसानों को धान की सीधी बुआई के बारे में मूलभूत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि इस विधि से किसानों के श्रम, समय और पानी सभी की बचत होगी। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास

0: सहभागी बने।
1: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा, कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
2: ओम नमः शिवाय।
1: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
3: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ।
1: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

जी 1:05 का वक्त और ढेर सारी बातें करने हाजिर हो गई है आपकी अपनी दोस्त शिखा कार्यक्रम होठों पे तेरी बात में। तो दोस्तों हर रोज की तरह आज भी एक बेहतरीन विषय पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आप क्या सोचते हैं उस विषय पर। तो वो टॉपिक अभी मैं बताऊंगी आपको कि कौन सा वो टॉपिक है जिस पर आपको अपनी राय भेजनी है। और राय भेजनी तो है, और भेजनी कहाँ है आपको राय, वो भेजनी है अपनी हमारी ईमेल आईडी पर। और हमारी ईमेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। और दोस्तों आपको वो हम विषय बताएं उससे पहले एक प्यारा सा गाना हम आप तक भेजते हैं। तो चलिए आप और हम दोनों ये प्यारा सा ट्रैक एंजॉय करते हैं।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला कुशीनगर की तरक्की को नई रफ्तार देने के लिए आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए की लागत वाले 278 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस दौरान वजीर आला ने तमकोहीराज में मुख्तलिफ महकमों की नुमाइश का मुआयना और स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट तकसीम किए। वजीर आला ने आज इस मौके पर वहां मौजूद अवाम को खिताब भी किया। इस दौरान वजीर आला ने कहा कि आज कुशीनगर के पास अपना मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट है। उन्होंने कहा कि हम किसानों के भी हक में काम कर रहे हैं।
1: कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सेलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं।
0: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में अफसरान को अहकाम देते हुए कहा कि हुकूमत की बहबूदी स्कीमों का फायदा हर अहल अफराद तक पहुंचना यकीनी किया जाए। कल देर शाम गोरखपुर पहुंचे वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में मुनक्किद जनता दर्शन में तकरीबन 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी दिक्कतें सुनने के बाद वजीर आला ने दरख्वास्तों के तस्वीर के लिए मुतल्लिका अफसर और पुलिस अफसरान को अहकाम दिया कि सभी दिक्कतों का तस्वीर मुकर्रर वक्त में मुनसिफाना और पुर इत्मीनान होना चाहिए। मुल्क में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास प्रिंसिपल के तहत गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल जिक्र तब्दीली हुई है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों किसानों खवातीन और नौजवानों की बहबूद और बाइख्तियार बनाने के लिए कई जरूरी पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार गुज़िश्ता 12 सालों में खसूसी शोबे में हुकूमत की कोशिशों पर खसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है। आज खवातीन बाइख्तियारी की सिमत में हुई कोशिशों पर एक खसूसी रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 के री एग्जाम को मौजूदा पेन और पेपर की जगह कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहान मुनक्किद करने का मतालबे वाली अर्जी खारिज कर दी है। अदलिया ने कहा है कि कंप्यूटर मबनी री एग्जाम मुनक्किद करने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि इम्तिहान रद्द होने के बाद से कौमी एग्जाम एजेंसी पहले से ही चैलेंजेस का सामना कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल सिविल पुलिस और उसके मसावी ओहदों के लिए तहरीरी इम्तिहान 8, 9 और 10 जून को मुख्तलिफ अजला में मुतय्यन मराकज पर मुनक्किद होंगे। सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज एडिशनल सेक्रेटरी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड ने बताया कि ये इम्तिहान 2 शिफ्टों में मुनक्किद होंगे। 32,000 से ज्यादा ओहदों के लिए इस भर्ती से मुतालिक तफसीली मालूमात बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब कर दी गई है। लखनऊ मेट्रो भी अब वन नेशन वन कार्ड ला रहा है। इस कार्ड के होल्डर मुल्क के किसी भी शहर में चल रहे मेट्रो में सफर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने कार्ड में बैलेंस रखना होगा। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसी पखवाड़े में नया कार्ड लॉन्च करेगा।

आज ज्येष्ठ महीने का पांचवां बड़ा मंगल है। लखनऊ के अलीगंज वाके पुराना हनुमान मंदिर, नया मंदिर हनुमान सेतु, हनुमंत धाम, हजरतगंज वाके दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर समेत मुख्तलिफ मंदिरों में सुबह से अकीदतमंदों का तांता लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वाड ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के इल्जाम में आजमगढ़ से एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ दहशतगर्दाना तंजीम हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। और महकमे मौसमियात ने रियासत के मगरबी अजला में 4 जून तक कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक इस दौरान रियासत के मशरकी अजला में मौसम खुश्क रहेगा। महकमे ने आने वाले दिनों में रियासत में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्ज हरारत में बतदरीज इजाफे की भी पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

तो भाई 1:16 हो गए हैं और आज होठों पे तेरी बात पे हम बताने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक हम आपको देने वाले हैं। तो आपको बता दें कि दोस्तों, जब बचपन की बात अगर हम करें तो मन में कितनी मतलब खुशी सी दौड़ उठती है। तो कहते हैं ना, बचपन कितना प्यारा होता है, कितना मासूम होता है। और अक्सर जब खुद को जिम्मेदारियों से घिरा देखो तो लगता है काश वो बचपन ना फिर से वापस आ जाए। लेकिन हम सब ने बचपन जिया तो है ही और खूब शरारतें भी की हैं। और भाई कई बहाने बनाए हैं, कई झूठ, कई तरीके के खेल, दूसरे को गलत ठहरा कर खुद को सही साबित करना। और देखिए ना, आज भी हम जब देखते हैं, अगर पलट के अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को देखते हैं, तो उन चीजों को हमारे बच्चे भी अक्सर रिपीट करते हैं। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? इतनी बातें हमने करी आपसे, इतनी बातें बताई कि बचपन बचपन बचपन, तो आज क्या हम बात करने वाले हैं? एनी गेस? मुझे लग रहा है हाँ, ये टिक टिक टिक टिक टिक टिक एक माइंड में जो है ना वो चल रहा है कि कुछ तो ऐसा ही रिलेटेड बचपन से होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और तो और आपको बता दें कि आज का जो टॉपिक है वो हमने सच में बचपन से ही जोड़ा है। तो आपको बता दें कि जब हम स्कूल जाते थे और कभी कभी जब मन नहीं होता था और मम्मी पापा बहुत इंसिस्ट करते थे कि नहीं स्कूल जाना ही है, तो हम क्या करते थे? तो हमें जब बहुत ज्यादा कोई इंसिस्ट करता था तो हम करते थे बहाने। जी हाँ, कोई ना कोई बहाना, आज बहुत सर में दर्द हो रहा है मम्मा, आज पेट में दर्द होने लगा, तो एक नया कोई एक्सक्यूज होता था। आज तो मैम ही नहीं आएंगी, आज तो ऐसा है, आज वो है, तो आज तो पढ़ाई नहीं होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो बहाने थे वो हम अप्लाई करते थे अपने स्कूलिंग पे। और आज भी जब देखिए ना, तो हमारे नन्हे मुन्ने वही छोटे छोटे बहाने, कभी ना मम्मा सर बहुत दर्द हो रहा है, तो इस तरीके के जो बहाने थे ना, कितने क्यूट, जब आप उनको सोचिए तो कितनी हंसी आती है ना कि क्या हम बचपन में करते थे। तो आज आपको बताना है हमें ये कि कौन सा बहाना आप बनाते थे कि जब आपका स्कूल जाने का मन नहीं था, क्योंकि ये जो जाने वाला स्कूल ना जाने का मन है ना, ये सबके साथ होता है कि भाई आज भी हम देखते हैं तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है कि हमारे बच्चे भी तो हम भी तो ऐसे ही करते थे। तो आपने कौन से बहाने बनाए अपनी मम्मा पापा को, मम्मा मम्मी पापा की डांट से बचने के लिए? तो वो बहाने आज आपको बताने हैं हमें कि आपने अपने बचपन में, अपने चाइल्डहुड में वो कौन से बहाने बनाए कि आपको स्कूल ना जाना पड़े। तो बस इस टॉपिक पर अपने

डिटेल्स और व्यूज हमें भेजिए हमारी मेल आईडी पर, और हमारी मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com. तो आप भाई भेजिए हमें बहाने और हम आप तक भेजते हैं प्यारा सा गीत जो हमने लगा के रखा है आपके लिए. तो चलिए प्यारा सा ट्रैक आ रहा है, एंजॉय करते हैं.

जी, 1:24 का वक्त और हमारे पास जो मेल आ गए हैं, अब मेरा मन है कि जल्दी जल्दी उनको पढ़ लेते हैं। सुधाकर जाधव जी ने हमें मेल कर दिया है और लिखा है, होठों पे तेरी बात, इस प्रोग्राम में स्कूल में ना जाने के कौन से बहाने बनाने थे, हम तो स्कूल में ना जाने के

हंसते माँ बाप को ऐसा जोरदार बनाना बहाने बनाते थे कि स्कूल में ना जाने के वास्ते हमारे गांव के नजदीक एक किलोमीटर में नदी पड़ती है और नदी में हमको टाइगर दिखा था तो हम कल से स्कूल नहीं जाएंगे, ऐसा बहाना बनाते थे। तो देखिए ना कितने मतलब कहते ना बचपन की एक चुलबुली सी याद आपको हमने याद दिला दी कि आपने कितनी अच्छी बात बताई कि नदी देखते थे उसमें लगता था टाइगर दिख रहा है तो इस तरीके का बहाना। तो चलिए थैंक यू सुधाकर यादव जी, आपने अपनी जो बचपन में इस तरीके का बहाना बनाया और हमसे शेयर करा। और हमारे पास रामराज जी ने मेल किया है, श्री गणेशाई नमो होठों पर तेरी बात, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। रामराज जी आपको भी नमस्कार, लेकिन आज का जो टॉपिक था उससे रिलेटेड आपने नहीं लिखा है। तो टॉपिक मैंने आपको बताया था, टॉपिक से रिलेटेड जरूर कुछ ना कुछ लिखिए और आप भी हंसते हैं और जितने हमारे लिसनर्स सुनते हैं वो भी हंसते हैं और हमारे भी चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है। और कार्तिक अवस्थी जी ने हमें मेल किया है, सर हम लोगों को गर्मी के मौसम में अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जिससे ग्राम व पोस्ट इटावा जिला सीतापुर, तो इन्होंने एक हमें संदेश लिखकर भेज दिया है कि हमें गर्मी के मौसम में खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस पर मैं भी कह दे रही हूँ भाई, आप गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और इस सीज़न में आपको जो बाहर का है, बाहर का खाना पीना है वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और घर का ही अच्छा बना हुआ ताज़ा खाना खाना चाहिए। और बाबू अंसारी जी ने भी हमें मेल कर दिया है, अच्छा इन्होंने मुझे लग रहा है पहले वाला मेल है इन्होंने टाइम, हाँ ठीक है। तो हमारे पास जया जी ने मेल कर दिया है, जया जी ने लिखा है कि मुझे अपने स्कूल ना जाना पड़े तो मैं कहती थी मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है और अगर आज मैं चली गई ना तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो इस तरीके का ये बहाना बनाती थी और आज भी देखती हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं जब देखती हूँ कभी कभी मेरे बच्चे भी मुझसे यही सेम चीज़ कहते हैं, तो जब वो कहते हैं ना तो मुझे गुस्सा तो आती है लेकिन थोड़ा सा मैं अंदर जब किचन में जाती हूँ तो हंसते हुए अंदर जाती हूँ कि अरे ये तो सेम वही बहाना है। तो हर बचपन इतना खूबसूरत होता है और जो बचपना होता है ना उसको खूब अच्छे से जीना भी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात आपने लिखी और इन्होंने हमें हरदोई से मेल लिखा है और रामेश्वर जी का भी मेल आ चुका है हमारे पास। तो चलिए पढ़ते हैं, होठों पर तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बहनशिखा जी को प्यार भरा नमस्कार, हम आपका प्रोग्राम बराबर सुनते हैं, हमें आपका होठों पर तेरी बात कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी प्रस्तुति कर रही हैं बहनशिखा जी, आपकी जितनी भी तारीफ करें कम है। तो थैंक यू सो मच, तारीफ तो आपकी करनी चाहिए कि आप इतने प्यार और इतने एहसास से हमसे जुड़ते हैं। जब बहन शिखा जी कार्यक्रम में आती हैं तो चार चांद लग जाते हैं, बचपन स्कूल ना जाना बहाना आज हमारे सिर दर्द हो रहा है। अच्छा इनका ये जो बहाना था आज सिर दर्द हो रहा है ये भी बहुत फेमस बहाना था। और लिखा है ग्राम व पोस्ट मुंगिसापुर कानपुर देहान से इन्होंने हमें मेल किया है, रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र बधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी को। तो आपको भी धन्यवाद कि आपने इतने प्यार से इतना प्यार भरा मेल हमें लिखा। और हमारे पास जितेंद्र जी ने भी मेल किया, इन्होंने हमें बाराबंकी से मेल लिखा है और लिखा है कि जब मुझे स्कूल जाना था नहीं मन करता था, वैसे तो मैं स्कूल रोज ही जाता था लेकिन जब मेरा मन नहीं होता था तो मैं मम्मा से कहता था कि मम्मा मेरे जो है सर में बहुत दर्द हो रही है और मुझे बुखार चढ़ रहा है, हालांकि उस समय बुखार नहीं होता था लेकिन इनका ये जो बहाना था ये कहते थे कि मम्मा मेरे बुखार जो है चढ़ रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, मतलब याद करिए ना तो कितनी अच्छी लगती हैं कि क्या हम करते थे, बचपन कितना प्यारा था और सब उस बात को कभी ना कभी मतलब यकीन भी करते थे कि हाँ हो सकता हो सच में दिक्कत हो रही हो। तो चलिए भाई अब इतनी बातें तो हो गई और एक प्यारा सा गाना भी हमने लगा के रखा है तो वो आप तक आ रहा है, तो चलिए एंजॉय करते हैं प्यारा सा ट्रैक।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: जी 1:34 का वक्त और अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गाना सुना, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। जी हाँ, और हमारे बचपन में हम क्या कहते थे, हमको तो छुट्टी से प्यार है। जी हाँ, छुट्टी से तो प्यार है, और लगता था कब छुट्टी हो।

एवरी डे हम वेट करते थे, अच्छा कब फेस्टिवल है, घर में भी पूछते थे. और घर में पूछते ये थे कि मम्मी अच्छा इस अभी जो है इस महीने में कितनी छुट्टी पड़ने वाली है, कौन सा फेस्टिवल आना, ये क्वेरी हम लोगों की ना चलती ही रहती थी. और सबसे अच्छा जो छुट्टी लेने का तरीका था वो था बहाने बनाना. और जो बहाने आप लोग बना रहे हैं ना, मैं देख रही हूँ इतना अच्छा लग रहा है. और मुझे तो जितने भी, मैं तो हंस रही हूँ, साथ में मेरी जो जितने भी लिसनर्स हैं वो भी ये सुन के बहुत खुश हो रहे होंगे कि कितने अच्छे अच्छे बहाने बना देते हैं. और जो बच्चे अगर सुन रहे होंगे तो भाई उनको नए नए बहाने मिल जाएंगे स्कूल ना जाने के लिए, बहाना बनाने के. तो इन्होंने, चलिए हम मेल पढ़ लेते हैं. हमारे पास मेल आ चुका है गणेश दत्त जी का. मेरी बेटी 13 जुलाई को 2 साल की हो जाएगी. एक बार बेटी से पप्पू मांगा और दे नहीं रही थी, पप्पी मांगा तो दे नहीं रही थी. हमने बोला बेटा दे दो फ्रूटी देंगे, उसने बोला फ्रूटी नुकसान करेगी, बहाना कर गई पप्पी ना देने का, ना देना पड़े. अच्छा, बच्चों से कहते हैं ना प्यार चाहिए होता है, तो भाई बच्चे कभी अपनी

जुलाई को 2 साल की हो जाएगी। एक बार बेटी से पप्पू मांगा और दे नहीं रही थी, पप्पी मांगा तो दे नहीं रही थी, हमने बोला बेटा दे दो फ्रूटी देंगे, उसने बोला फ्रूटी नुकसान करेगी, बहाना कर गई पप्पी ना देने का, ना देना पड़े। अच्छा, बच्चों से कहते हैं ना प्यार चाहिए होता है, तो भाई बच्चे कभी अपनी मन मर्जी के होते हैं, अपनी मन मर्जी चलाते हैं, जब मन होगा तभी पास में आएंगे, अदरवाइज वो पास नहीं आएंगे। और गणेश जी, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये बहाना बनाना तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन हमने पूछा था कि आप कौन सा बहाना बनाते थे जब आप स्कूल नहीं जाना चाहते थे। तो हमारे पास मेल आया है, महेंद्र दीपन जी ने हमें मेल किया है। अरे वाह, बहुत बड़ा सा मेल, प्यारा सा मेल है। आदरणीय आरजे शिखा मैम जी, सादर नमस्ते, मैं महेंद्र दीपन राजस्थान के नागौर जिले के रूण गांव से आपका बेहद प्रिय कार्यक्रम होटो पर तेरी बात सुन रहा हूँ। आपका अंदाज और आज का विषय दोनों ही दिलचस्प है। बचपन में स्कूल ना जाने के बहाने वाली बात छिड़ी तो मुझे अपनी वह मासूम शरारत याद आ गई। सच कहूँ तो मैंने कभी घर पर बहाना नहीं बनाया, क्योंकि हमारा घर गाँव से करीब 3 किलोमीटर दूर खेतों में स्थित था। मेरी अपनी एक अलग ही स्ट्रैटेजीज थी। मैं घर से तो स्कूल के लिए समय पर निकलता था, लेकिन स्कूल के गेट तक ना जाकर रास्ते में ही अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट के मैदान पर उतर जाता था। पूरा दिन दोस्तों के साथ क्रिकेट का आनंद लेने के बाद जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी मैं वापस घर की ओर चल देता था। ये सिलसिला मैं रोज तो नहीं लेकिन महीने में एक बार जरूर दोहराता था, वह भी सिर्फ क्रिकेट के जुनून के कारण। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वह दिन बहुत याद आते हैं। आपके इस प्रोग्राम ने आज फिर से मुझे उन सुनहरी यादों में खोने का मौका दे दिया। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका श्रोता महेंद्र दीपन। तो बहुत अच्छी बात, देखिए मैंने कहा ना कि हम लोगों ने जब बात करी बचपन की तो कितनी यादें हमारे सामने आंखों के सामने आ रही हैं। तो कहते ना इन छोटी छोटी शरारतों में ही बचपन है वो जिंदा रहता है, और अगर ये ना हो ना तो जब हम तो फिर अगर हम ये चीजें ही ना हो तो हम क्या याद करेंगे। तो चलिए, जावेद अख्तर जी ने हमें मेल कर दिया है और लिखा है, इन्होंने अभी पढ़ते हैं हम जल्दी से, इन्होंने लिखा है, इन्होंने आज की टॉपिक पे नहीं लिखा है आई थिंक। तो जावेद अख्तर जी ने हमें मेल किया है और सुधाकर जाधव जी ने फिर से मेल कर दिया है, हमारा स्कूल ना जाने का बहाना झूठा निकला, तो इतनी मार पड़ती थी पिताजी की मार अभी तक हमारे जहन में है। अभी फिलहाल मेरी उम्र 62 साल की है, तो ये तो बात है, मतलब जब डांट तो पड़ती थी कि भाई आपने बहाना बनाया, लेकिन ठीक है चलता है। मास्टर राधे श्याम शाक्या कसन कासगंज से गुड आफ्टरनून शिखा जी, और इन्होंने हमें मेल लिखा है, इन्होंने लिखा आप कैसी हो, बचपन में जब भी स्कूल जाने का मन नहीं होता था तो इन्होंने लिखा है नहीं होता था तो मैं खुरपी और बोरी लेकर घास छीलने निकल जाते थे। नाइस प्रेजेंटेशन थैंक्स। अच्छा, मतलब ये अपने खेत में चले जाते थे खुरपी और वो क्या छीलने के लिए, घास मतलब निकालने के लिए निकल जाते थे। तो कितने नाइस बहाने हैं ना, मतलब हम लोग तो सोच रहे थे कि जो छोटे मोटे बहाने वो पेट दर्द होना, सर में दर्द होना, लेकिन यहाँ तो आप देखिए ना एक से एक चीजें निकल के आ रही हैं कि भाई क्या करते थे हमारे लिसनर्स। तो चलिए अब मेल जो है ना, बाकी के बहुत ढेर सारे हमारे पास मेल आ गए हैं, और ये जो मेल आए हैं वो आपका प्यार है, वो हम धीरे धीरे अभी आपके मेल्स पढ़ेंगे, लेकिन एक प्यारा सा गाना क्यों किया है आपके लिए, तो चलिए सुनते हैं।

जी 1:44 का वक्त और आज हम सुन रहे हैं नए नए बहाने, जी हाँ, स्कूल ना जाने के, और प्रोग्राम है होठों पे तेरी बात, और इतना इंटरेस्टिंग और इतना दिलचस्प टॉपिक पे, और नए नए बहाने हमको मिल रहे हैं कि कौन कौन से बहाने हमारे लिसनर्स अपनाते थे। तो प्रवीण जी ने हमें मेल कर दिया है और मेल में लिखा है कि 10वीं तक कोई बहाना नहीं बनाया, एक दिन भी नहीं जाओ तो पापा बहुत गुस्सा होते थे। 5वीं में मेरी 100% उपस्थिति थी, जब 11वीं में गया तब कभी कभी मैं स्कूल के लिए निकलता था तो स्कूल ना जाकर दोस्त के घर घूमकर वापस घर आ जाता था, तब तक पापा भी ऑफिस चले जाते थे। 12वीं कक्षा में तो लंच के बाद ही स्कूल से बंक मार कर घर आ जाते थे और कंप्यूटर गेम खेलते थे। बहाना तो नहीं बनाया लेकिन ऐसा करने से रिजल्ट ज़रूर बिगड़ा। तो हाँ दोस्तों, ये बात बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का बहाना तो ठीक है और हम सबका बहाना ठीक है, कभी कभी चीज़ों को नहीं करने का मन करता, कभी कभी हम अक्सर किसी भी चीज़ में बहाने बना लेते, लेकिन उन बहानों से नुकसान ना हो इस चीज़ का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। कमल शर्मा जी ने हमें मेल कर दिया है। कमल शर्मा, गणेश दत्त की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार।

सत्विक रोड चिनहट से इन्होंने हमें मेल किया है, स्कूल ना जाना पड़े इसलिए बहाने हमने भी खूब बनाए हैं, पेट दर्द का बहाना बनाया था। तो ये तो बिल्कुल एक कहते हैं ना बहुत फेमस बहाना है, हर इंसान मतलब पेट दर्द जो है होता है ना, तो ये बिल्कुल अच्छी सी बात है कि ये पेट दर्द बीच में आ जाता है और स्कूल ना जाना पड़े या कोई बहाना अगर मन, और हम बड़े भी तो अक्सर कभी कभी बहाने बनाते हैं। तो राजेश कुमार जी ने हमें मेल करा है लेकिन गुड आफ्टरनून लिखा है और कुछ लिखा नहीं है। और जावेद अख्तर जी ने हमें फिर से मेल कर दिया है और लिखा है, तो इनका मेल मुझे लग रहा है दो तीन मेल इन्होंने किए थे, थोड़ा सा मिस नहीं, अस्सलाम वालेकुम और क्या लिखा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है गुड आफ्टरनून बस, अच्छा हॉटमेल में मुझे लग रहा है इन्होंने मेल कर दिया है। और हमारे पास मेल आ चुका है रोशनी रावत जी का, रोशनी रावत ने लिखा है, नमस्ते शिखा मैम जी, आप कैसी हैं, 12 बजे से जुड़े हुए हैं आपके साथ प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा नाम रोशनी रावत ग्राम व पोस्ट बमहना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हूँ। टॉपिक मैंने ज़्यादा बहाने नहीं बनाए लेकिन इन्होंने क्या बहाना बनाया वो भी हम लोग सुनते हैं अभी, इन्होंने बनाया है मैंने ज़्यादा बहाने नहीं बनाए लेकिन एक बार की बात है, मैं और मेरी कज़न स्कूल से पेट दर्द हो रहा था छुट्टी लेकर घर आए थे, बाद में बहुत हंसे याद करके। हाँ तो कभी कभी दोस्तों ये भी होता था कि हम बीच में ही स्कूल तो चले गए कैसे कैसे भी कैसे करके, लेकिन जो हम लोग स्कूल में भी जाके कभी कभी हम लोग का जो बहाना था वो भी बहुत ज़्यादा होता था कि भाई स्कूल में अब मन नहीं लग रहा है तो स्कूल घर जाना है, तो क्या बहाना बनाए, तो पेट दर्द का जो बहाना था वो एवरग्रीन बहाना है तो सभी ने अपनाया है। और हमारे पास मेल आया है सुधांशु एस जी ने हमें मेल किया है, राधे राधे, सुधांशु ग्राम भगवती पुर पोस्ट महोना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। मैं अपनी बात करूं तो मैं बहाने कुछ इस तरह से बनाता था, मैं कहता था मम्मी आज मेरा काम पड़ा नहीं है और आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अच्छा काम पूरा नहीं है, इट मीन्स कि काम पूरा नहीं है, कुछ शब्द थोड़ा मतलब आगे पीछे हो गए थे इनके, और आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा काम नहीं पूरा होने की वजह से, या भी एक लो विजन दृष्टि बाधित मुझे वहां पर जो काम दिया जाता था ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे सर लोग और मैं देख नहीं पाता था इसलिए कि मेरा काम नहीं हो पाता था। हमारे घर में किसी को पता ही नहीं था कि दिव्यांग कॉलेज चल रहे हैं, तब किसी ने घर में बताया, तब से अब तक मैं पढ़ाई करता आ रहा हूं और मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्विश्वास विद्यालय में ग्रेजुएशन में तृतीय वर्ष में हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, तो ये बहाने प्यारे प्यारे से बहाने हैं जो हम सबको गुदगुदा देते हैं, हमें हंसा देते हैं। और हमारे पास सुनील सूर्या जी ने मेल किया है, सुनील सूर्या आलमबाग लखनऊ से इन्होंने मेल किया है, मैम हमने स्कूल जाने में तो कोई बहाना नहीं बनाया है, एक से एक खतरनाक टीचर होते थे स्कूल में लेकिन हमने बहाना नहीं बनाया, जब उनका घंटे का टाइम आता था तो हम दोस्तों से कह देते थे कि बस्ता लेकर जाना और हम इमली खाने चले जाते थे, अच्छा बस ये अपने फ्रेंड से कहते थे कि मेरा बैग लेके चले जाना और हम इमली खाने चले जाते थे, जब छुट्टी होती थी तब बैग ले लेकर फिर रास्ते से टाइम से घर पहुंच जाते थे। हाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, उनसे भी लगता है कि मन, लेकिन भाई ऐसा अपने बच्चों के साथ ना होने दीजिए, उनको थोड़ा सा जो डर है उसको भगाइए और टीचर अगर ऐसा है तो बात करिए, और कभी कभी बच्चों का जो बहाना है उसको एक्सेप्ट भी कर लीजिए, क्योंकि ये जो बचपन है यार, बचपन है जो ना ये लौट कर बार बार नहीं आता। विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से आपको गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरिया की नमस्ते होटो पर मी तेरी बात प्रोग्राम में, मैं बहाना बनाता था मेरे पिताजी माताजी रुपए नहीं देते थे तो मैं स्कूल नहीं जाता था, कंचा खेलने भाग जाता था दोस्तों के साथ। हाँ ये कंचा खेलना भी बड़ा मज़े का खेल था और इसमें भी बहुत लोग बहुत बहाने बनाते थे। तो देखिए अब टाइम कह रहा है कि एक गाना भेज दें, हमने मेल्स तो बहुत ढेर सारे पढ़ लिए और अभी हमारे पास मेल्स की ना कतार लगी हुई है, तो हम धीरे धीरे वो मेल आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन एक प्यारा सा गाना मैंने क्यों करके रखा है तो उसको इंतज़ार नहीं करवाते हैं और आप तक ये प्यारा सा गाना भेजते हैं।

1:56 का वक्त और फोटो पे तेरी बात में हमने बहुत बेहतरीन से बहाने सुने कि कौन कौन से जितने भी हमारे लिसनर्स हैं प्रोग्राम सुनते हैं कितने तरीके के बहाने बनाए उन्होंने बचपन में। उत्तम कुमार भगत जी ने हमें मेल किया है, अच्छा इन्होंने हॉट मेल समझ कर अभी मेल कर दिए, तो प्रोग्राम अभी फोटो पे तेरी बात जा रहा है और अभी जो एक घंटा है अगला एक घंटा उसमें आप हमें मेल कर सकते हैं अपने गाने। तो गुड आफ्टरनून शिखा मैम, बहुत ही लाजवाब अंदाज में कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं। जावेद अख्तर जी ने हमें मेल किया है और स्कूल ना जाने का बहाना हम अपने पापा से बनाते थे कि आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से शमशूल कमर राही बेगम रुखसार। तो थैंक यू जावेद जी, आपने हमें मेल किया। दिलीप कुमार जी का मेल आया है और हमारे पास मेल आ चुका है जी। गुड आफ्टरनून मैम, मैं जब छोटा था तब मैं रेडियो सुनता था, इतने अच्छे प्रोग्राम FM रेनबो पर आते

थे, आज भी आते हैं, लेकिन उसे समय कभी कभी मैं गायब मार देता था प्रोग्राम के चक्कर में, क्योंकि दोपहर में कुछ स्पेशल प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा, स्कूल ना जाने का एक बहाना इन्होंने ये भी बताया है कि एफएम रेनबो सुनने के लिए स्कूल से छुट्टी ले लेते थे क्योंकि प्रोग्राम बहुत अच्छे आते थे, तो कभी कभी ये हम करते थे। तो बहुत अच्छे अच्छे बहाने हमने आज सुने, और अब ये समय कह रहा है कि अब ये बहाने सुनने का समय खत्म हो गया है। जी हाँ, होठों पर तेरी बात प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय हो गया है। 1:55 का वक्त, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि अगला प्रोग्राम रेनबो हॉटमेल भी आप एंजॉय करेंगे अपनी दोस्त शिखा के साथ। तो एक प्यारे से ट्रैक के साथ आपको छोड़ रही हूँ और मिलती हूँ अगले प्रोग्राम में, और आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

कहा है कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र नागरिकों तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। आवास से लेकर इलाज तक, बिटिया की पढ़ाई व विवाह से लेकर निराश्रितों व बुजुर्गों की पेंशन तक समाज के हर जरूरतमंद के लिए सरकार की अनेक योजनाएं हैं। सभी पात्र लोगों से आवेदन कराकर इन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा हर समस्या के प्रभावी निस्तारण के लिए संकल्पित है। गौतम बुद्ध नगर में आज मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के चतुर्थ संस्करण की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रस्तावित इवेंट के मास्टर प्लान एवं लेआउट का अवलोकन करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों को समयबद्ध एवं प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रदेश का एक प्रतिष्ठित और महत्वाकांक्षी आयोजन है, जिसे इस वर्ष और अधिक भव्यता एवं नवाचार के साथ आयोजित किया जाए। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार एवं इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा द्वारा संयुक्त रूप से 25 से 29 सितंबर 2026 के मध्य इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में किया जाने वाला है। राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी ने प्रयागराज में बताया है कि यूपी राज्य सूचना आयोग देश का पहला ऑनलाइन सूचना आयोग बन गया है, जिसमें कोई भी अपीलार्थी घर बैठे ऑनलाइन अपील कर सकता है और ऑनलाइन जुड़कर अपना पक्ष भी रख सकता है। अपीलार्थियों को अब राज्य सूचना आयोग लखनऊ आने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा विभाग के जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय सूचना अधिकारियों को जन सूचना अधिकार 2005 के तहत कैसे जन सूचनाएं लोगों को प्रदान करें, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते ने आजमगढ़ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका कथित तौर पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से संबंध है। एटीएस को मिली जानकारी के अनुसार आतंक फैलाने और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई आतंकवादी संगठन शहजाद भट्टी नामक एक पाकिस्तानी गैंगस्टर के साथ मिलकर काम कर रहे थे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
1: वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: की बहती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने।
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान।
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।

2:06 का वक्त और भाई प्रोग्राम शुरू हो चुका है रेनबो हॉट मेल, जिसमें आज आपकी अपनी दोस्त शिखा है आपके साथ। तो दोस्तों कहते हैं कुछ रिश्ते जिंदगी में ऐसे बन जाते हैं, कुछ रिश्ते जिंदगी में ऐसे बन जाते हैं जो हर पल दिल के करीब रह जाते हैं। आवाज तो नहीं देते वो कभी, बस एहसास से ही जिंदगी महका जाते हैं। तो जी हाँ, कुछ ऐसा ही रिश्ता निभाने फिर से आपकी दोस्त आ चुकी है आप सबके बीच कार्यक्रम रेनबो हॉट मेल लेकर। और ये प्रोग्राम होता है आपका ही, जिसमें आपको भेजने होते हैं अपने पसंद के गीत जो आप सुनना चाहते हैं, और साथ ही अपना डेडिकेशन कि वो गीत आप किसको सुनाना चाहते हैं। तो बस लिख भेजिए हमें अपने मेल्स, और मेल्स के मुझे लग रहा है कि मेरे मुंह से ही मेल्स निकला लिया, और मेरे पास यहाँ पे बहुत ढेर सारे मेल सामने मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि ये प्यार जो आपका हमें मिलने लगा है, तो थैंक यू सो मच। तो मेल आईडी आपको पता ही है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। तो हमारी मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। तो आप हमें भेजिए मेल्स, और इस गाने के बाद हम पढ़ेंगे आपके मेल्स कि आपने कौन कौन से गीत हमें भेजे हैं। और ये प्यारा सा ट्रैक जो आ रहा है आप में से ही किसी की पसंद का है, जिसको हम सब एंजॉय करेंगे। तो चलिए एंजॉय करते हैं प्यारा सा गीत, मेरे महबूब मेरे सनम।

2:11 का वक्त और प्यारा सा गीत आपने सुना, शुक्रिया मेहरबानी करम। और गाने में जो वर्डिंग्स थे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम, और वो शुक्रिया कहना चाहती हूँ आपसे कि वो इतना प्यार जो आप देते हैं हमें अपने मेल्स के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुधांशु जी ने हमें मेल किया है, राधे राधे सुधांशु, ग्राम भगवतीपुर पोस्ट महोना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से। कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, गाना सुनाइए। तो इन्होंने 2-3 गाने हमें भेज दिया है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि वो गीत आप तक पहुंचे। ताज मोहम्मद जी ने हमें मेल किया है, बहुत प्यारा सा जो मेल है वो इतना खूबसूरत सा मेल है, फ्लावर्स बने हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हैं और लीव्स बनी हैं और बहुत ही प्यारा। मुझे लगता है कि किसी को अपने, जब आप किसी को भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप इस तरीके का मेल लिख सकते हैं, इस तरीके से मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आदरणीय प्रसारक जी, नमस्कार। प्रसारक जी, आप हमारी फरमाइश किसी भी गीत के साथ शामिल कीजिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर अंसारी, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से इन्होंने हमें मेल किया है। और हमारे पास रामराज जी का मेल आ चुका है, श्री गणेश आय नमो, हाई हॉट मेल जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से। रामराज राजभानु, शंकर भैया पप्पू, पासी मनीष, नीरज मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे। फरमाइश इन्होंने करी है एक गाने की, तो हम आप तक पहुंचाएंगे वो गीत। और राधे श्याम जी ने हमें मेल किया है, मास्टर राधे श्याम, शाक्या कसकासगंज से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है अंदाज, और होठों पर तेरी बात प्रोग्राम में सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छे थे। और इन्होंने एक, हाँ हाँ बिल्कुल, कोशिश है हमारी कि हम आप तक वो गीत ज़रूर पहुंचाएं। पवन कुमार जी ने हमें मेल किया है, बोधराज जी ने हमें मेल किया है और एक गाने की फरमाइश करी है, तो वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी गीतिका कोरवाल, भानु प्रकाश और राजकुमार जी ने हमें मेल किया है, दूदी जी ने गाँव हिसार से, राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार दूदी और पुष्पेंद्र कुमार दूदी, कोई भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए। और हमारे पास मेल आया है बाबू अंसारी जी का, बाबू अंसारी गुड आफ्टरनून, शिखा मैम कैसी हैं आप, मुझे ये गाना सुनवा दीजिए प्लीज़। अच्छा जी बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि हम आप तक ये गीत ज़रूर पहुँचाएँ। और प्यारा सा गीत आप में से ही किसी की पसंद का आ रहा है आपके रेडियो सेट्स तक, तो चलिए हम और आप इंजॉय करते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी 2:30 का वक्त और प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हॉट मेल, जिसमें आपके प्यारे प्यारे मेल हम शामिल कर रहे हैं और आपके ही गाने आप तक पहुंचा रहे हैं। सतीश अनिजानी जी ने हमें मेल किया है, नमस्कार शिखा बहन जी को, प्रोग्राम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश करी है, तो कोशिश है आप तक पहुंच जाए वो। और उत्तम कुमार भगत जी ने हमें मेल किया है, शिखा जी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, एक गाना इन्होंने लिखा है पाखुड़ झारखंड, उत्तम कुमार कुमार भगत, श्वेता भगत की सु ताशु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोहड़ी बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। और हमारे पास मेल आया है, दिलीप कुमार जी ने मेल किया है और बहुत ही अच्छे गाने की फरमाइश करी है, मूलीचक भगलपुर बिहार से, दिलीप कुमार सोनी। हमारे पास नरेश जी ने मेल किया है, नमस्कार जी आपको मान्य योग्य आरजे जी, शिखा दीदी जी हमें भी शामिल करें जी, इंतजार कर रहे हैं, ये लीजिए आपका जो ये गीत वो है, आपका नाम है वो शामिल हो गया है, तो बहुत देर से इंतजार नहीं करना पड़ा आपको। और कोशिश रहती है कि सभी के मेल, सभी के गाने हम आप तक जरूर पहुंचाएं। और जय का मेल आया है, हमारा नंबर कब आएगा, ये लीजिए आपका नंबर आ गया, नमस्कार जी होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, जय राम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म लिखा है इन्होंने और वो फिल्म है और गाने तो मैं बताती ही नहीं।

क्योंकि वो जब गाने आप तक पहुंचते हैं तो आपकी जो खुशी होती है ना वो दुगनी हो जाती है. तो चलिए एंजॉय करते हैं आप में से ही किसी की फरमाइश का ये प्यारा सा गीत आप तक.

0: होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जी 2:35 का वक्त और अभी इतनी प्यारा सा गाना सुना। कौन सा प्यारा सा गाना था? वो गाना था क्या यही प्यार है? जी हाँ, बिल्कुल यही प्यार है जो आप हमें इतने प्यार से और इतने

एहसास से ये जो मेल करते हैं, इतने डेकोरेटिव, इतने प्यार भरे जो मेल करते हैं, तो यही तो प्यार है भाई। और संदीप मक्कर जी ने हमें मेल कर दिया है और एक गाने की फरमाइश करी है। नाम लिखा है ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर और भरत मक्कर, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गौरैया, जलंधर, पंजाब से इन्होंने हमें मेल किया है। और नरेश जी ने हमें मेल किया है, नमस्कार जी, आपको माने योग्य आरजी जी, गीत तो बज गया शिखा दीदी जी, प्लीज नाम पूरा पढ़ दें। तो भाई पूरा तो मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने आपका ये, आपको थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने दोबारा भी आपका मेल पढ़ दिया है शिखा।

गीत तो बज गया शिखा दीदी जी, प्लीज नाम पूरा पढ़ दें। तो भाई पूरा तो मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने आपका ये, आपको थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने दोबारा भी आपका मेल पढ़ दिया है शिखा। तो मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ ये आपसे कि एक ही मेल करिए, हम शामिल जरूर करेंगे, क्योंकि आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत अजीज हैं, और आपका ये जो मेल पढ़ना है ये हमारी जो कहते हैं ना मनोकामना है, कि इच्छा होती है कि हम आपकी एक एक मेल को बहुत शिद्दत से पढ़े। शिखा दीदी जी हमें भी शामिल करें, इंतजार कर रहे हैं कब से। और खैर बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का, शुक्रिया हमें शामिल करने के लिए। और हमारे पास मेल आया है दीपेश वर्मा जी का, इन्होंने हमें मेल किया है ग्राम पीपलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, और गाना इन्होंने एक लिखा है, कोशिश है हमारी कि हम आप तक पहुंचाएं। और हमारे पास मेल आ चुका है आकाश कुमार जी का, मैम को मेरा प्यार भरा गुड आफ्टरनून, नमस्ते, मैं आकाश वर्मा विलेज मुरारपुर रेलवे स्टेशन तैयबाद जिला बाराबंकी केयर का रहने वाला हूँ। प्रेजेंट में मैं इंदिरा नगर लखनऊ से मेल कर रहा हूँ। शिखा मैम आप कैसी हैं, मैं आपको पहली बार सुन रहा हूँ, कार्यक्रम लाजवाब है, प्लीज़ हमें मैम मेरा मेल अवश्य शामिल कीजिएगा, प्लीज़ मैम मुझे सॉन्ग सुना दीजिए। तो ये लीजिए आपका मेल तो हमने शामिल कर लिया, और कोशिश है कि आप आपका गाना हम आप तक ज़रूर पहुंचाएं। और कुमार अंशु शर्मा, राम रमा शंकर एवीएन, सभी सुनने वाले दोस्तों को सुनाना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मैम थैंक यू। तो थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, आपका ही प्रोग्राम है और आपके ही गीत बजते हैं, सारे जितने भी गीत आप तक पहुंचते हैं। और हमारे पास मेल आया है आफ्ताब अंसारी जी का, शिखा बहन जी को प्यार भरा नमस्कार, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, सबको खुशियां बांटती रहिए। तो गाना भी हम आप तक पहुंचाएंगे, शेरवानी स्कूल गुंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। और हमारे पास एम के राज जी का भी मेल आ गया है, मुनेश कुमार राज, गांव भानपुर हरौवा जिला लखीमपुर खीरी से इन्होंने मेल किया है। आरजे जी को शुभ दोपहरिया, पूरी एफएम टीम को नमस्कार। तो थैंक यू सो मच सबकी तरफ से आपको, दो लाइन हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल, अरे वाह क्या बात लिख दी आपने। खाना और गाना हर किसी को अच्छा लगता है, अगर खाना गलत हो तो स्वास्थ्य खराब करता है, अगर गाना गलत हो तो समाज खराब करता है। और इन्होंने कई एक लिस्ट लिख दी है, तो हमारी कोशिश है कि हम आप तक ज़रूर पहुंचाएं सारे, क्योंकि गीत आप तक आपके ही आ रहे हैं। और मोहसिन हाशमी जी ने हमें प्यार भरा आदाब, आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें। और स्वर्ण सिंह जी ने हमें मेल किया, नमस्कार जी, गांव लोगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, कोई भी गीत सुना दीजिए, हमारा नाम जरूर से शामिल करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत ही प्यारा सा गीत आ रहा है आप तक, तो चलिए एंजॉय करते हैं।

जी 2:47 का वक्त और आपके प्यारे प्यारे मेल्स हम पढ़ रहे हैं और प्यारे प्यारे गाने ही आप तक पहुंचा रहे हैं। अहमद बागवान जी ने हमें मेल किया है, शिखा बहन जी को सादर नमस्कार, और हमें आज आप नज़रअंदाज कर रही हैं, मेरे मेल अभी तक शामिल नहीं किए, प्लीज़ अपनी पसंद के कोई भी गीत में शामिल कर लीजिए। और पसंदकर्ता बागवान मंजिल छोटी वलिया से नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान और आमना आसमा, राबिया परी, आशु जूही, सदफ बागवान और छतरी टोल तेघड़ा बाजार बेगूसराय से अदीबा अफसरी, इस्माइल आज़ाद, नन्ही राजा, फैज, फिरोज आलम, भाईशा आलम, वली आलम जी, जी आप सभी का नाम हमने शामिल कर दिया और आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया था। डीके जी ने हमें मेल किया है न्यू दिल्ली से, कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु, एक इन्होंने फरमाइश करी है बहुत ही प्यारे से ट्रैक की, कोशिश है कि आप तक पहुंचाएं हम। और मसरूर हसन जी ने हमें मेल किया है, आपको प्रेम पूर्वक आदाब, गांव कुम्हार हेड़ा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम किसी भी गीत में। तो और हमारे पास मेल आया अरविंद कुमार जी ने हमें मेल किया है, आदरणीय कार्यक्रम प्रसारक जी नमस्कार, बेनीपट्टी जिला मधुबनी बिहार से इन्होंने मेल किया है और बहुत ही प्यारे से गीत की फरमाइश करी है, अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमार। और हमारे पास मेल आया है रामराज जी ने हमें मेल किया है, हॉटमेल जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु शंकर और रामराज जी, हम आपका मेल पढ़ चुके हैं और एक ही मेल आप बार बार करते हैं, तो एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि आप हमारे अपने हैं, बहुत प्यारे हैं, एक मेल भेजिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस मेल को ज़रूर से शामिल करें। जय श्री कृष्णा, बिट्टू गगनेजा जी ने हमें मेल किया है जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। और हमारे पास मेल आया है साई गायकवाड़ जी का, कार्यक्रम हॉट मेल सादर करने वाली चिका दीदी को हमारा प्यार भरा नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून जी, कैसी हो दीदी जी, बहुत अच्छे हैं और हमारी आशा है कि आप भी अच्छे होंगे, और गाना हमने कोशिश है कि आप तक पहुंचा दिया है और अगर नहीं पहुंचाया है तो पहुंच जाएगा। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नंदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़। महेंद्र जी, दीपन जी ने हमें मेल किया है, नमस्कार शिखा मैम जी, खम्बागढ़ी, कैसे हो आप, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। महेंद्र दीपन गांव रूड़ जिला नागौर राजस्थान से, और कोशिश है कि आपका गीत आप तक जरूर पहुंचाएं। सुनील पाठक जी ने हमें मेल किया है, आदरणीय होस्ट मैडम जी हार्दिक नमन अभिनंदन जी, अनारकली बाजार जगराव से इन्होंने मेल किया है, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। और अब एक गीत आप तक आ रहा है, आप में से किसी की फरमाइश का गीत आप तक आ रहा है, तो चलिए हम सब इंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

2:54 का वक्त, और भाई वक्त देखिए कह रहा है कि हम आप सबके जल्दी जल्दी से नाम ले लें, क्योंकि किसी का भी मेल इसका स्किप हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और हमारे लिसनर्स सोचेंगे कि भाई हमें नजरअंदाज किया गया है। तो आपको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया गया, और हमारी पूरी कोशिश है कि आपके ही गाने हमने एक एक करके प्ले करें। और एक प्यारी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि किसी के गीत अगर उन तक नहीं पहुंचे तो उसके लिए बिल्कुल मैं तहे दिल से क्षमा मांगना चाहती हूं। और तो मैं नाम ले लूं आप लोगों के, तुलसी मस्किन जी ने हमें मेल किया है, सुशांत प्रिया झा ने हमें मेल किया है, तेज बहादुर यादव जी ने मेल किया है, बेनित कुमार जी ने मेल किया है, शहरूर नूर अंसारी, ताज मोहम्मद, मूसा शेख जी ने मेल किया है, स्वरण सिंह जी ने, हिंदुस्तानी ब्रह्मेश जी ने हमें मेल किया है, राधे कुमार विद्यार्थी जी ने हमें मेल किया है, सुभाष गोडारा जी ने हमें मेल किया है, और रोजी डिकेस्ट्रो जी ने हमें मेल किया है, डीके जी ने मेल किया है, अहमद भगवान जी ने मेल किया है, अहमद भगवान, अरविंद कुमार, मसरूर हसन, रामराज, विट्टू गगनीजा, सुनील पाठक, साई गायकवाड़, महेंद्र दीपन जी, सहरूर नूर अंसारी, नवी हसन।

हीरामणि वर्मा, राजेंद्र कुमार जी, रोजी डिकेस्ट्रो, अब्दुल गुफार और आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आपने इतना प्यार भरे मेल हमें लिखे और साथ ही अपनी पसंद के गीत हमें लिखे और डेडिकेशन लिखी, तो थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए। और अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भाई समय कह रहा है कि शिखा टाटा बाय बाय कहना होगा प्रोग्राम रेनबो हॉटमेल को और वाइंड अप करना होगा इसे अभी यहीं पर, और आपको रहना होगा हमारे साथ क्योंकि अगला प्रोग्राम, जी हाँ, सतरंगी दुनिया भी आप इंजॉय करेंगे अपनी दोस्त शिखा के साथ। तो एक प्यारे से गाने के साथ आपको इस प्रोग्राम में छोड़े जा रही हूँ, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहाना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। कॉलेजियम की 22 और 27 मई को हुई बैठकों में की गई सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहाना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्य

बता दें आज कुशीनगर के तंग कुहिराज में आयोजित कार्यक्रम में 424 करोड़ की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब फाजिल नगर को पावागढ़ के नाम से जाना जाएगा क्योंकि यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी की धरती है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर से शीघ्र उड़ान शुरू होगी। इसी सत्र से कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इससे पहले उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र सौंपा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के नव नियुक्त निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने आज अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण को और सुदृढ़ बनाने छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए सभी अधिकारियों कर्मचारियों को टीम भावना के साथ कार्य करना होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत युवा संगम चरण 6 के तहत आज जनभवन में अरुणाचल प्रदेश से आए प्रतिनिधिमंडल के साथ एक विशेष संवाद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि युवा भारत की विविधता के सजीव दूत हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर कोस पर भाषा बदलती है और हर क्षेत्र में परंपराएं अपना स्वरूप बदलती हैं, किंतु हमारी विविधता में कोई विभाजन नहीं है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित होगा।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

आजकल चार मिनट का वक्त और कार्यक्रम सतरंगी दुनिया लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त शिखा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर दिन कुछ नया और खास लाते हैं हम आपके लिए, तो आज भी बातें होंगी बहुत ही दिलचस्प। पर उससे पहले एक प्यारे से ट्रैक से करते हैं शुरू प्रोग्राम का ये सफर।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: गीत के साथ हम आगाज कर चुके हैं प्रोग्राम सतरंगी दुनिया का, जिसमें भी बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक आपने सुना, कुछ खास है, कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास है।

तो अब ट्रैक के बाद हम बातें क्या करने वाले हैं सतरंग की दुनिया में, ये आपको बताऊंगी. तो दोस्तों हम बता दें कि हमारे जीवन में जो रिश्ते होते हैं ना, हमें पूर्ण करते हैं. आपको लगता है ऐसा? उन रिश्तों के बिना हमारा जीवन बेरंग सा लगता है, लेकिन उन रिश्तों को बनाए रखने के लिए, या यूं कहें कि उन रिश्तों की मिठास को बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं या हमें क्या करना चाहिए, तो ये जानेंगे आज कि हम वो जो प्यारे प्यारे से रिश्ते हैं उनको हमेशा एज इट इज मीठा रखने के लिए, एज इट इज बनाए रखने के लिए क्या करें, वो हम जानेंगे आज सतरंगी दुनिया में. लेकिन एक प्यारा सा गाना लगा के रखा है आप लोगों के लिए, तो वो आ रहा है आप तक. तो चलिए पहले उसको एंजॉय करते हैं, फिर बात करेंगे कि कैसे हम अपने जो रिश्ते हैं, प्यारे प्यारे से रिश्ते हैं जिनसे हमारा जीवन है वो परफेक्ट बनता है, उनको हम कैसे वैसा ही बनाए रखते हैं, रख सकते हैं जैसे उनकी मिठास है.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
2: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

तो कहते हैं कि कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से सफल होता है। तो आज ये कार्यक्रम सतरंगी दुनिया में बातें करेंगे उन्हीं छोटे छोटे प्रयासों की जो रिश्तों को दिल की गहराइयों में उतारने का काम करते हैं। और रिश्तों की मिठास को रखते हैं बरकरार। और इन छोटे छोटे प्रयासों को मॉडर्न लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो आपको बता दूं, इन्हें कहते हैं माइक्रोमैन्स। जी हाँ, वही माइक्रोमैन्स जो छोटे छोटे प्रयास हम अपने अपनों के लिए करते हैं उनको कहते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में माइक्रोमैन्स। तो बातें तो अभी और भी करेंगे माइक्रोमैन्स के बारे में, पर उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक ले लें। एक प्यारा सा ट्रैक है, बहुत ही प्यारा सा, और मुझे तो बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनको भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए प्यारा सा ट्रैक एंजॉय करते हैं आपके रेडियो सेट्स पर।

3:27 का वक्त और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सतरंगी दुनिया, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं माइक्रोमैंस की, यानी रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किए गए छोटे छोटे और भावनात्मक प्रयास। ये कोई बहुत बड़े काम नहीं होते, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको अगर हम बताएं, तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है जब आपके हस्बैंड ऑफिस से आए और आप उनके लिए कुछ बिना कहे उनके पानी ले आए या उनके लिए चाय बना के ले आए। तो ये क्या हुआ, ये आपके छोटे छोटे वही प्रयास हुए। और जब आप थकी हो और आपके कुछ भी ना कहे हुए आपके हस्बैंड कहें आपसे कि आज बच्चों को तो मैं सुलाऊंगा, तो ये छोटे छोटे प्रयास जो होते हैं ना, ये आपके दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ देते हैं। ये छोटे छोटे इशारे और प्रयास रिश्तों में प्यार, समझ और अपनापन बनाए रखने में मदद करते हैं। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यही कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे प्रयास हैं जिनसे हमारी जिंदगी खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत बनती जाती है।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

जी 3:34 का वक्त और आज सतरंगी दुनिया में हम बात कर रहे हैं माइक्रोमैन्स की। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने रिश्तों के प्रति बहुत केयरफुल होते हैं, या यूं कहें कि वो अपने छोटे छोटे प्रयासों जैसे आपकी पसंद का ध्यान रखना, आपके लिए बिन कहे चाय बना देना, ऑफिस से लौटते समय आपकी पसंद की चीज ले आना, या बिन कहे आपके सिर की मालिश कर देना, और कभी कभी ये भी होता है कि कभी आपके जो दोस्त होते हैं वो आपकी बिना कही हुई बात को समझ लेते हैं, जैसे आपको भूख लगी है और वो आपके लिए कुछ लेकर चले आए। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं इन्हीं को बोलते हैं माइक्रोमैन्स। तो ये जो माइक्रोमैन्स होते हैं ना, ये आपके रिश्तों को संवारते हैं, निखारते हैं, और यही छोटे छोटे प्रयास भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करते हैं, जिससे संबंध मजबूत और मधुर बनते हैं। तो अगर आप इन छोटे छोटे प्रयासों को अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो यकीन मानिए कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा।

जी 3:40 का वक्त और आज सतरंगी दुनिया में हम बात कर रहे हैं माइक्रोमैंस की, जो सिर्फ छोटे छोटे प्रयास ही नहीं बल्कि भावनात्मक सेतु होते हैं। जब आप इन छोटे छोटे पलों को महसूस करते हैं या फिर किसी और को महसूस कराते हैं, तो आपके ब्रेन में डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोनिन जैसे हार्मोन सक्रिय होते हैं। जो खुशी और मेंटल स्टेबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। जी हाँ, और ये बात तो मुझे लगता है हम सबको ही नहीं पता थी कि ऐसी भी चीजें होती हैं। तो आप जब माइक्रोमैंस को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं ना, तो आप तो दूसरों को खुश करते ही करते हैं, साथ में आप भी उतना ही खुश होते हैं। और ये सच बताऊं, ये वही खुशी है जो हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये छुपी कहाँ रहती है? ये छुपी रहती है हमारे प्रयासों में। तो अगर किसी रिश्ते में कुछ लग रहा है कि मनमुटाव हो गया है या दूरी आ रही है, तो आप इन छोटे छोटे प्रयासों को आप

ना के देखिए, इन छोटे छोटे माइक्रोमेंट्स को अपना के देखिए और सच कहती हूँ कि ये आपकी जो लाइफ है ना, ये बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। तो आपको करना क्या है? करना ये है कि इन छोटे छोटे प्रयासों को अपनी लाइफ में लेकर आना है, और लेकर जब आप अपनी ये लाइफ में ले आएंगे ना, तो आपकी लाइफ की जो खूबसूरती है वो दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ जाएगी। तो अभी बातें तो और भी करूंगी आपसे, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आपके लिए लगा के रखा है, तो चलिए भेजते हैं आप तक, इंजॉय करिए।

ये दोस्तों 3:45 का वक्त और आप सुन रहे हैं सतरंगी दुनिया अपनी दोस्त शिखा के साथ। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी 3:50 का वक्त और आज सतरंगी दुनिया में हम बातें कर रहे हैं माइक्रोमेंस की, और वही माइक्रोमेंस जो छोटे छोटे प्रयास हम एक दूसरे के लिए करते हैं। दोस्तों ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये एक पेड़ की तरह होते हैं जिन्हें पानी खाद ना मिलने पर ये मुरझाने लगते हैं। तो बस ये माइक्रोमेंस वही पानी और खाद की ही तरह होते हैं जिनका उपयोग रिश्तों की ग्रोथ के लिए किया जाता है। दोस्तों रिश्तों में दरार आने का अक्सर यही रीजन होता है कि हम छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर देते हैं, जैसे ध्यान ना देना, भूल जाना या अनदेखी करना। तो बस आज से यही कोशिश करनी

0: Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTEC cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samrit Bharat. Join Indian Navy.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

तो 3:56 और ये कह रहे हैं, समय ये कह रहा है कि भाई त्रिखा वाइंड अप करना होगा प्रोग्राम सतरंगी दुनिया को यहीं पर, और इस प्यारे से ट्रैक के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ और इसी वादे के साथ फिर मिलती हूँ किसी दिन और। टिल देन टाटा बाय बाय। बस आपको जुड़े रहना है हमारे साथ और सुनते रहना है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ से अधिक की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने कुशीनगर में इंसेफेलाइटिस और माफिया दोनों पर प्रभावी प्रहार करते हुए विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं बल्कि बुलेट स्पीड से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम के पुत्र कुश, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की तपोभूमि कुशीनगर आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दो दिवसीय दौरे पर आगरा आए हुए हैं। आज उन्होंने प्रसिद्ध कैलाश मंदिर विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना की। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनाव में अपना वोट जरूर डालें। उन्होंने कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। गौतम बुद्ध नगर में आज मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के चतुर्थ संस्करण की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रस्तावित इवेंट मास्टर प्लान एवं लेआउट का अवलोकन करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों को समयबद्ध एवं प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि यूपी इंटरनेशनल

ट्रेड शो प्रदेश का एक प्रतिष्ठित और महत्वाकांक्षी आयोजन है, जिसे इस वर्ष और अधिक भव्यता एवं नवाचार के साथ आयोजित किया जाए। पीलीभीत में आज भाजपा विधायक बाबूराम पासवान ने पूरनपुर खटमा रोड और माधो टांडा कालीनगर रोड पर पड़ने वाले हरदोई ब्रांच नहर के दो जर्जर पुलों का शिलान्यास किया। विधायक श्री पासवान ने कहा कि इन दोनों पुलों और उनकी अप्रोच बनाने के लिए 52 करोड़ से अधिक की धनराशि शासन से स्वीकृत हुई है। इन पुलों के बन जाने से स्थानीय लोगों को लाभ होगा और पर्यटन में इजाफा होगा। ICR भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत ग्राम काजीचक और आराजी लाइन में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में टीम लीडर डॉक्टर राजेश कुमार ने अभियान के उद्देश्यों एवं मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखना कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब अली।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
4: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
2: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: जी हाँ, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करूंगा आपके अपने 100.7 FM रेनबो चैनल पर, जिस पे शुरू हो गया है यूथ वेव।

जी हाँ, तो जियोग्राफिया अगर बदल गया हो तो जरा सा हमारे बातों पर भी ध्यान दे लीजिए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है यूथ वेव, और आज है मंगलवार और मंगलवार को होती है प्रतियोगी परीक्षा पर आधारित कार्यक्रम। तो आज ढेर सारी, जैसा कि हमने बताया कि ढेर सारे सवाल जो है आपसे पूछने के लिए हम ले आए हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उसको बिल्कुल एकदम पॉइंट आउट

करके मैंने आप सभी के लिए लिखा आया है। दोस्तों अगर हम बात करें प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में और प्रतियोगी परीक्षा जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं तैयारी कर रहे हो उनके लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज होती है। मतलब कि आप कितने घंटे सोते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटे आप घर का टाइम जो आपके घर के काम है वो आपके निजी काम है वो कितना करते हैं, प्लस योग मेडिटेशन या अगर आप जिम जाते हैं तो वो सारी चीजों के लिए आप कितना कितना टाइम अपने लिए निकाल रखे हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके लिए पूरा शेड्यूल चार्ट रेडी होना चाहिए, वो भी लिखित में, और वो लिखित चार्ट वहां वहां होना चाहिए। जैसे कि आप जहां ब्रश करते हैं सुबह उठ के वहां चिपका के रखिए, अगर आप बेड पे सोने जाते हैं तो बेड के उस कोने पे जरूर चिपकाइए जो आप लेटे लेटे उस चार्ट को देख सकते हो, और एक खास बात वहां जहां आप अपने कपड़े रखते हैं वहां पे भी वो चार्ट जरूरी है, और जिस कमरे में रहते हैं या जिस भी आप जहां भी रहते हैं वहां के मेन दरवाजे पे भी जहां आप जाते हैं वहां देख सकते हो वहां भी जरूरी है, ताकि वो लिस्ट आप देखकर हर रोज अपने आप को ये याद दिला सके कि कौन सा टाइम कितने टाइम किस चीज के लिए मैंने बांध रखा है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है छात्रों के लिए कि टाइम मैनेजमेंट करना, कि अब पता चले कि हम पूरा दिन आज पढ़ते रह गए और नींद पूरी हुई नहीं, तो ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कत होती है, और अगर आप सारी चीजें कर लिए और घर का काम छोड़ गया तो ये भी प्रॉब्लम है, और अगर मान लीजिए आप पढ़ाई टाइम पे कर लिए, सो टाइम पे लिए और घर का काम भी कर लिए तो फिर आपकी हेल्थ का क्या, योग मेडिटेशन का क्या। तो इन सब चीजों का प्रतियोगी परीक्षाओं के जो बच्चे हैं जो छात्र हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक प्रॉपर लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को प्रॉपर जगह जहां आपको वो देख सकते हैं, जहां आप सुविधा अनुसार देख सकते हैं वहां जरूर चिपकाएं, और उस लिस्ट को सिर्फ देखने के लिए नहीं उस लिस्ट पे काम भी करना है। ऐसे ही कुछ ढेर सारी बातें आपसे करने के लिए बिल्कुल हूं तैयार। मेरा नाम शिवम है और अगला गाना बेहतरीन गाना है, आप सुनिए जरूर। और हाँ, कुछ प्रश्न भी है जिसे आप ईमेल के द्वारा उसके उत्तर हम तक पहुंचाएंगे।

जी हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रौद्योगिकी छात्र जो है उनके लिए पूरे दिन की दिनचर्या कितनी इम्पोर्टेंट होती है, इसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। तो अगर दिनचर्या निकालना है आपको कि पूरे दिन आप ऐसा क्या करते हैं, किस तरीके का काम करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, उसके लिए हम आपको छोटी सी एक टिप्स यही है कि पहले तो आप एक या दो दिन अपने आप को ऑब्जर्व करें कि आप कितने बजे जगते हैं। जगने के बाद आपका पूरा दिन का शेड्यूल क्या होता है, मतलब कि आप ब्रश कितने बजे करते हैं, फ्रेश कब होते हैं, नहाते कब हैं, खाना कब खाते हैं, पढ़ाई करने कब जाते हैं, घर का काम किस कितने घंटे, मतलब कि आप जो घर के इंपॉर्टेंट काम होते हैं जैसे घर के साफ सफाई से लेके घर का सामान ले आना या कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट हो, वो टाइम कब ज़्यादा होता है उस टाइम का रेशियो निकाल लीजिए। खेलने कब जाना है आपको, ये टाइम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद शाम का पढ़ाई, खाना और फिर रात का सोना, इन सब चीज़ों को आप एक डायरी में हो सके तो लिखिए। जी हाँ, डायरी में लिखिए या कागज़ पर लिखिए, किसी भी डिवाइस पर नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप छात्र हैं तो किसी डिवाइस का सहारा लेना कहीं ना कहीं ये ईमानदारी नहीं है आपके प्रति। क्योंकि अगर बहुत से लोग होते हैं कि भाई कोई भी अगर क्वेश्चन खोया या कोई भी किसी भी तरीके की लिस्ट बनानी है तो हम उसे ऑनलाइन या किसी डिवाइस या किसी गैजेट पे हम उसे सेव कर लिए, लेकिन वो पेपर और पेन पे जो लिखना होता है छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोशिश करिए कि उस पर आप निर्भर ज्यादा ना हो, कागज पे ही लिखिए और उस लिस्ट को 4-5 बार लिस्ट बना के, जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने सुटेबल जगह जहां आप उसे प्रॉपर दिखता हो वहां जरूर जरूर चस्पा करिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह हो जाती है आपके लिए कि जब आप पढ़ाई के दौरान कोशिश करिए कि सोशल मीडिया, मोबाइल फोन या किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा डिवाइस बहुत कम इस्तेमाल करिए, और अगर कर भी रहे हैं तो वो भी अपने जानकारी के लिए या अपने सब्जेक्ट या अपने सिलेबस से जुड़ा हुआ हो तभी इस्तेमाल करें।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल।
1: संख्या एक चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सड़क कार्य, एक पद प्रोजेक्ट मैनेजर इमारत, दो पद और प्रोजेक्ट मैनेजर पर्यावरण एक पद। विस्तृत विज्ञापन, निर्धारित आवेदन प्रारूप और संपूर्ण नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देखिए दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास लिमिटेड की वेबसाइट www.dsiidc.org। भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। तकनीशियन ग्रेड वन सिग्नल, रिक्तियों की संख्या है 323। तकनीशियन ग्रेड थ्री, रिक्तियों की संख्या है 6242। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रेलवे भर्ती बोर्डों की वेबसाइट। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र पंजाब, परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय टाटा मेमोरियल केंद्र इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। चिकित्सा अधिकारी न्यूक्लियर मेडिसिन एक पद, चिकित्सा अधिकारी रेडियो डायग्नोसिस एक पद, चिकित्सा फिजिसिस्ट एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए, जबकि एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक अधिकारी SB ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक C न्यूक्लियर मेडिसिन एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B फिजियोथेरेपी एक पद अनारक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। तकनीशियन C नेटवर्किंग एक पद EWS वर्ग के लिए आरक्षित है। तकनीशियन C ऑपरेशन थिएटर एक पद अनारक्षित है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 11 जून 2026। विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट tmc.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: सात रंग का इंद्रधनुष है,
4: सात सुरों की सरगम है,
5: सात जन्म है सात समंदर,
3: साथ हमारा हरदम है।
5: जिंदगी के सतरंगी रंग
4: FM रेनबो के संग।

तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके 100.7 एफएम रेनबो चैनल पर, जहां मैं हूं शिवम और आज प्रोग्राम हो रहा है यूथ वेव। यूथ वेव मंगलवार को वैसे होता है प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित छात्रों के लिए, और हां आज हम बात करने वाले हैं छात्रों के जीवन के बारे में कि वो प्रतियोगी परीक्षा को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, वो किस तरीके से क्या पढ़ाई करें, कैसे प्रश्न आएंगे किन परीक्षाओं में, उसकी पूरी जानकारी आपको देने के लिए बिल्कुल है तैयार। और हां आपको बताते चले कि हमारे हर प्रोग्राम में सबके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होता है, इसलिए हमेशा सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो। और आपसे एक स्पेशल अपील ये भी है कि आप हमारे हर सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें, लाइक भी करते रहे, और हां उस पे आने वाले प्रोग्राम की जानकारी भी मिलती है। तो कोशिश करिए कि हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं वो सोशल मीडिया पे पहले

तो दोस्तों अब बारी है आपसे सीधे सीधे सवाल पूछने की। तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोगों का ईमेल भी आया है, मोनू भैया ने हमें ईमेल किया है कि वैसे तो आपको आज हिचकी जरूर आई होगी कि कई दिनों से हम आपको याद कर रहे थे। जी हाँ बिल्कुल, मुझे याद आ रहा था कि भाई हिचकी तो जरूर आ रही थी, क्योंकि हमने आज जो है पानी की बोतल जो है बड़ी वाली लेके आई हो, हमने आधा खत्म कर लिया है। लिखते हैं सोनू भैया कि शिवम भैया जी नमस्ते, गांव में भंडारा चल रहा है और हम भी भंडारे का प्रसाद खा रहे हैं, बड़े मंगल का। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नाही हो तात तुम पाही। अर्थ है, हे प्रभु, संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो आपसे ना हो सके। आपकी कृपा से सभी कार्य संभव है। मोनू सेठ ने हमें बहुत ही बेहतरीन सी लाइन प्रेषित की है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए। और अब आप हमें ईमेल करिए fmakashwani@gmail.com पर। तो पहला सवाल, आप अगर कागज पेन लेके बैठे हुए हैं तो नोट करिए हमारा पहला सवाल। जी हाँ, पहला सवाल है कि इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है। पहला सवाल है प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित कि इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है। और दूसरा सवाल यह है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। दूसरा सवाल एक बार फिर से, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन एक है हॉकी, ऑप्शन दो है फुटबॉल, ऑप्शन तीन है क्रिकेट और ऑप्शन चार है वॉलीबॉल।

इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप हमें fmakashwanilakhnau@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। और हाँ, हम उम्मीद करेंगे कि बड़े ही ईमानदारी के साथ ये उत्तर आप ढूंढ के अपनी सूझबूझ से भेजेंगे, ना ही कोई डिवाइस, ना ही किसी की मदद के बगैर।

जी हाँ, 4:41 हो गए हैं और ये चंद भागते हुए सेकंड। और सबसे पहला जो सवाल मैंने पूछा था वो ये था कि इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है, और दूसरा सवाल ये था कि पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। तो वैसे तो 2-3 लोगों का ही ईमेल आया है, मुझे लग रहा है सच में बहुत से ईमानदारी के लोग जो है ईमानदारी से ही लोग ईमेल कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का ईमेल अब आना शुरू हुआ है। फिलहाल हम इसका आंसर भी जरूर बताएंगे, क्योंकि अभी मोनू भैया का आ गया है मेल, मंजय वर्मा का आया है, ओम प्रकाश सैनी जी का आया है बाजपुर उत्तराखंड से, और इन सभी लोगों ने अपने अपने ईमेल में आंसर्स हम तक पहुंचाए हैं। तो ये आंसर हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम सवाल आपको दोहरा दें कि इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है, और दूसरा सवाल मैंने ये पूछा था कि पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। तो ये अगला सवाल जो मैंने पूछा है, इसके आंसर इस गाने के बाद हम दे रहे हैं।

और उसके बाद दो क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा, मैं उसका भी आंसर चाहूंगा कि आप बड़े ही सादगी से और बिना किसी के हेल्प से दें।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

जी हाँ दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों ने जैसे कि मैंने बताया कि भाई ईमेल आ गया है, तो हम जल्दी से ईमेल पढ़ दें कि हमारे जो मोनू भैया हैं, इन्होंने ईमेल लिखा है। पहले सवाल का जवाब इन्होंने दिया है हरा रंग, मतलब पहला सवाल जो था वो इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है, उसके आंसर दिए हैं इन्होंने हरा रंग, जो बिल्कुल सही है। और इसके बारे में बता दें कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जिसका क्रम होता है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अंग्रेजी में इन्हें VIBGYOR यानी कि वॉयलेट इंडिगो के नाम से भी जानते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म में है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। और दूसरा सवाल जो मैंने पूछा था ये कि पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, तो उसका आंसर है हॉकी। और मंजय वर्मा ने हमें ईमेल किया है, नमस्कार सर, लखनऊ चौक कोतवाली से नवनीत सिंह हूं, और आप कैसे? मैं अच्छा हूं। पहले का सवाल का जवाब इन्होंने पर्पल दे दिया है और दूसरे का सवाल जो आंसर था वो फुटबॉल दिया है, लेकिन इन्होंने ईमेल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम प्रकाश सैनी जी ने हमें भी सही जवाब भेजा है, पहला जो सवाल था उसका इन्होंने आंसर दिया है हरा, और दूसरे का जो सवाल का जो आंसर दिया है वो है हॉकी। मंजय वर्मा ने दोबारा हमें ईमेल किया है और आपको बता दें कि आपका ईमेल पढ़ लिया गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और राजेश कुमार जी ने लिखा है कि भैया हम अभी अभी ऑन किए हैं, सवाल नहीं सुन पाए हैं, और हमारे बड़े भैया को प्रणाम, तो हम आपको भी बड़े प्रणाम कर रहे हैं। और अब सवाल दूसरा, दूसरा सवाल यह है कि राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। सवाल एक बार फिर से, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए आगरा, ऑप्शन है बी लखनऊ, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कानपुर। तो इस सवाल का जवाब भी हमें फटाक से एफ एम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर लिख भेजिए, तब तक हम आपको ये बेहतरीन सा गाना सुनवा ही देते हैं।

तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे सवालों के जवाब अगर जल्दी जल्दी आने लगते हैं तो अच्छा भी लगता है और लोगों को लगता है कि हाँ लोग कनेक्ट हैं और वाकई में लोग कनेक्ट हैं। और जैसा कि मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भाई राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है, तो जैसा कि हमने सवाल पूछा और ये लीजिए तुरंत मैसेज आ गया नवनीत सिंह जी का। लिखते हैं, हेलो सर नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, नवनीत सिंह चौक कोतवाली लखनऊ से हूँ और ये CMS में पढ़ते हैं और कक्षा 6 के छात्र भी हैं। और आगे लिखते हैं इसका आंसर लखनऊ होगा। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। सावित्री देवी जी ने भी ईमेल कर दिया है, लिखते हैं सर जी आंसर है लखनऊ। जी हाँ, और मोनू भैया ने हमें बोला है कि भैया क्वेश्चन एक बार फिर से दोहरा दीजिए। तो लीजिए, जितने लोगों ने हमें सही आंसर दिया है या जितने लोगों ने हमें ईमेल किया है उन सबके लिए एक चीज तो करनी बनती ही है, वो है ये। तो भाई साहब आप लोगों ने हमें आंसर दिया, जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हो गया है 4:55, तो अब आपसे लेना होगा यहीं विदा, फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। लेकिन अभी जाइएगा मत, क्योंकि अगला प्रोग्राम जो है FM टॉप 10 लेके आने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन गाने लेके आए हैं और बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट है जिसमें आपको 90s की यादें बिल्कुल ताज़ा हो जाएंगी, 90s के बाद की भी यादें ताज़ा होंगी, बेहतरीन सा प्रोग्राम। और हाँ, ये सवाल ज़रूर लेते जाइए जाते जाते, क्योंकि मैंने एक सवाल बचा के रखा था, IPL किस खेल से संबंधित है और इसका पूरा नाम हमें ईमेल जरूर करिएगा। fmakashwanilakhnow@gmail.com पर कर रहे हैं आपके ईमेल का इंतजार। फिलहाल हम आपसे करते हैं टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।

नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है, यह लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। उन्होंने कहा कि सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं ने जनजातीय समुदाय के उच्च शिक्षा और नए अवसर प्रदान करके उनके जीवन को बदल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में गीडा के सेक्टर 13 में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने प्रदेश के दूसरे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर गीडा के विभिन्न सेक्टर्स के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गीडा में सेवायोजित कामगारों के लिए EWASLIG आवासीय परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आगरा के बिहरारू को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। हमीरपुर में न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक सुगम, त्वरित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत कलेक्टर परिसर स्थित कलेक्ट्रेट भवन के प्रथम तल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। इस सुविधा के माध्यम से जनपद में निवासरत अथवा कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य साक्षीगण विभिन्न जनपदों की न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने साक्ष्य एवं गवाही दर्ज करा सकेंगे। इससे न्यायालयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता में कमी आएगी और समय संसाधनों की बचत होगी। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झांसी की ग्रीन फील्ड

इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को आधिकारिक रूप से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। 253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाली इस परियोजना के अंतर्गत 5.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी में मुख्य रूप से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
7: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
8: समझे जनाब अली।
7: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
9: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
10: जी हाँ भैया, 5:05 हो गए, हम जान रहे हैं आप किस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम का आप इंतजार कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम का नाम है FM टॉप 10। और हम इसमें सुनाते हैं टॉप 10 गाने किसी गायक के, किसी ईयर के, या साप्ताहिक गीतों की टॉप 10 लिस्ट। तो आज जो हम गाने लेके आए हैं टॉप 10, वो आपको ही बताना है कि किसके टॉप 10 गाने हम लेके आए हैं। तो पहले दो गाने सुनिए कि आज के टॉप 10 गानों में से इनके जो गाने हैं वो कितने नंबर पे हैं, और ये कौन गायक है, और हम आज किनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस गाने को सुनिए और थोड़ा सा इंतजार करिए, सोचिए कि ये गाना कौन सा है, क्योंकि बहुत जरूरी है आज के समय में लिफ्ट करा देना। तो लिफ्ट कराते कराते ये गाना सुनिए, गायक का नाम सोचिए, और किस बारे में आज बात हो रही है ये भी जरा सा सोचिए।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

और इसी तरह अदनान सामी ने अपनी आवाज का लोगों को दीवाना बना दिया। आपको बताते चले कि आज हम बात करने वाले हैं अदनान सामी के टॉप 10 गीतों के बारे में। जी हाँ, 5:18 हो गया और आप सुन रहे हैं एफएम टॉप 10 सॉन्ग। और अभी अभी आपने दो गाने सुने अदनान सामी के। अदनान सामी के बारे में बता दें कि भारतीय संगीत जगत के एक बेहद लोकप्रिय गायक हैं, ये आप सभी जानते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इनका जन्म जो है 15 अगस्त 1973 लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और आपको ये भी बताते चलें कि इनका रिकॉर्ड है कि ये सबसे तेज कीबोर्ड वादक भी रहे हैं, मतलब वो जो पियानो टाइप का होता है ना, वो सबसे तेज, आज तक के सबसे तेज पियानो वादक रहे हैं। उनकी उंगलियां बड़ी तेज चलती हैं। और आपको ये भी बता दें कि हिंदी के अलावा कई भाषा में इन्होंने गाने गाए हैं और बॉलीवुड की कई फिल्मों में इन्होंने अपनी आवाज दी है, जो आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। अदनान सामी, जी हाँ, 2000-2007 तक इनका एक जो दौर था, आज भी ये कई गानों में म्यूजिक दे चुके हैं, कई गानों में ये अपने आवाज दे चुके हैं और कहीं कहीं ये किसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी इन्होंने प्ले किए हैं।

जी हाँ, 5:24 हो गए हैं और आज हम FM टॉप 10 में बजा रहे हैं अदनान सामी के टॉप 10 गीत, जो 2000 और 2007 के बीच एकदम धमाकेदार छाए हुए थे। उन गानों की लिस्ट लेकर हम आपके सामने बिल्कुल हाजिर हैं। तो आपको बताते चले कि अब इनके बारे में एक और खास बात यह भी है कि अमेजिंग वेट लॉस इन्होंने किया था, क्योंकि जब इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था तो इनका वेट जो है बहुत ही ज्यादा था, मतलब 120 किलो इनके पास इनके शरीर का वजन था। और उन्होंने बड़ी मेहनत की, कड़ी डाइट इन्होंने की, बहुत मेहनत किया, उसके बाद इन्होंने अपना वेट बहुत ज़्यादा कम कर लिया और बिल्कुल फिट एंड फाइन। मतलब अगर जिन्होंने 90s के लोग इन्होंने इनको देखा होगा और बाद में अचानक से देखा होगा तो बिल्कुल लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये कौन है, मतलब ये सच में वाकई में अदनान है या कोई और है। फिलहाल आपको एक और विशेष सूचना देते चले कि प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इन्वाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल यानी कि NIPP की अंतिम तिथि 31 मई से 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 तक कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें प्रसार भारती.gov.in।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: जी हाँ, 5:40 हो गया है और आपको बताते चले कि आप सुन रहे हैं FM टॉप 10 और बेहतरीन गानों का एक सीरीज। तो भैया रामराज ने हमें ईमेल किया है, श्री गणेशाय नमो, टॉप 10 कार्यक्रम के लिए उन्होंने कहा है बहुत अच्छा गाना बज रहा है, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भान, शंकर भैया, पप्पू पासी, बहुत सारे नाम इन्होंने लिखा है और आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, हमारी तरफ से आपको बहुत सारा धन्यवाद भी इन्होंने भेजा है। और रोशनी रावत ने ये इन्होंने पहले ही गेस कर लिया था कि भाई आज जो गाने बज रहे हैं वो किनके बज रहे हैं, तो आज के जो गाने हैं वो अदनान सामी के गाने बजाए जा रहे हैं, ऐसा रोशनी रावत ने लिखा है। राधे श्याम जो शाक्य काशगंज से हैं, ये गुड इवनिंग लिखते हैं और सिंगर का नाम इन्होंने अदनान सामी बताया। जी हाँ, अदनान सामी का ही गाना आज हम अपने टॉप 10 में लिया है, उनके सारे जो टॉप 10 गाने हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। नवनीत सिंह जी ने हमें ईमेल किया है चौक कोतवाली लखनऊ से, ये हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी बहन का नाम ले लीजिए, इनकी बहन का नाम नित्या है और वो दोनों मिलके प्रोग्राम सुन रहे हैं और अदनान सामी इन्होंने बताया। जी हाँ, अदनान सामी जो एक बेहतरीन गायक हैं और एक बेहतरीन कीबोर्ड मतलब कि जो पियानो बजाते हैं वो हैं, और उनको आपने देखा होगा कई रियलिटी शो में या ऐसे शो में जिसमें वो जज की भूमिका में नजर आए और बहुत सारे उन्होंने पुरस्कार भी जीते बॉलीवुड को लेके और पद्मश्री पुरस्कार से भी वो नवाजे गए हैं। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन सा ट्रैक अदनान सामी की आवाज में।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हेलो FM,
2: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
3: What is mobile number? What is your smile number?
4: What is your style number? करो क्या dial number?
5: हेलो, आप असम रेमो से बोल रहे हैं?
1: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: पांच बजकर 49 मिनट और ये भागते हुए सेकंड जो आप 5:50 की तरफ जा रहे हैं, और ये अदनान सामी का और एक एक गाने जो आपके लिए चुन चुन कर लेके आए हैं, उनमें से एक और खास गाना सिर्फ आपके लिए।

वैसे जो आप ये सारे गाने सुन रहे थे, इनका एक अलग दौर हुआ करता था। भले कि देखा जाए तो आज भी इन गानों को लोग सुनते हैं, लेकिन जिस समय ये गाने ट्रेंड में थे, जिस समय इस गानों का बिल्कुल टॉप मोस्ट गाना माना जाता था, कि भाई रेडियो में भी कहा जाता था फोन करके, भाई हमें यही वाला गाना सुनाइए, हमें इनका गाना सुनना है, तो उस वक्त के ये सारे गाने कहीं ना कहीं ऐसा लगता था ना कि मतलब उस गाने में कुछ ना कुछ जादू होता था। जैसे अभी इसके पहले आपने गाना सुना भींगे भींगे रातों में, तो वाकई में अभी का टेम्परेचर जो देख के लग रहा है कि वाकई में बारिश की जरूरत तो है। अब जैसे कि नौतपे वाली बात हो रही थी कि भाई नौतपा है, नौ दिन खूब चिलचिलाती गर्मी हो गई, हुई भी कई जगहों पर हुई, उसके बाद थोड़ी बहुत राहत के लिए बादल जो है घूमड़ घूमड़ के आए, थोड़ा सा राहत हुआ, लेकिन अब जो है आज के बाद से, आज के ही दिन से बल्कि हमको लग रहा है कि तापमान बढ़ने शुरू हो गया है। तो इसके लिए स्पेशल थोड़ा सा ख्याल रखिए अपना, वहीं बाहर निकल रहे हैं तो ये मत देखिए कि भाई फैशन में हमारे कमी हो जाए, गमछा जरूर लेके चलिए, क्योंकि गमछा गर्मी से आपको बचाए रहेगा तो फैशन आपका होता रहेगा, ठीक है। या फिर कोशिश करिए कि पूरी बाजू की शर्ट कॉटन के कपड़े जरूर पहनिए। 5:54 शिवम को दीजिए अनुमति FM Top 10 से, ये बेहतरीन सा गाना आपके लिए एक बार फिर से।

नमस्कार, शाम के 6 बजे के मुख्य समाचारों के साथ मैं शिवम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ से अधिक की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने कुशीनगर में इंसेफलाइटिस और माफिया दोनों पर प्रभावी प्रहार करते हुए विकास, सुरक्षा, रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं बल्कि बुलेट स्पीड से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम के पुत्र कुश, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की तपोभूमि कुशीनगर आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर आगरा आए हुए हैं। आज उन्होंने प्रसिद्ध कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना की। मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनावों में अपना वोट जरूर डालें। उन्होंने कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। ग्रेटर नोएडा के विजय सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में कल से 13 जून तक बिग क्रिकेट लीग सीजन 2 का आयोजन होने जा रहा है। शिखर धवन, हरभजन सिंह, क्रिस गेल सरीखे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल होंगे। सभी मैचों के लिए स्टेडियम में प्रवेश निशुल्क रहेगा। लीग के मुख्य संरक्षक पुनीत सिंह ने बताया कि टूर्नामेंट में 6 फ्रेंचाइजी टीमें T20 फॉर्मेट में 18 मुकाबले खेलेंगी। लीग के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सुरक्षा से लेकर ग्राउंड और अन्य सुविधाओं तक सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली गई हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन पर एयर कॉन्कोर्स निर्माण के कारण ट्रैफिक ब्लॉक को 4 जून तक बढ़ा दिया गया है। ब्लॉक के चलते लंबी दूरी की 22 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। इसके अलावा 68 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले गए हैं। ज्येष्ठ माह के 5वें बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार

देखने को मिल रही है। बजरंगबली के जयकारे के साथ लोग दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़े मंगल पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव एफएम रेनबो।
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप

0: आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: यू आर लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।
2: जी हाँ, 6:05 हो रहा है और आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल 100.7 FM रेनबो पर, जिसपे प्रोग्राम शुरू हो चुका है शामे अवध। जी हाँ, इसमें ढेर सारी बातें हम लखनऊ शहर की करते हैं। क्या रहेगा ट्रैफिक अपडेट, क्या रहेगी शहर की गतिविधियां, कौन सी खबर है लखनऊ के लिए उपयोगी, ये सारी बातें बेहतरीन गानों के साथ लिपटे हुए आप तक पहुंचाते हैं हम हर रोज। तो अब आप सुनिए शामे अवध बेहतरीन प्रोग्राम, लेकिन उससे पहले एक बेहतरीन सा गाना हो जाए, उसके बाद लेके आते हैं खबरों में की ढेर सारी खबर निकाल के।

जी हाँ, आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते 6:11 हो गए हैं, और अगर आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं तो स्पीड थोड़ा सा आहिस्ते जरूर रखिएगा, क्योंकि भाई आज लखनऊ में बड़ा मंगल है, भंडारा है रास्ते में, तो आहिस्ते आहिस्ते सारे भंडारों का स्वाद चखते हुए जाइएगा। वैसे हम आपको रास की बात बताते हैं, जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो रास्ते में बड़े ढेर सारे भंडारे मुझे मिले, तो मैंने मैक्सिमम कोशिश की कि मैं भंडारे के मतलब स्टूडियो जाना था, मुझे जल्दी जल्दी पहुंचना है, लेकिन लास्ट में एक जगह बढ़िया ठंडे ठंडे पानी का रसना घोल के पिलाया जा रहा था। उफ़, ये चिलचिलाती धूप में मुझे रहा नहीं गया, तो मैं भाई वहां पे ठंडा रसना पी के आया हूं। तो आप भी अगर वापस जा रहे हैं और अगर भंडारा मिल रहा है तो जय बजरंगबली का नारा लगा के थोड़ी देर गाड़ी पार्क करके नियत जगह जहां स्थान बना है वहां पार्क करके, क्योंकि मैं जब वापस स्टूडियो जब बाहर आता तो मैं एक बात और नोटिस की कि बहुत से लोग भंडारा खाने के चक्कर में सड़क पे ही गाड़ी खड़ी कर दी है, अव्यवस्थित तरीके से भीड़ जमी है और ट्रैफिक भी बाधित हो रहा था। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अगर आप वापस जा रहे हैं रास्ते में कहीं भंडारा मिल रहा है तो तरीके से गाड़ी कहीं किनारे लगा

के ही भंडारा आप खाएं। और हाँ, एक खास बात मैंने ये देखी कि बहुत से लोगों ने अपने भंडारे के पास पोस्टर लगा रखे हैं लिख के कि कृपया दोने पत्तल गिलास कूड़ेदान में ही डालें। देखिए कितने जागरूक है लोग, कितनी अच्छी वहां पे सोच रखी गई है, साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। अब आप भी इसमें अगर सहयोग नहीं करेंगे तो ये हम कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो आप भंडारा खा रहे हैं अगर, तो ये आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि जो दोने पत्तल गिलास चम्मच कटोरी और आइसक्रीम के कोन के जो जो कागज के रैपर मिल रहे हैं, तो भाई साहब उसको कूड़े में ही डालना है, सड़क पे नहीं फेंकना होता है ना। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और सेंसिटिविटी को थोड़ा और बढ़ाइए। फिलहाल 6:13 पर एक बेहतरीन सा गाना हम आपको भेज रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और न्यूज दे रहे हैं आपको कि अगर आपका मीटर जो है नहीं बदला है, और तो उसके लिए अगर फॉर्म भर के आप बदलवाना चाहते हैं तो बेशक बदलवाइए, उसके लिए पूरी डिटेल हम दे रहे हैं। पोस्टपेड अगर नहीं हुए हैं तो मई में ही मीटर फिलहाल बदले जा चुके हैं, लेकिन अगर नहीं है किन्हीं कारणों से तो वर्टिकल कार्यालय इंद्रलोक हाईडेल कॉलोनी अमौसी हुसैनगंज लखनऊ मध्य पुरनिया उपकेंद्र जानकीपुरम और मंत्री आवास उपकेंद्र के पास गोमती नगर जोन के अधिशासी अभियंता कलेक्शन के पास ये फॉर्म उपलब्ध है। 3 दिन में मीटर पोस्टपेड होने का मैसेज मोबाइल पर पहुंच जाएगा। अगर आप पोस्टपेड नहीं है, अगर फॉर्म भर के जमा करते हैं तो आपका मैसेज जरूर आएगा, मतलब काम बिल्कुल एकदम फटाफट हो रहा है। और एक बेहतरीन सी खबर लखनऊ में खुद का आशियाना बनाने को लेकर है। एक गाना बजाते हैं, सुनते हैं और उसके बाद लौट के आते हैं, तब बताते हैं कि भाई लखनऊ में आपका खुद का आशियाना कैसे, कब और कितने में हो जाएगा।

0: आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: जी हाँ, 6:20 हो गए हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था कि भाई हम जब वापस आएंगे तो लखनऊ में आपका आशियाना कैसे किस तरीके से बनेगा वो डिटेल बताने के लिए, तो आपको बताते चले कि ऐशबाग स्क्वायर पार्क व्यू फ्लैटों के लिए खुल गया है पंजीकरण। जी हाँ, आपको बताते चले कि फ्लैटों के पंजीकरण के लिए आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें ये भी कि 276 पार्क व्यू अपार्टमेंट में और 118 फ्लैट खाली है ऐशबाग स्क्वायर में, जगह खाली है, मतलब जो फ्लैट है वो खाली है। पंजीकरण के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि पंजीकरण 30 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन एलडीए की वेबसाइट पर जाकर आप कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको यह भी बता दें कि पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ एलडीए की वेबसाइट पे ही होगा, registration.ldaelucknow यानी कि lucknow.in के माध्यम से ही कराया जाएगा। इसके लिए फ्लैट की अनुमानित मूल्य की 5% रकम बतौर पंजीकरण शुल्क जमा करनी होगी, जो आरक्षित वर्ग के लिए 2.5% होगी और फ्लैटों का आवंटन लॉटरी से किया जाएगा। मतलब कि अगर आप घर लखनऊ में चाह रहे हैं लेना, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट खबर, अभी तक की बेहतरीन खबर यही होने वाली है। तो आप तुरंत इसको जाके रजिस्टर करिए, खुद को पंजीकरण करिए और लखनऊ में रहने का सपना बिल्कुल साकार करिए।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

अच्छा, 6:27 हो गए हैं और ये भागते हुए सेकंड जो अब 28 मिनट को होने को है। आपको एक विशेष सूचना ये भी दे दे कि प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इनवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल NIPP की अंतिम तिथि 31 मई से 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 तक कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें prasarbharati.gov.in पर। और एक खास बात यह भी है कि अगर आप ट्रैफिक में हैं तो प्लीज जरूर अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं और कैब वाले भैया लोगों से ये जरूर हम रिक्वेस्ट करें कि वो जो आप सीट बेल्ट ऐसे लगा के ऐसे ऊपर से निकाल देते हैं ना, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। प्रॉपर सीट बेल्ट जैसे लगाई जाती है वैसे लगाएं, क्योंकि आप लोगों को हमेशा चलना ही चलना होता है, तो आप सेफ्टी का ख्याल बहुत ही ज्यादा रखें। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो टू व्हीलर चलाते समय बिल्कुल भी मोबाइल और ईयरफोन किसी भी तरीके का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत से लोगों ने यह सोचा है कि भाई वो ब्लूटूथ जो आती है छोटी सी वो कान में लगा लिया ऐसा बढ़िया गाना चलाते हुए चल रहे हैं। लेकिन अभी मैंने देखा है कि अब जो लोग बिल्कुल भी इस बात की चिंता ही नहीं करते हैं कि हमें सड़क पे चलते समय ट्रैफिक नियम का पालन हमें ही करना होता है। बहुत से लोग जो पैदल होते हैं वो सड़क को ऐसे पार कर रहे होते हैं जैसा लग रहा है कि गार्डन में ही टहल रहे हैं अपने, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी सड़क पार करें ये ध्यान रखें और ये बिल्कुल निश्चित करें कि दोनों तरफ से गाड़ियां नहीं आ रही हैं, और अगर आ भी रही हैं तो इतने तरीके से ही होते हैं जो प्रॉपर कट होते हैं, जो डिवाइडर में जहां होते हैं जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है वहीं से ही क्रॉस करें। परसों देखा मैंने कि बंगला बाजार चौराहे पे ट्रैफिक बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसी में एक महिला है जो अपने बच्चे को टोपी लगा के और छाता लगाए क्रॉस कर रही है, और छाते से उनको ये अंदाजा नहीं हो रहा है कि दाएं से गाड़ी आ रही है कि बाएं से गाड़ी आ रही है, और उनके जस्ट बगल से एक रिक्शा निकला है, अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ होता तो चोट लगना बिल्कुल था। इस बात का ख्याल रखें और आप भी ध्यान रखें कि अगर आप पढ़े लिखे हैं समाज में रह रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। तो वो जो डिवाइडर में बचे छोटे से कट से आप गाड़ी निकाल लेते हैं ना, चालाकी उसमें नहीं है, चालाकी इसमें है कि आप खुद को सुरक्षित रखते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं। 6:30 एक बेहतरीन सा गाना सिर्फ आपके लिए।

0: हेलो एफएम,
1: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
2: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
3: हेलो, आप एफएम रेनबो से बोल रहे हैं?
0: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं एफएम रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो एफएम हर रोज शाम 7 बजे।
4: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
5: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
6: समझे जनाब अली।
5: जहां हर घर में बचता है 100.7 एफएम रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
7: 6:37 पर ये खबर आपके लिए है कि बेटियों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए हो गए हैं, और ये कहाँ हुए हैं ये भी जान लीजिए। आईटीआई सत्र 2026-27 के लिए आपको ये बता दें कि प्रवेश के लिए SCVT ने जारी की है ये अधिसूचना, जिसमें जो फीमेल हैं उनके लिए 100 रुपए मात्र का शुल्क होगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए सत्र में उन्हें आवेदन शुल्क में विशेष राहत दी गई है। आईटीआई सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए सभी वर्गों की बालिकाओं को के

टोटल 100 रुपए ऑनलाइन आवेदन शुल्क देना होगा। ऑनलाइन आवंटन होगा कैसे, ये भी आपको बता दे चले कि अधिसूचना के अनुसार 8वीं और 10वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे तथा मेरिट के अनुसार प्रथम चरण में सीटों को ऑनलाइन आवंटन किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया, तीन प्रकार के विकल्प दिए जाएंगे, मतलब जब आवेदन करेंगे आप की काउंसलिंग कब करनी है, तब आवेदन में जब काउंसलिंग होगी तो पहले विकल्प में राजकीय आईटीआई व पीपीपी मॉडल, दूसरे में केवल निजी आईटीआई और तीसरे में राजकीय तथा निजी दोनों प्रकार की आईटीआई के विकल्प शामिल होंगे। और इसकी अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर जानकारी लें। 6:38 बेहतरीन सगाना आपके लिए प्रोग्राम शाम अवध में, शिवम है आज आपके साथ।

जी हाँ, 6:51 हो गया है और प्रोग्राम चल रहा है शाम अवध। मेरा नाम शिवम है और आपने ट्यूनिंग किया है 100.7 FM रेनबो। हम हैं धड़कन लखनऊ की। और आपको बताते चले कि 34 ट्रेनों में स्लीपर और एसी की अतिरिक्त बोगियां लगने वाली हैं। कौन सी में कैसे क्या होना है वो सारी जानकारी अभी तुरंत दे रहे हैं। आपको बताते चले कि उत्तर रेलवे ने 34 ट्रेनों में स्लीपर और एसी के अतिरिक्त कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसमें गर्मी में छुट्टियों में वेटिंग से परेशान हजारों मुसाफिरों को बहुत ही राहत मिलने वाली है। और आपको ये भी बताते चले कि किस गाड़ी में कितनी ट्रेन में कौन सी बोगियां लगने वाली हैं। तो गाड़ी नंबर है 04211 और 12 LTT सुल्तानपुर एक्सप्रेस में 3 से 11 जून तक, और LTT वाराणसी स्पेशल में 4 से 12 जून तक, और नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में 6 से 14 जून तक 3rd AC इकोनॉमी का एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा। साबरमती एक्सप्रेस में 4 से 27 जून तक, साबरमती एक्सप्रेस में 2 जून से 7 जुलाई तक, और साबरमती एक्सप्रेस में 4 से 27 जून तक 3rd AC स्लीपर को एक एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा। इन ट्रेनों का नंबर है 19409 और 10, 20939 और 40, 20963 और 64। साबरमती एक्सप्रेस, ये चारों ट्रेनें जो अलग अलग नंबर से हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से जाएंगे, उनमें एक एक 3rd AC और स्लीपर कोच अतिरिक्त एक्स्ट्रा बोगी लगाई गई है, जिससे आप सभी को जाने में कोई भी परेशानी बिल्कुल ना हो। और एक खास बात यह भी है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से चलने वाली 36 ट्रेनों को अन्य प्लेटफॉर्म से चलाया जाएगा।

पांच नंबर प्लेटफार्म से चलने वाली 21 ट्रेनें भी दूसरे प्लेटफार्म से चलेंगी। प्लेटफार्म दो और तीन से चलने वाली 11 ट्रेनें प्लेटफार्म नंबर 6 और 7 से चलाया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि कानपुर इंटरसिटी सहित कई ट्रेनें चार बाग नहीं आएंगी। ये लखनऊ जंक्शन, उतरेटिया, मानक नगर, मल्हौर तक ही आएंगी और वहीं से वापस हो जाएंगी। यशवंतपुर लखनऊ एक्सप्रेस उतरेटिया, कानपुर लखनऊ मेमू, 64255 लखनऊ कानपुर मेमू मानक नगर तथा 64215 अयोध्या लखनऊ मेमू मल्हौर तक ही आएगी और वहीं से वापस चली जाएगी। तो इस बात का बेहद खास ख्याल रखिए कि कभी भी ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में यथास्थिति जरूर जान लें। अब तो बहुत सारे एप्लीकेशन भी आ गए हैं जानने के लिए, लेकिन आप कोशिश करिए कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या 139 पर डायल करके अपनी ट्रेन के बारे में जानकारी जरूर इकट्ठी कर लें। और अब 6:54 हो गया है, प्रोग्राम शामे अवध को यही वाइंड अप करेंगे। आपसे लेंगे अनुमति, लेकिन कहीं मत जाइए, मिलेंगे आपको हेलो एफएम में, लेकिन एक बेहतरीन सा गाना आपके लिए।

नमस्कार, आप सुनिए यूपी की टॉप 10 न्यूज। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया है। वहीं सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में चिलुआ ताल में 20 करोड़ 39 लाख रुपए से पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में पूजा अर्चना की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज बाराबंकी के राजकीय प्रेक्षण गृह में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का आधार है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के नवयुक्त निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने आज अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया। फतेहपुर के जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पलटू का पूर्वा का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि ग्राम सभा में कराए गए कार्यों की सूची चस्पा कराएं, जिसमें ग्रामवासियों को कराए गए कार्यों की जानकारी हो सके।

ज्येष्ठ माह के पांचवें बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिली। बजरंग बली के जयकारों के साथ लोग दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश की अनुमान जताया है। इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: I am संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love एफएम रेनबो।
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप
4: हेलो एफएम,
5: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
6: What is mobile number? What is your smile number?
7: What is your style number? करो क्या dial number?
8: हेलो, आप एफएम रेनबो से बोल रहे हैं?
4: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं एफएम रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो एफएम हर रोज शाम 7 बजे।

0: भाई, जिस घड़ी का आपका इंतजार था वो घड़ी आपके घर में बहुत पहले है, लेकिन वो घड़ी जिसमें बज गया है 7:06 और प्रोग्राम हेलो एफएम का इंतजार था, वो लेकर मैं आ गया हूँ। जी हाँ, मेरा नाम शिवम है और आपने ट्यून इन किया 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की। और इस प्रोग्राम में होता है ढेर सारी बातें और ढेर सारे फरमाइशी गीतों का गुलदस्ता, जिसमें आप लोग करते हैं हमें फोन। तो आप भी हमें फोन करिए और बन जाइए अपने फरमाइशी गीतों के श्रोता। तो फिलहाल हमारे साथ कोई बहुत दूर से जुड़ा हुआ है अपने ढेर सारे अरमान लेकर, तो करेंगे उनसे बात, जानेंगे उनका नाम, करते हैं क्या काम और क्या है उनके हालचाल, ये सारी जानकारी उन्हीं से ले लेते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है भाई साहब आपका?
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, बताइए क्या नाम है आपका?
1: हेलो
0: हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको?
1: बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: जी राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप शिमला से बात कर रहे हैं। बहुत जी, हेलो
1: हेलो
0: जी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास हैं या किसी भी तरीके का कोई एप्लीकेशन अपने फोन में ऑन रखे हैं तो प्लीज उसे हटा दीजिए। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो देखिए, इन्होंने हमें फोन किया था शिमला से और अपनी फरमाइश के गीत के लिए बोला था और बड़े खुश लग रहे थे ये, तो इनकी पसंद का गाना सुनते हैं। तब तक आप अपनी पसंद हम तक जरूर पहुंचाइए, हम कर रहे हैं आपका इंतजार बड़ी ही बेसब्री से, और फोन करिए, बन जाइए बढ़िया वाला, गाना सुनाते हैं आपको।

0: अरे भाई ऐसे कैसे हम आपका साथ छूटने देंगे। 7:12 हो गया है और हम आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छूटने देंगे। हम बिल्कुल तैयारी करके आए हैं। तो प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम और आपको एक विशेष सूचना दे दें कि अगर आप हमें फोन कर रहे हैं तो कृपया अपने फोन में किसी भी तरीके का कोई भी एप्लीकेशन ना ऑन करके बात करें, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन ऑन करने के बाद अगर हमें फोन करते हैं तो फोन कट जाएगा। नेटवर्क एरिया में रहें और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि होता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है और अगर ऐसे में आपका फोन कट जाता है तो बड़ी बहुत ही बहुत मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि भाई आपसे बात करते करते बीच में अचानक से फोन कट जाना। तो प्लीज इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। बहुत से श्रोता हमारे ऐसे भी हैं कि रेडियो ऑन कर लेंगे और बगले में बैठ जाएंगे और हमारा फोन की आवाज और हमारे रेडियो की आवाज दोनों हमें सुनाई दे रही होती है। तो भैया थोड़ा सा तरस खा लीजिए, क्योंकि हमें भी आपसे बात करनी होती है ना। तो इसी तरह हमारे एक बहुत ही बेहतरीन समझदार सुलझे हुए श्रोता हमें फोन किए हुए हैं, तो उनसे नाम जानते हैं और उनसे बातें करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो सर नमस्ते, क्या नाम है आपका?

0: का नमस्कार, हम ग्रामो सुल्तानपुर
1: से बोल रहे हैं रमेश जी। आप अपना नाम पता एक बार फिर से बोल दीजिए क्योंकि आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है।
0: सुल्तानपुर से
1: रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है, आप पलिया से हमें फोन किए। ये बताइए रेडियो कब से सुन रहे हैं?
0: 2020
1: से सुन रहे हैं। तो अभी आपका फेवरेट प्रोग्राम रेडियो पे कौन सा है?
0: क्या सर?
1: फेवरेट प्रोग्राम रेडियो पे, अगर आप रेडियो सुनते हैं तो सबसे बेहतरीन प्रोग्राम जो अभी तक आपको लगा, जो लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा है?
0: लखनऊ रेनबो का प्रोग्राम सभी अच्छे लगते हैं।
1: लखनऊ रेनबो के सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। मौसम के बारे में बताइए कि मौसम कैसा है आपके यहाँ? वैसे तो हर जगह धूप ही है लेकिन कहीं कहीं आज ऐसा है कि थोड़ी बहुत धूप, बदली और थोड़ी आंधी की भी संभावनाएं हैं, तो कैसी है?
0: क्या सर, आपकी आवाज सही है?
1: हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं आप?
0: जी सर।
1: कह रहे हैं मौसम कैसा है आपके यहाँ?
0: आप बोलिए सर।
1: जी कह रहे हैं, क्या करते हैं आप रमेश जी, ये बताइए आप।
0: जी मैं किराना स्टोर चलाता हूँ।
1: किराना स्टोर चलाते हैं तो रेडियो वहीं सुनते हैं?
0: जी।
1: तो कभी जी
0: दुकान से
1: अच्छा अच्छा दुकान से वापस आ चुके हैं, तो ये बताइए गाना कौन सा सुनेंगे आप?
0: जान तेरे नाम का।
1: जान तेरे नाम का गाना सुनेंगे आप? कौन से?
0: कल कॉलेज
1: बंद हो जाएगा। वैसे कॉलेज तो खुला हुआ है बहुत से लोगों का, तो ये बताइए किसको डेडिकेट करना चाह रहे हैं गाना? अच्छा, रमेश जी ब्लाइंड है और इन्होंने देहरादून से पढ़ाई की है और ये अपने सारे देहरादून के दोस्तों को ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं और हमें नहीं करेंगे? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ऐसे ही हमें फोन करते रहिए, ईमेल भी कर सकते हैं आप, और यूं ही बने रहिए हमारे साथ यानी 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया, विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआ ताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं बल्कि तीव्र गति से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।
1: इसी सत्र में हम लोग कुशीनगर के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी संचालन करने जा रहे हैं। उसमें सत्र प्रारंभ होगा, बच्चों का एडमिशन हम करवाएंगे। कुशीनगर में अपना विश्वविद्यालय हो, कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं।
0: मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, इन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया है। वहीं सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवा

0: स्कूलों की खरीद की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनावों में अपना वोट डालें। उन्होंने कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। श्री कुमार 2 दिवसीय दौरे पर कल आगरा पहुंचे थे।
2: आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए।
0: मुख्य सचिव SP गोयल ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के मास्टर प्लान और लेआउट का अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध और प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री गोयल ने कल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि 25 से 29 सितंबर तक होने वाला ये शो और अधिक भव्यता के साथ आयोजित किया जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आगरा के बिरहरू को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार इस उपलब्धि के लिए कल दिल्ली में सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सरकार और ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त किया है।
4: ये गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनूं और गांव की दुर्दशा पहले बहुत ज्यादा खराब थी। लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की, इंटरलॉक, सीसी सब कराई गई। बाकी पंचायत घर, सचिवालय, RRC सेंटर, लैब, लाइब्रेरी, ऐसे बहुत से कार्य कराई गई। सरकार को बहुत धन्यवाद।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हम

0: हमारे संवाददाता से।
1: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ज्येष्ठ माह के पांचवें बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिली। बजरंगबली के जयकारे के साथ लोग दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़े मंगल पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआ ताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने CBSE के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो।
3: I am संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
4: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM रेनबो।
5: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

0: 7:31 हो गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम। बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं, लेकिन एक और लोग जो हमारे साथ बड़ी देर से इंतजार कर रही हैं हमसे बात करने के लिए और अपनी ढेर सारी बातें आप तक पहुंचाने के लिए, फिलहाल उन्हीं से जानते हैं उनका नाम। हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सोती शर्मा है, मैं ग्राम खोरैया।
0: ठीक है, एक बार और अपना नाम बताइए और आराम से रिलैक्स होकर बताइए। आपका फोन लग गया है, कहीं भागने वाला नहीं?
1: सर मेरा नाम सोनी शर्मा
0: जी,
1: ग्राम खोरैया
0: जी। सोनी शर्मा जी लखीमपुर से बात कर रही है, ठीक है।
1: सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार
0: जी। आपको भी सबकी तरफ से हम नमस्कार कर रहे हैं। कैसी हैं आप ये बताइए।
1: सर मैं बहुत अच्छी।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि आज गाना कौन सा सुनेंगी? और डेडिकेट किसको करना चाहेंगी?
1: जी सर, सभी के लिए, जितने भी लोग सुने सभी के लिए, सब सब हमारे लिए खास।
0: और ये बताइए, आप अभी बता रहे थे कि आपका फोन दिसंबर में लगा, तो इसके बीच में आपने ट्राई किया?
1: जी सर नहीं।
0: अच्छा,
1: ज्यादा नहीं फोन लगाते सर, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, हम जीते रहते हैं। जी सर,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है ये कि आप जागरूक हैं, कम से कम एक बार फोन लगाने के बाद आप कुछ दिन वेट

0: लेती हैं। ऐसा ही मुझे लगता है जितने भी लोग हैं सुन रहे हैं उनको भी ये करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि अब इसके अलावा आप घर में जो है रेडियो कौन कौन सुनता है?
1: जी सर, हम ही बजाया करते हैं, सुनते रहते हैं।
0: और फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है आपका? फेवरेट प्रोग्राम आपका?
1: प्रोग्राम ये भी सुनते हैं, और जो 11 बजे है वो भी सुनते हैं। और सर जो इतवार को आता है सर,
0: ओके,
1: महिलाओं से संबंधित डॉक्टर है उनको बुलाया
0: जरूर। अगर आप सुनती होंगे तो अक्सर हमारे यहाँ महिलाओं से जुड़े संबंधित जितने भी डॉक्टर है वो जरूर आते रहते हैं। आप सुनते रहिए और अगली बार भी जब ऐसा होगा तो जरूर आएंगे। तो अब आपका गाना आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

0: 7:37 और अब बारी है एक और कॉलर से बात करने की। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: वेरी गुड इवनिंग जी, क्या नाम है आपका?
1: सर सुधांशु बोल रहा हूँ, ग्राम भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा जिला लखनऊ से। सर
0: सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में, और आप हमें हमेशा ईमेल के माध्यम से अपनी कविताएं प्रेषित करते रहते हैं, और आज आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करते क्या है आप, हमें हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: सर मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा से पढ़ाई करता हूँ सर, ग्रेजुएशन अब फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर में आ गया हूँ सर
0: जी। और इसके अलावा आपके क्या शौक हैं और किस तरीके की आप मतलब हॉबीज रखते हैं?
1: सर रेडियो सुनना बस।
0: रेडियो कौन सा फेवरेट है प्रोग्राम आपका?
1: सर फेवरेट है गुड मॉर्निंग लखनऊ, बाकी सभी।
0: तो अब आप गाने की फरमाइश बताइए कि गाना आज कौन सा सुन रहे हैं आप?
1: सर रंग भरे मौसम से रंग चुराके।
0: रंग भरे मौसम में, फिलहाल तो ये रंग

0: वो वाला गाना नहीं है, सबके रंग जो है उड़े पड़े हैं गर्मी से, क्या
1: यस
0: कहते हैं,
1: सर,
0: है ना?
1: यस सर।
0: गर्मियों में कैसा ख्याल रख रहे हैं आप?
1: सर पानी पीते हैं खूब, और जितने लोग सुन रहे हैं वो भी खूब पानी पिए, मैं भी पीता हूँ सर खूब।
0: ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन अगर मान लीजिए कि पानी अगर नहीं मिल रहा है तो बेल शरबत, लस्सी और मट्ठे से काम चल जाएगा,
1: हाँ सर, तरबूज खाएं, खरबूजा खाएं, खीरा खाएं,
0: है ना? अच्छा, तरबूज और खरबूज खाते से पहले हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं ये बताते हैं कि अगर उसे खरीद के ले आइए तो आधे घंटे तक पानी में डुबो कर रखिए,
1: यस सर,
0: है ना?
1: यस सर,
0: उसके बाद खाइए तो ज्यादा अच्छा है।
1: यस सर।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सुधांशु जी, और आप हमें ऐसे ही फोन करते रहिए, ईमेल भी कर सकते हैं, और आपका गाना आपके रेडियो सेट पर बिल्कुल ये रहा।

0: जी
1: खेती का काम करते हैं।
0: खेती किसानी का काम कर रहे हैं, तो अभी खेत में फिलहाल क्या लगाया है? गेहूं तो कट गया होगा, धान की तैयारी हो रही होगी,
1: धान की रोपाई हो ही लगी आपकी रोपाई
0: हो, धान की बेहन जो है तैयार करने के लिए बिल्कुल खेत में तैयार किए जा रहे होंगे।
1: जी जी,
0: तो ये बताइए कि बारिश का तो अभी इस साल लोग कह रहे हैं कि अनुमान कम है, तो उसको लेके क्या तैयारियां आपने की हैं अभी से?
1: सर अब खेती छोड़ चुके हैं धान के लिए, तो अब किसी तरीके से पैदा तो किया जाएगा।
0: ये तो बात सही है। तो खेत आप नहर से पानी चलाते हैं या ट्यूबवेल से?
1: ट्यूबवेल है,
0: ट्यूबवेल से पानी चला रहे हैं। चलिए बढ़िया है। तो ये बताइए गाना कौन सा सुनेंगे?
1: सर अपनी पसंद का कोई भक्ति गीत।
0: भक्ति गीत तो इस वक्त तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम आपको बढ़िया सा गाना जरूर सुनवा देंगे। और इस बात के लिए बहुत शुक्रिया कि आप हमें फोन किए और ऐसे हमें फोन करते रहे। जी
1: पहली बार कॉल लगा है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप ईमेल भी कर सकते हैं चाहे तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको फोन करने के लिए, और आपका गाना आपके रेडियो सेट पर बिल्कुल तैयार है सुनने के लिए।

0: 7:43 मिनट हो गए हैं और हमारे साथ एक और श्रोता लाइन पे हैं, उनसे जानते हैं उनका नाम। हेलो हेलो जी, थोड़ा तेज बोलिए प्लीज। क्या नाम है आपका?
1: इंद्रपाल वर्मा।
0: इंद्रपाल वर्मा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? लखीमपुर खीरी से आप बात कर रहे हैं और इंद्रपाल नाम है आपका। कैसे हैं आप ये बताइए।
1: अच्छा है, इस वक्त
0: क्या करते हैं इंद्रपाल?

0: तो 7:49 हो गए हैं और ये भागते हुए सेकंड 50 की तरफ आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अगला प्रोग्राम जो प्रेजेंट करने वाली हैं वो ज्योति जी है, बिल्कुल अपनी फुल तैयारी, फुल गाने और शानदार स्क्रिप्टिंग लेके एकदम तैयार।
1: आपको माहौल तो आपने सेट ही कर दिया है ये वाली खूबसूरत सी गजल चला करके जो आपने अभी अभी प्ले की थी, तो पूरा पूरा माहौल सेट हो गया।
0: बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो इसीलिए तो मैंने कि ये कहा कि भाई ज्योति जी आने वाली हैं और आबशार करेंगे, उसके पहले जो होता है ना कि वो रेड कार्पेट वाला माहौल, बिल्कुल एकदम तैयार ही तैयार है। और हमारे श्रोता जो माहौल बना ही देते हैं,
1: बिल्कुल उन्हीं के लिए तो हम इतनी तैयारी करके आते हैं।
0: बिल्कुल, देखिए ये जो चहकती हुई आवाज है ये ज्योति जी की है और प्रोग्राम जरूर सुनिएगा, मैं भी सुनूंगा वापस। अच्छा, अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक श्रोता जो अपनी ढेर सारी बातों के साथ बड़ी ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें हमसे कर रहे हैं और उनसे खुद ही जानते हैं उनका नाम। हेलो
2: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार, क्या नाम है आपका?
2: जी देवकली, आमतपुर बाजार बाराबंकी से बाबू अंसारी जी बात कर रहे हैं सर।
0: बाबू अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये बाबू अंसारी जी हैं, हमारे रेगुलर श्रोता हैं और हमें ये ईमेल के माध्यम से अपने विचार, अपने जो सूचनाएं हैं वो हम तक साझा करते रहते हैं। बाबू अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो एफएम में। क्या करते हैं बाबू अंसारी जी?
2: जी मैं सर इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, अहमदपुर बाजार में दुकान है।
0: अहमदपुर में आपकी दुकान है, किस चीज की दुकान है आपकी, क्या मतलब क्या करते हैं उसमें?
2: इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, उसमें जो रिपेयर करते हैं सीलिंग फैन वगैरह, कूलर और स्टेबलाइजर वगैरह, इन्वर्टर वगैरह।
0: तो इस वक्त तो बिल्कुल पंखे और स्टेबलाइजर की भरमार होगी आपके यहाँ बनाने के लिए?
2: जी सर।
0: तो कभी ऐसा हुआ है कि रेडियो बनाने के लिए कोई लेके आया हो?
2: जी
0: कभी ऐसा हुआ है कि रेडियो बनाने के लिए कोई लेके आया हो आपके पास और कहा हो भाई रेडियो बना दीजिए हमारा?
2: जी सर रेडियो का काम नहीं करते, बाजे का काम कोई है ही नहीं, सिर्फ जो है इन्वर्टर वगैरह स्टेबलाइजर वगैरह बनाती
0: हैं
2: सर।
0: अच्छा अच्छा, इसके अलावा क्या करते हैं, क्या शौक है आपके, किस तरीके का काम?
2: जी सर एफएम सुनने का शौक है और जो है गाने वगैरह सुनने का शौक है।
0: क्या बात है, तो गाने से याद आया कि गाना कौन सा सुनेंगे आप ये बताइए।
2: जी सर फिल्म का नाम है आपकी खातिर, टाइटल सॉन्ग सुनना है सर, एमएस एसमे जी की आवाज में है सर, डेडिकेट करना चाहते हैं कुछ लोगों को।
0: बिल्कुल जल्दी से नाम ले लीजिए।
2: सबसे पहले सर आपको
0: बहुत शुक्रिया
2: और ज्योति मैम को और कुलदीप गुप्ता जी, उधोली बाराबंकी से सुरभि सिंह है, सीतापुर से नवनीत मौर्या जी, श्री प्रकाश तिवारी जी, हरिकेश जी और मोहम्मद फैज अंसारी हैं, साहिबान अंसारी जी, तमापन अंसारी जी।
0: चलिए तो इन सबकी तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया डेडिकेट कर लिए और फोन करने के लिए। तो आपका गाना आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

0: जी हाँ भैया, आपके खातिर तो हम लोग हमेशा हमेशा लगे ही रहते हैं। और 7:54 हो गया है, मतलब कि प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। लेकिन वाइंड अप करने से पहले ढेर सारी बातें अभी जो एक कॉलर है उनसे कर ली जाए, तो उनसे नाम जान लेते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते शिवम भैया।
0: नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: जी मोहम्मद तालिब अंसारी बोल रहे हैं, राजा कटरा बाराबंकी से।
0: जी मोहम्मद तालिब जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें हमेशा ईमेल भी करते रहते हैं, बहुत सारी बातें लिख के भेजते रहते हैं, तो कैसे हैं आप ये बताइए और क्या करते हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी सर जी, हम बढ़िया हैं, ठीक है सर जी। और हमारी तो फर्टिलाइजर की शॉप है, और हाँ आपने जो कहा कि ईमेल भेजते रहते हैं तो हम ईमेल में शामिल होते रहते हैं, लेकिन कॉल लगाना बहुत मुश्किल है सर जी, कॉल नहीं लग पाता है सर
0: जी, क्योंकि बहुत से लोग चाहने वाले जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी, वो लोग भी फोन मिलाते रहते हैं, तो इसी में भीड़ हो जाती है ढेर सारी, है ना
1: जी।
0: चलिए तो बताइए कौन सा गाना जल्दी सुना दे, क्योंकि 7:55 हो गया है।
1: जी दिल मूवी का है, हमने घर छोड़ा, ये वाला गीत सर जी सुने।
0: तो घर छोड़ा है, तब किसके लिए घर छोड़ रहे हैं भाई साहब, ये भी बता दीजिए।
1: सर जी ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता था जी, बहुत दिनों से बजा नहीं है।
0: अच्छा चलिए बढ़िया है, ये बहुत ही शानदार गाना है, हम आपको आपके रेडियो सेट पर ये गाना पहुंचा रहे हैं। किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे, नाम लेना चाहेंगे?
1: जी सर जी, आपको और मोहम्मद आसिफ भाई हैं, मोहम्मद साबिर भाई हैं, और अकबर भाई हैं सर जी, बस।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये गाना
1: थैंक यू सर जी
0: आप तक।

सात बजकर 57 मिनट हो गया है, प्रोग्राम को यही वाइंड अप करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ढेर सारे ईमेल भी आए थे, उन लोगों का ईमेल शामिल कर ले। मोहम्मद सद्दाम, अजय सिंह कुमार, नवनीत सिंह, अजय सिंह कुमार, गुलबसा सिद्दीकी, सुधांशु, रोशनी चौरसिया, मोहम्मद आसिफ, हमारे मोनू भैया, रामराज, रोशनी रावत ने हमें ईमेल किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इस प्रोग्राम से मिलते हैं, मतलब आपसे लेते हैं विदाई। फिलहाल ज्योति जी लेकर आ रही हैं आबशार, जरूर सुनिएगा।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया है। वहीं सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, इसे पर्यटन के एक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने आज 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण अभियान के अंतर्गत 5 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी गतिविधियों का प्रभावी एवं जन सहभागिता आधारित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री राजभर ने कहा कि अभियान के माध्यम से श्रमिकों, असंगठित कर्मकारों एवं युवाओं तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, जागरूकता और योग को बढ़ावा दिया जाए। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, आंधी तूफान के बाद उत्पन्न हुई विद्युत बाधाओं के निस्तारण और उपभोक्ता शिकायतों के समाधान की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा कहीं भी विद्युत बाधा उत्पन्न होने पर उसका त्वरित समाधान किया जाए। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई। ज्येष्ठ माह के पांचवें बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिली। बजरंगबली के जयकारे के साथ लोग दर्शन पूजन करते नजर आ रहे। जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़े मंगल पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार।
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर।

0: हवा,
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

शाम का धुंधला का अब धीरे धीरे गहरा हो रहा है। दीवार पर लगी हुई सुइयों ने शाम के 8:04 और 37 सेकेंड्स दिखा दिए हैं और अब वक्त हो गया है उस महफिल का जहां लव्स और सुर मिलकर आपके जज्बात को आवाज देते हैं। आदाब तस्लीम नमस्कार, मैं हूं आपकी हमसफर आपकी दोस्त ज्योति और इस वक्त हम मिले हैं महफिले गजल आबशार में। तो चलिए याद करने की कोशिश करते हैं उस दौर को जब मोहब्बत गजलें और जज्बात कुछ और ही हुआ करते थे।

वक्त ऐसा होता है, कोई दौर ऐसे होते हैं जिनसे चाह करके भी आगे बढ़ने का दिल ही नहीं करता। लेकिन क्या करें, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम ही तो है। अब भले ही दिल चीख चीख कर कह रहा हो कि सारी दुनिया के गम हमारे हैं, सारी दुनिया के गम हमारे हैं, और सितम ये कि हम तुम्हारे हैं।

कितना भी गम हो मोहब्बत की राह में, लेकिन कुछ तो लज्जत है इसमें कि इश्क में लोग दुनिया भुला देते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं। फिर भी अफसोस कि कुछ दिल जाने किस खौफ से महबूब से दूर रहते हैं। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि मोहब्बत का रास्ता ऊंचा नीचा जरूर है, लेकिन है बड़ा खूबसूरत। ना जाने कौन सी मजबूरी होगी, ना जाने कौन सी मजबूरी थी उस मासूम की, जो सफर में साथ था वो राह बदलते ही पराया हो गया। ऐसे भी किसी ने कहा है ना कि गम इस बात का ना करो कि अब वो साथ नहीं है, खुशी इस बात की मनाओ कि कभी तो वो तुम्हारे साथ था, और जब वो तुम्हारे साथ था तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। 8:16 और ठीक 49 सेकेंड्स, आज हैं आप अब शार में ज्योति के साथ।

0: सहभागी बने।
1: एक जमाने से कहानी है
2: हमारी जनगणना हमारा विकास।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

8:22 और ठीक 46 सेकेंड्स। आप हैं ज्योति के साथ आबशार में, सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

मुझको आदत है, मुझको आदत है रूठ जाने की, आप मुझको मना लिया कीजिए। यही तो खूबसूरती है दिल के रिश्तों की, कभी शिकायतें, कभी मनुहार, कभी खामोशियां और कभी प्यार। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसे नहीं चलती जैसी हम चाहते हैं, दिल जो सोचे हर बार वही हो जाए ये भी जरूरी तो नहीं। कुछ फैसले वक्त करता है, कुछ हालात और कुछ रास्ते तकदीर चुन लेती है। ऐसे में याद आता है ये खूबसूरत शेर, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी है, कभी मंजिलें हम चुनते हैं तो कभी रास्ते हमें चुन लेते हैं।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
3: आठ बजकर 37 मिनट और ठीक 6 सेकंड्स। आप भीग रहे हैं आबशार में आज ज्योति के साथ। दोस्तों, कहा जाता है कि जब कोई दिल के करीब आ जाता है तो उससे जुड़ी हुई हर चीज अपनी लगने लगती है। उसका नाम, उसकी बातें, उसका शहर, उसकी गलियां, उससे जुड़ी हुई हर वो छोटी मोटी चीज जिस पर शायद किसी और का ध्यान भी नहीं जाता, वो आपको अपनी सी लगने लगती है। और फिर जुदाई के बाद वही शहर जो उसका शहर हुआ करता था, नक्शे पर बनी हुई एक जगह नहीं रह जाता बल्कि यादों का एक इलाका बन जाता है, जहां कभी मोहब्बत सांस लिया करती थी। ऐसे ही किसी एहसास के लिए किसी शायर ने कहा है, उदास दिल है मगर मुस्कुराना पड़ता है, तुम्हारे शहर में आकर ये हुनर भी आजमाना पड़ता है।

कहते हैं शांति में सुकून में और सन्नाटे में बड़ा फर्क होता है तो आपकी जिंदगी का सुकून इसकी शांति हमेशा बनी रहे ये कभी भी सन्नाटे में तब्दील ना हो इस दुआ के साथ ज्योति चाहेगी इजाजत आज के आबशार से अब से थोड़ी देर में हम जुड़ेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या के लिए ठीक 9 बजे फिर मुलाकात होगी मिलूंगी आपसे रेनबो कैफे में सुनते रहिए एफएम रेनबो

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल

0: बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपना

0: दिखाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3-4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2-3 branches also।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी

मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टोंटन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार।
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर। फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
4: Namaskar, adab and hello hi. रात के 9:01 और ठीक 58 सेकंड हो रहे हैं और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा लेट नाइट स्टॉप का। यस, मैं बात कर रही हूँ रेनबो कैफे की, जिसकी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और आपके सुरीले सफर में आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति है हाजिर सिर्फ और सिर्फ आपके रेनबो एफएम पर। भाई आज है जून की 2 तारीख, दिन भर सूरज देवता ने काफी परेशान किया, तंदूर भट्टी सुलगा ली ऐसा महसूस हो रहा था। इतने सुलगने के बाद, इतने झुलसने के बाद अब राहत थोड़ी मिली है रात में जाकर। तो भाई इस वक्त जितने भी लोग बेड पर लेटकर कूलर या एसी की हवा खा रहे हैं, तुरंत मुस्कुराइए क्योंकि अगले 1 घंटे रेनबो कैफे में टेंशन लेना है सख्त मना। आज रात हम और आप मिलकर बात करेंगे जून के इस महीने की सबसे खूबसूरत चीज यानी गर्मियों की छुट्टियों की, और साथ में सर्व करेंगे वो गाने जो आपके मूड को एकदम चिल्ड कर देंगे, और छुट्टियों की ये बातचीत आपकी टेंशन की भी करने वाली है टोटल छुट्टी। तो करें शुभारंभ। ऑलराइट, हियर वी गो।

यस, इस पूरे घंटे म्यूजिक रहना चाहिए लाउड, क्योंकि ये है रेनबो कैफे। और रेनबो कैफे में आज आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी हम सफर, आपकी हम नवा है ज्योति। और कौन? तो दोस्तों, जून की शुरुआत होते ही घरों का माहौल बदल जाता है पूरी तरह से। स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं और बच्चों का अल्टीमेट मिशन चालू हो जाता है, यानी नानी हाउस जाने का प्लान। और भाई साहब, हमारे देश में नानी का घर कोई मामूली जगह नहीं होता, वो एक ऐसा 5-star रिजॉर्ट होता है जहाँ दुनिया के सारे नियम कानून खत्म हो जाते हैं, जहाँ सुबह देर से उठने पर डांट नहीं पड़ती बल्कि सीधे हाथ में नाश्ता थमा दिया जाता है। मम्मी वहाँ चाह करके भी बच्चों को डिसिप्लिन नहीं कर पाती, क्योंकि बैकग्राउंड में नानी का डायलॉग तुरंत गूंजता है, खबरदार बच्चे ऐसे पाले जाते हैं। हाँ, सच बताओ, नानी के घर जो VIP ट्रीटमेंट मिलता है ना, उसके आगे दुनिया का बड़े से बड़ा लग्जरी वेकेशन भी फेल है। तो चलिए इसी प्यारी सी वेकेशन वाइब के बीच आपके मूड को थोड़ा और चिल करते हैं। 9:07 और ठीक 43 seconds, आप हैं ज्योति मिश्रा के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल FM रेनबो पर, और सुन रहे हैं इस वक्त रेनबो कैफे।

इस वक्त आप झूम रहे हैं ज्योति के साथ रेनबो एफएम पर और प्रोग्राम का नाम रेनबो कैफे, जिसमें आज सर्व किए जा रहे हैं कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो आपको थिरकने पर मजबूर कर देंगे। तालिब अंसारी साहब का ईमेल आया है राजा कटरा बारा बंकी से। ये लिख रहे हैं, मुस्कुराने की वजह ना ढूंढो वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी, कभी बेवजह भी मुस्कुरा कर देखो, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। भाई वाह क्या बात है। सुल्तान रजा साहब लिख रहे हैं, ज्योति मैम आपने कुछ दिन पहले हेलो एफएम किया था। जी हाँ मैंने परसों किया था हेलो एफएम। आगे इन्होंने लिखा है, मेरा कॉल नहीं लगा लेकिन कॉल नहीं लगा आपका लेकिन आपका प्रोग्राम अच्छा लगा। बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आपका दिल से शुक्रिया। सारी चीज़ें मैं पढ़ नहीं सकती लेकिन आपकी बातें सुन करके पढ़ करके मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत करते हैं और आप सराहते हैं तो हमें लगता है हमारी मेहनत करना सफल हो गया। इन्होंने लिखा है, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, अफजाल रजा, मोहनिश रजा, सादिक रजा, जीशान रजा, मम्मी पापा, संजीदा भी, सहना भी, समीरा बाबू, सबके साथ मिल करके कि इश्क के बाजार में हुस्न का मेला रह गया, इश्क के बाजार में हुस्न का मेला रह गया, भीड़े लाखों की मगर दिल अकेला रह गया, दिखावा करने वाले ले गए मोहब्बत का खिताब, शिद्दत से चाहने वाला हर इंसान अकेला रह गया। भाई वाह क्या बात है। लेकिन पता है मैं क्या सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी दिखावे वाले इंसान को सच्ची मोहब्बत के ऊपर प्रेफर करता है तो इसका मतलब वो आपको डिजर्व नहीं करता है ना। तो ऐसे में चल रही है मूड एकदम फर्स्ट क्लास रखिए। तालिब अंसारी जी का एक और भी ईमेल है, लिख रहे हैं कि ठंडी ठंडी हवा के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आसिफ अंसारी हैदराबाद, साबिर अंसारी कानपुर। तो जी ठंडी ठंडी हवा तो होनी ही चाहिए। ये आकाशवाणी है, सुबह की उस मध्यम धूप में चाय की केतली के संगीत में गूंजती थी जो एक जानी पहचानी तान, वो था हमारे घर का सबसे प्यारा मेहमान। ये आकाशवाणी है, जब इन शब्दों ने हवा में रुख बदला, बिना तार के इस डिब्बे ने हर उदास दिल का हाथ थाम लिया, दादाजी का समाचार सुनना, अम्मा का फरमाइशी गानों पर मुस्कुराना, दोपहर के सन्नाटे में हवा महल का नाटक और खेती किसानी से लेकर विज्ञान का पाठक, आज भले डिजिटल का शोर है चारों तरफ मगर रेडियो के सुरीली खर खर में एक सुकून है। अरे क्या बात है। ये सारा सब कुछ लिखा है मोनू सेठ ने, और इन्होंने लिखा है, आबशार बहुत खूबसूरत गजलों से सजाया था, पूरी उम्मीद है कि रेनबो कैफे भी धमाकेदार होने वाला है। तो जी कोशिश पूरी हो रही है। मोहम्मद आसिफ अंसारी ने हैदराबाद तेलंगाना से लिखा है, प्रोग्राम सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, आप बताइए कैसी, उम्मीदें अच्छी होंगी। मैं रहने वाला हूँ अहमदपुर बाराबंकी का, लेकिन प्रोग्राम इस वक्त तेलंगाना से सुन रहा हूँ। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और यकीन जानिए और अच्छी हो जाती है जब ये पता चलता है कि इतनी दूर दूर से आप हमारे प्रोग्राम्स को सुनते हैं, ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि इतना सराहते भी हैं। रेनबो कैफे पेश करने वाले को हमारा आदाब, आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और पसंद आता है। ग्राम बापो सहरपुरा मटकली जिला बरेली से शाहरुन अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका शुक्रिया जो कि आपने हमें

इतना कीमती वक्त दिया। और एम के राज मनीष कुमार राज जी का है ईमेल भानपुर हरवा जिला लखीमपुर खीरी से। इन्होंने लिखा है हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल। खाना और गाना हर किसी को अच्छा लगता है, खाना गलत हो तो स्वास्थ्य खराब करता है और गाना गलत हो तो समाज खराब करता है। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। इसका मतलब ये है कि अगर आपको गाना गाने का शौक है लेकिन अगर सामने वाला आपको गाने के लिए मौका नहीं दे रहा है, या आपको कुछ अच्छा गाने का शौक है लेकिन बारात में बूफे में सामने वाला कुछ ऐसे गिरता है जैसे कि गिद्धों का झुंड, तो आपको अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो बोला जाता है गिद्ध भोज, जो बूफे सिस्टम होता है ना इसको गिद्ध भोज बोला जाता है। और सच कहूं तो हमारे उन दोस्तों ने जिन्होंने एंजॉय किया हुआ है पंगत में बैठकर खाना, उनको बिल्कुल वो मेरे साथ अग्री करेंगे कि जब मनहार कर करके खिलाया जाता है तो उसमें जो मजा है वो बूफे सिस्टम में तो नहीं है। इंद्रपाल मिश्रा जी ने अमृता दतुनापुर से, दिवाकर अवस्थी शिवप्रकाश हरिप्रकाश आशा अवनीश विनीश के साथ में हमें ईमेल किया है और बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें लिखी हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। विजय पाल यादव जी ने लिखा है रेडियो ऑन किया आपकी आवाज़ सुनी खुश हो गया, आप शहर अच्छा लगा, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, पॉप टाइम भी अच्छा जा रहा है। ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से बबलू यादव और विजय पाल यादव जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इतनी ही देर में मेरे सामने ढेर सारे और भी ईमेल आ गए, ये सारे ईमेल भी पढ़े जाएंगे, बरोबर पढ़े जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस ओके। फिलहाल आप तक आ रहे हैं रेमो फर्नांडिस कहते हुए ओ मेरी मुन्नी, तो ऑल द मुन्नीज एंड मुन्नाज आउट देयर खड़े हो जाइए, थोड़ा सा थिरक भी लीजिए, टेंशन को किनारे रख दीजिए, क्योंकि खुश होने के लिए कोई रीजन चाहिए क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुस्कुराइए कि हम एक साथ हैं।

वैसे मुन्नी का मतलब पहले लिया जाता था छोटी बच्ची से, फिर एक वक्त ऐसा आया जबकि हर घर में एक न एक मुन्नी या फिर मुन्ना जरूर होते थे। वक्त बदलने के संग संग ये नाम भी बदल गए और अब छोटे बच्चों को भैया, गुड़िया, बबलू, पिंटू कुछ भी कहा जाने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ नाम भी बदल जाते, नामों के फैशन भी बदल जाते। बीच में एक ऐसा वक्त आया था जबकि आदित्य नाम हर घर में हुआ करता था और फिर करण। कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि टाइम के संग बदलते ही जाते हैं। कभी कभी तो आप नाम सुनकर के अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इस इंसान की उम्र तकरीबन इतनी होगी। आपने भी इस चीज को कभी गेस किया है? लेकिन फिलहाल मैं आपको ये गेस करने को कह रही हूँ कि गर्मी की छुट्टी का सबसे बड़ा विलेन कौन सा होता है। सोचिए, जब ये सुकून की बिल्कुल बौछार हो रही होती है और इसीलिए गर्मियां खलती भी नहीं कि चलो भाई गर्मी है तो क्या, छुट्टी तो है, मन मर्जी से सो कर उठ सकते हैं, मन मर्जी का खा सकते हैं, जब तक चाहो तब तक टीवी में कुड़ुक कुड़ुक कुड़ुक कुड़ुक चैनल चेंज कर सकते हैं, ऐसे में एक विलेन है जो कि बार बार सताता है एंड दैट टू फॉर अ रीजन। सोचिए और मुझे बताने की कोशिश करिए। फिलहाल तो करण औजला आ रहे हैं आपके पास लेकर फॉर अ रीजन।

ज्योति मैम, ये सारे गीत हमने पहले सुने हैं म्यूजिक टाइम प्रोग्राम में, जो कि सुबह 9 बजे से हुआ करता था, तब से अब प्ले हुए हैं। उसी प्रोग्राम की याद आ गई 2017 की। ये बात बोल रहे हैं तालिबान सारी जी। जी होता यही है ना कि नाम बदल जाते हैं लेकिन लोग वही रहते हैं, बातें वही रहती हैं, प्रोग्राम्स भी थोड़े थोड़े नए नए कलेवर में आप तक पहुंचते हैं। वैसे ये वाला गाना आपने नहीं सुना हो सकता है 2017 में, क्योंकि ये करण औजला का सुपर डुपर हिट सॉन्ग है जो कि रिलीज ही 2025 में हुआ था। बट यस, आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी पुरानी चीजों को, पुरानी यादों को रीलिव करना। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं है, खुद को समझ लीजिए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इंसान की किरदार की दो ही मंजिलें हैं, या दिल में उतर जाते हैं या दिल से उतर जाते हैं। भाई वाह, मतलब एक प्रेपोजिशन चेंज होने से कितना कुछ बदल जाता है। में और से, ये दो शब्द अगर इंटरचेंज हो गए तो सब कुछ उलट पुलट। भाई वाह, एकदम दिल जीत लिया आपने। आनंद तिवारी ने ये ईमेल किया था दारुकुया मल्लावा हरदोई से, और लिख रहे हैं प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो मैंने आपसे पूछा था कि गर्मी की छुट्टी का सबसे बड़ा वाला विलेन कौन सा होता है, उसका जवाब नहीं दिया आपने। तारीफें आप भेज रहे हैं और आपकी तारीफों के भी ईमेल पढ़े जाएंगे, 100% पढ़े जाएंगे, लेकिन हमारे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। हाँ, तो चलिए मैं ही दे देती हूँ। गर्मी की छुट्टी, हॉलीडेज की छुट्टी के बीच जो सबसे बड़ा विलेन होता है ना भाई साहब, वो होता है हॉलीडे होमवर्क। छुट्टियां होती है, बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन जहां जून की शुरुआत होती है वहीं धीरे धीरे धीरे धीरे मम्मी पापा को याद आने लगता है कि अरे भाई, हॉलीडे होमवर्क भी तो था, किया तुमने? और बस उसके बाद तो पूछो ही मत। जब कभी ये कहा जाता है कि काम था क्या तुम्हारा, और जब ये रियलाइज किया जाता है कि ये काम काम नहीं है, ये तो एक्चुअली इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे अकेले पूरा किया ही नहीं जा सकता, तब चेहरों के रंग उड़ते हैं। छुट्टियों का सारा मजा हो जाता है बिल्कुल किरकिरा। फिर शुरू होती पूरी फैमिली की जॉइंट वेंचर। कोई चार्ट पेपर ला रहा है, कोई गूगल पर सर्च कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट फाइल बना रहा है, और बच्चा बस चुपचाप बैठ कर डांट खा रहा है। होमवर्क की कोई चिंता ही नहीं तुम्हें, पता नहीं ये स्कूल वाले भी होमवर्क बच्चे को देते हैं या मम्मी पापा को। और इन सारी चीजों के साथ बेचारा बच्चा ये सोचता है कि अब कुछ भी है, कैसे भी है, मम्मी की डांट पड़ी तो क्या हुआ, पापा की डांट पड़ी तो क्या हुआ, कम से कम टीचर की डांट से तो बचे। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये हॉलीडे होमवर्क दिया जाना चाहिए या फिर नहीं, ये भी मुझे बताने की कोशिश करिए ईमेल्स के जरिए। 9:27 और ठीक 40 सेकंड्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त ज्योति, और हम जुड़े हैं FM रेनबो पर इन द प्रोग्राम रेनबो कैफे।

सौम्या का ईमेल है लखनऊ से, वो कह रही है कि क्यों नहीं दिया जाना चाहिए हॉलीडे होमवर्क। ऑफ कोर्स दिया जाना चाहिए, वरना तो ये बच्चे इतने धूम मचाएंगे, इतनी बदमाशी करेंगे कि हम पेरेंट्स का रहना मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट। इसके अलावा ये भी लिखती है कि हमारे कहने से तो बच्चे पढ़ते नहीं है, कम से कम कुछ हॉलीडे होमवर्क दिया जाता है, तो इसी बहाने वो भूलते नहीं है कि पढ़ाई क्या चल रही थी। तो मैं तो बिल्कुल सोचती हूँ कि हॉलीडे होमवर्क दिया जाना चाहिए और पेरेंट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो रेगुलर बेसिस पर किया जाए। भाई बहुत मतलब थॉटफुल टाइप का आपका मैसेज है, आपकी बात वेल पॉइंट नोटेड। शिवराज जी ने ढेर सारे ईमेल्स किए हैं, इन्होंने लिखा प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज शामिल कर लीजिए। तो भाई इतना प्लीज लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक्चुअली आई एम प्लीज्ड आपका ईमेल पढ़कर। मेरा नाम शिवराज है, मैं बाबूरिहा जैनाबाद जिला बाराबंकी से हूँ। कितनी बार मेल कर रहा हूँ लेकिन कभी किसी प्रोग्राम में मेरा मेल शामिल नहीं हुआ। अगर आज मेरा मेल शामिल हो जाएगा तो आपको धन्यवाद। अपने घर के सदस्यों का नाम ले रहा हूँ, प्लीज पढ़ दीजिए। मेरे पिताजी का नाम राम सुरेश, मेरी माँ का नाम आशा रानी, मेरी बड़ी सिस्टर स्मिता देवी, छोटी सिस्टर पल्लवी, बड़े भैया जगराज, मेरे चाचा का नाम राम नरेश है और चाचा FM के हर प्रोग्राम सुनते हैं देर रात तक। तो आप लोग क्यों नहीं सुनते, ये तो कोई बात नहीं होती शिवराज जी, आपको भी तो सुनना चाहिए। इतनी मेहनत से हम सब प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं तो आपको भी सुनना चाहिए। प्रॉमिस करिए अब से आप भी सुनेंगे। ओके, गुड इवनिंग ज्योति मैम, कैसी हैं आपका ओके प्रोग्राम पसंद आ रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज आप आई तो मेरा फोन हेलो FM में भी लग गया। हाँ मैं सुन रही थी, मैं ये स्टूडियोज में ही थी। मेरे रेडियो दोस्त के नाम शामिल कर लीजिए, कुलदीप गुप्ता, महेंद्र देपन, फैज अंसारी। तो जी मैं यही कह सकती हूँ कि आप लकी हो गए, आज हम सबके लिए आपका फोन भी मिल गया, आपका ईमेल भी शामिल हो गया। मोनू सेठ, जबरदस्त जुमाने वाले गाने बजाए जा रहे हैं आपके द्वारा, थैंक यू जी। अच्छा, गर्मी की छुट्टी का सबसे बड़ा विलन इनका ये कहना है कि घर के काम की कभी छुट्टी नहीं होती। दैट्स ट्रू, टोटली अग्रीड, घर के काम की कभी छुट्टी नहीं होती। शायद इसीलिए जो बेचारी मम्मियां होती ना घबरा जाती है छुट्टी के नाम सुनते ही, क्योंकि फिर बच्चे इतनी मस्ती करते हैं कि बस पूछिए ही मत। इंद्रपाल मिश्रा जी का भी ईमेल है, नो टबेको डे था संडे को और इन्होंने लिखा है नशा नाश का मूल है, कोरोना इसकी चाह कर देता है एक दिन घर परिवार तबाह। अमिता भोली सीतापुर से इंद्रपाल।

मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। गुलफशा, हेलो, गुड इवनिंग ज्योति मैम, मैं गुलफशा सिद्दीकी संडीला से, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, इस वक्त खाना खा रही हूँ, आप भी आ जाओ, खिलाएंगे आपको। भाई मैं आ गई तो यहाँ गाने डिंचक डिंचक डिंचक कौन चलाएगा और आपको एंटरटेन कौन करेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आज आप अकेले खा लीजिए, किसी और दिन मैं जरूर आऊंगी। जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, वाह क्या नाम है, आरोही नामदेव, सौम्या नामदेव, इन सब ने मिलकर के ईमेल किया है, खनौधी शहडोल मध्य प्रदेश से। मजा आ गया, तबीयत खुश हो गई गाने सुनकर जी, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है आप सबसे बातें करते हुए, आप सबके लिए सॉन्ग्स प्ले करते हुए भी। आगे इन्होंने लिखा है, कभी किसी को दर्द देकर खुशियां नहीं मिलती, दिल दुखाने वालों को दुआएं नहीं मिलती, मत करना अहंकार कभी अपने अच्छे वक्त का, जिंदगी में हालात बदलते देर नहीं लगती। टोटली मतलब अग्री करती हूँ आपकी बात से। तो बस इतना ही है कि जो जितना खेला है ना बाबू, वो सिर्फ वक्त का है और वक्त अपने हाथ में नहीं होता, इसलिए कभी भी किसी बात का घमंड करना तो चाहिए नहीं। किसे कब क्या मालूम जीवन में क्या हो जाए, तो जो है उसके लिए शुक्र अदा करो और जो नहीं है उसके लिए मेहनत करो। और ऐसे में हम क्या करें, हम गुनगुनाएं दिल क्या करे।

क्या करे। अरे करना क्या है जी, रेनबो कैफे सुनिए, इसके जरिए आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह से दिल की बातों का इजहार किया जाए। नमस्कार, 41 मिनट ठीक 35 सेकंड से आपके साथ है आपकी अपनी दोस्त ज्योति इन द प्रोग्राम रेनबो कैफे, और हम और आप कर रहे हैं चल एक साथ जून की इस तपती हुई रात। अरविंद कुमार दुबे ने लिखा है छठहा डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से, गर्मी की छुट्टी में होमवर्क दिया जाना चाहिए क्योंकि इसके बिना तो जुलाई में अल्फाबेट और कॉन्सनेंट वाल तक हम भूल जाते। अग्रीड। अरविंद गौतम, गोविंद प्रतिमा प्रतिष्ठा, तन्वी दीपा श्याम कुमारी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। अरविंद कुमार जी का एक और ईमेल हमारे पास, सेम टू सेम इन्होंने आगे लिखा है, वॉल्यूम बढ़ा लिया है, मूड डांस मस्ती वाला है, हम सभी 12 बजे तक आपका साथ देने वाले हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महेंद्र देवपन लिख रहे हैं राजस्थान के रूड़गांव से, आपका ये प्यारा प्रोग्राम सुन रहा हूँ, थैंक यू। छुट्टियों वाली बात पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को हॉलीडे होमवर्क का बोझ नहीं दिया जाना चाहिए, उम्र खेलने कूदने और नई नई चीजें सीखने की होती है, ना कि किताबों में सिर गड़ाए रखने की। सच कहूँ तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में छुट्टियों की उतनी ही कमी खलती है। हमारी उम्र में छुट्टी लेने का दिल तो बहुत करता है, लेकिन जिम्मेदारी ऐसे सर पर हथौड़ा लेकर बैठी है कि फुर्सत का नाम ही नहीं मिलता। कितना दर्द भरा ईमेल है आपका, कितना दर्द भरा, मतलब बहुत सारे लोगों का आपने दर्द एकदम फ्रेश कर दिया, सच्ची बोल रही हूँ। और एक एम के राज, इन्होंने एक पंजाबी में भी भेजा है, जी सॉरी जी मुझे पंजाबी पढ़नी नहीं आती, आई एम सॉरी। लेकिन ये वाली जो बात थी ना कि छुट्टी चाह करके भी ले नहीं पाते, मैं टोटली समझ सकती हूँ, आपके दर्द को फील कर सकती हूँ। नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वो है जो कोशिश हजार बार करता है। कई दिनों के बाद मेल कर रही हूँ, 31 तारीख का आपका कार्यक्रम अच्छा लगा था जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आगे भी मैंने पढ़ लिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतने ध्यान से, इतनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, इतनी माइन्यूटली ऑब्जर्व करती हैं हमारे सारे प्रोग्राम्स को और हमको फीडबैक देती हैं जी, थैंक यू थैंक यू। आगे लिख रही हैं कि मेरे दोस्तों को प्लीज़ मेरा नमस्कार बोल दीजिए, तो ये तो बिल्कुल करना होगा। सारा पीयू, मनु, रोशनी, बबिता, स्नेहा, सोनी, वंदना, कौशल, पूर्णिमा जी, सभी लोग आपको सुन रही हैं जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। एंड ये किसका ईमेल, रोशनी रावत का भी ईमेल आ गया है, लिख रही हैं ओके जी थैंक यू। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, आप लोग तारीफ भेजते मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और ये खुशी आप तक मेरी आवाज़ में झलक के ज़रूर पहुँचती होगी, लेकिन मुझे ना अपनी तारीफ खुद पढ़ना पता नहीं, मुझे थोड़ी शर्म से आती है, तो आई होप आप समझेंगी अगर पूरा ईमेल नहीं पढ़ पा रही हूँ। रोशनी रावत ग्राम व पोस्ट बमहना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से, चंडीगढ़ से इस वक्त प्रोग्राम सुन रही हैं। बबिता राव जी, नीलू शर्मा दीदी, गुलाब शाह दीदी जी के साथ हैं, प्रोग्राम सुन रही हैं ब्रजेश सिंह दीपू। कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, कैसरगंज बहराइच से, थैंक यू। निर्मल गुप्ता लिख रहे हैं, जिंदगी चाय की तरह है, कभी फीकी कभी कड़क, लेकिन दोस्तों की महफिल और एफएम की धुन मिल जाए तो हर घूट मजेदार बन जाती है। आपका शो सुनकर उदास दिन छुट्टी पर चला गया, थैंक यू, मुझे लगता है बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि मुझे आज के दिन मिला है। आगे भी आपने बहुत खूबसूरत बातें लिखी है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला ना कि मैं पढ़ती हूँ, अपने दिल में रखती हूँ, नोट कर लेती हूँ, लेकिन ऑन एयर करना अपने आप से ठीक नहीं लगता है ना, तो

थैंक यू ग्राम बेटिया, जिला लखीमपुर खीरी से निर्मल गुप्ता जी। मुझे बहुत पसंद है आपका अंदाज, मुझे बहुत पसंद है आपकी। ओके जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा जिगरी दोस्त आतिफ नौशाद महमूदाबादी, जो अब घर परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए सऊदी अरब में है, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। ये लिख रहे हैं अजीज अहमद तिहाड़ सीतापुर से, तिहाड़ सीतापुर से। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना खूबसूरत ईमेल हमें भेजा। जावेद अख्तर साहब जी थैंक यू, मुबारकपुर आजमगढ़ से। शमशुल कमर राही बेगम रुखसार रकीबा शाहीन का नाम लेने को इन्होंने कहा है। शिवराज जी आपका ईमेल तो मैंने पढ़ लिया था, आपको याद होगा। तालिब अंसारी जी आपका भी ईमेल पढ़ लिया गया था। तो फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और आपको वो गाना सुनाते हैं जिसे सुनने का मेरा बड़ी देर से मन है। तो गुरु रंधावा के साथ थोड़ा सा थिरकने को हो जाइए तैयार।

हाँ जी, तो 9:49 हो गए हैं और साथ में हो गए हैं 43 सेकेंड्स। अपनी अपनी घड़ियां मिला लीजिए। एंड यस, मैं जानती हूँ कि आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अब ज्योति की किटी में कौन सी मजेदार बात है। तो भाई, एक चीज तो ऐसी है जिसके बिना मुझे लगता है कि आज की गर्मी की छुट्टियों की ये जो बात है अधूरी रह जाएगी। गर्मी की छुट्टी की सबसे मेजर याद पता है क्या है? मैं अपनी छुट्टियों की बात करूं अगर, वो जो जून की कड़क दोपहर, जबकि मम्मी बेचारी सोचती हैं कि थोड़ा सा सोने को मिल जाए, अपने कमरे में कूलर या फिर एसी ऑन करके सो जाती हैं और सख्त हिदायत होती है, कोई घर के बाहर पैर नहीं रखेगा, छत पर कोई नहीं जाएगा, भयंकर लू चल रही है। लेकिन भाई साहब, बच्चे जब तक वो काम ना करें जिसके लिए उन्हें मना ना किया जाए, तब तक वो इंडियन बच्चे कैसे हो सकते?

करते हैं, मतलब एटलीस्ट हम तो बिल्कुल वो वाले बच्चे थे ही नहीं कि जो कहा गया बिल्कुल वही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोर करना ही है। जहां मम्मी की आंख लगी हम चुपचाप उठे एकदम, मतलब बिल्ली भी शर्मा जाए इतना धीरे धीरे बिना आहट किए हुए। लोहे का दरवाजा खोलना, वो दरवाजा जो हमेशा खोलने में बड़ी आफत आती थी, लेकिन जब मम्मी से छिप कर कहीं जाना हो तो आराम से खुल जाता था, और फिर सीधे छत पर या फिर गली में बच्चों के संग ढेर सारी, मतलब कुछ भी खेल, उल्टा पुल्टा, गुड़िया की शादी हो रही है, क्रिकेट खेला जा रहा है, लूडो खेला जा रहा है, कुछ भी और कुछ नहीं, तो बस चक्कर मकर बातें चल रही है। कहीं अगर मम्मी की आंख खुल गई तो बस समझ लीजिए कि उसी दिन अपना तो हैप्पी वाला बर्थडे, और अगर मम्मी की आंख नहीं खुली तो वो बड़ी मासूमियत से वो कहना कि मम्मी सारे दिन बोर हो गए, टीवी देख ले। ये खूबसूरत यादें, मुझे लगता है अभी भी बच्चे इससे कुछ तो मिलता जुलता करते ही होंगे। हालांकि यस, वक्त बदल रहा है, बचपन भी बदल रहा है, चीजें भी बदल रही हैं। अब तो बहुत सारे बच्चे नानी हाउस भी नहीं जा पाते, फॉरेन टूर्स पर, फॉरेन ट्रिप्स की का जमाना जो हो गया है ना। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो छुट्टियां हैं उनकी खूबसूरती जैसे हमने एंजॉय किया, अगर वैसे बनी रहे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। रॉयल अमित यादव ने लिखा है गंगनगंज रोड भनमऊ से, नकटवा बाराबंकी से, एक वक्त के बाद बीते हुए वक्त की बातें बहुत याद आती हैं। बहुत सही बात आपने कही है, एक वक्त के बाद बीता हुआ वक्त बड़ा याद आता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अभी ये जो वक्त है ना, शायद इसी वक्त की हमने बड़ी दुआएं मांगी थी। तो जो वक्त हमारे पास है चलिए उसी को चेरिश करें, एंजॉय करें। मेरा नाम राम नरेश है, बाबूरिहा पोस्ट बरौली मालिक जिला बाराबंकी से हम FM केयर प्रोग्राम सुनते हैं। तो सदस्यों का नाम लेना चाहूंगा, अनिल कुमार, छोटे बेटे का नाम सुशील कुमार, भतीजे का नाम शिवराज। आपका कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, शिवराज ने बोला है, थैंक यू। राम नरेश जी का भी ईमेल है और इनका ईमेल पहले पढ़ लिया गया है। एमन तुम आ गए हो, नूर आ गया है, अमन नवाब संजीला से, थैंक यू। ताली बंसारी जी का ईमेल, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड राजकमल यादव बाराबंकी से लिख रहे हैं, मेरा बेटा सावन कुमार यादव डांस कर रहा है और मेरी वाइफ संगीता यादव आपको नमस्ते बोल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बॉम्बे वाइकिंग के साथ थोड़ा सा हम भी थिरक लेते हैं।

कहना क्या है जी, बस कहने को इतना ही बचा है कि चलिए इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें। आपके साथ इतनी मीठी मीठी मजेदार बातें करते हुए किस वक्त वक्त खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अब देखिए ना, अब ये टाइम आ गया है कि इस प्रोग्राम को वाइंड अप करूं। एक छोटा सा न्यूज ब्रेक होगा और न्यूज ब्रेक के उस पर हम सुनेंगे रजनीगंधा। सो स्टे ट्यून्ड। बस इतना ही कह सकती हूँ कि छुट्टियों का मजा लेते रहिए। अगर नानी हाउस नहीं गए हैं तो अब जाने का प्लान जरूर बनाइए और जुड़े रहिए FM रेनबो से। कीप स्माइलिंग, टेक केयर।

नमस्कार और सुनिए मुख्य समाचार। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। सरकार ने वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले उच्चतर शिक्षा विभाग में निदेशक के रूप में कार्यरत थे। प्रदेश सरकार ने ब्रिक्स देशों के अतिथियों के भव्य स्वागत की तैयारी की है। काशी में ब्रिक्स देशों के मेहमानों को उत्तर प्रदेश की लोक कलाओं की

झलक देखने को मिलेगी। मेहमानों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। 4 और 5 जून को वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2022 के अंतर्गत प्रवक्ता संवर्ग के 624 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया गया। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की विषयवार एवं श्रेणीवार सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। बीते 9 और 10 मई को आयोजित लिखित परीक्षा में 18 विषयों के कुल 1,92,934 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम के आधार पर कुल 2,253 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए औपबंधिक रूप से सफल शॉर्टलिस्ट घोषित किया गया है। प्रयागराज जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के साउथ मलाका अंतर्गत एक घर में 3 लोगों के शव मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 11 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
2: दस बजकर तीन मिनट और ठीक 44 सेकेंड्स। खिड़की के बाहर घनेरा अंधेरा और जून की इस उमस भरी रात में दिन भर की तपन के बाद अब जाकर पत्तों में थोड़ी सी हलचल हुई है। एक हल्की सी ठंडी हवा का झोंका खिड़की से अंदर आता है और उसी के साथ कमरे के किसी कोने से रजनीगंधा की महक चुपके से आकर आपको सहला जाती है। कुछ ऐसा ही महकता हुआ, मदहोश करता हुआ सफर रहने वाला है हमारा और आपका अगले दो घंटे तक। इस सफर में मैं हूं आपकी हम सफर, आपकी अपनी दोस्त ज्योति। और आज बस कुछ बातें होंगी, कुछ यादें होंगी और कुछ ऐसे सुर होंगे जो सीधे रूह को छूते हैं। कुछ ऐसे मानो तपती दोपहर में पवन का झोंका आपको सुकून दे जाए।

10:10 और ठीक 9 सेकेंड्स। आप खो रहे हैं रजनीगंधा के फूलों से महकते मधमाते सदाबहार नगमों के जादू में आज ज्योति मिश्रा के साथ FM रेनबो पर।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: आज की तारीख यानी कि 2 जून, वो तारीख है जिसने हमसे फिल्मी दुनिया के 2 बहुत बड़े सितारों को छीन लिया था। 2 जून को ही हम सबके चहेते और भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब

1988 में हमें छोड़कर चले गए थे। 1987 की बात है जबकि उनके सबसे अजीज दोस्त क्रांतिकारी लेखक निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। ये दोनों ही नाम ऐसे हैं जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। राज कपूर साहब ने अपनी फिल्म्स के जरिए भारतीय सिनेमा को रूस, चीन और पूरी दुनिया में एक ग्लोबल पहचान दिलाई। ये वो वक्त था जबकि इस बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल लगता था। उनकी फिल्में थोड़ी ना होती थी, वो तो होती थी आर्ट पीसेस। और मेरी इस बात से हर वो शख्स इत्तेफाक रखेगा जिसने उनकी फिल्में देखी हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हीं की फिल्म के इस गाने की दो पंक्तियां, हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियां। जी आज वो हमारे साथ नहीं है लेकिन उनकी निशानियां, उनकी फिल्में, उनका संगीत हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। तो चलिए सुनते हैं 1955 की फिल्म श्री 420 का ये खूबसूरत नगमा। शंकर जयकिशन का संगीत और मन्ना डे, लता जी की जादुई आवाज़।

रहेंगे, तुम ना रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियां। कहते हैं ना कि हम एक ना एक दिन तो इस दुनिया को छोड़कर जाने ही वाले हैं, लेकिन हम इस दुनिया को क्या देकर जाते हैं ये ही तो है जो कि सबसे ज्यादा मैटर करता है। अभी आपने सुना था हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत प्रेम गीतों में से एक प्रेम गीत। वैसे आपको शायद ही पता हो कि इस गाने में राज कपूर और नरगिस के पीछे बारिश में चलते हुए जो तीन बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, वो कौन थे? वो बच्चे थे ऋतु नंदा, रणधीर कपूर और ऋषि कपूर। वक्त का पहिया आगे बढ़ा, बच्चे बड़े हो गए और उन्हें ऋषि कपूर को राज कपूर ने बॉबी से बतौर हीरो दुनिया के सामने पेश किया। एक पिता का विश्वास, एक आर्टिस्ट का यकीन और एक बच्चे का टैलेंट, बस कहना ही क्या। ऋषि कपूर ने कितने वक्त तक लीड किया इंडियन सिनेमा को, क्या ये कहने की बात है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 1973 की फिल्म बॉबी, जो कि थी लॉन्च पैड ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया के, उसका ये खूबसूरत गाना सुनते हैं। राज कपूर का जादू इस फिल्म के हर फ्रेम में, हर गाने में उतना ही जीवंत था जितना उनके किसी और फिल्म में।

दोस्तों, राज कपूर साहब के अभिनय, उनके बेहतरीन निर्देशन, उनकी फिल्मों का जादू अधूरा सा रहता अगर उसके पीछे उनके दोस्त ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की कलम का जादू ना होता। राज कपूर साहब की आवारा श्री 420 और अभी अभी जिस फिल्म का गाना मैंने सुनाया यानी बॉबी, इन सभी कालजयी फिल्मों की अमर कहानियां और स्क्रीन प्ले अब्बास साहब ने ही लिखे थे। राज साहब बहुत गर्व से कहा करते थे कि मैं तो सिर्फ एक जिस्म हूं, मेरी फिल्मों की असली रूह, असली आत्मा अब्बास की कलम है। अब्बास साहब सिर्फ एक लेखक ही नहीं थे बल्कि एक बेहद क्रांतिकारी पत्रकार और यथार्थवादी फिल्म निर्देशक भी थे। इन दोनों दोस्तों ने मिलकर 1970 में सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा और दार्शनिक स्क्रीन प्ले तैयार किया था, फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए। ये फिल्म जिंदगी के उस गहरे फलसफे को बयां करती है कि शो मस्ट गो ऑन, चाहे दिल पर कितनी भी चोट लगी हो, चाहे जिंदगी में कितनी भी तकलीफें हों। 1987 में आज ही के दिन यानी 2 जून को अब्बास साहब हमें अलविदा कह गए। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनकी जादुई लेखनी को नमन करते हैं और सुनाते हैं ये खूबसूरत गीत मेरा नाम जोकर से।

0: हमारे साथ रहते हैं। राज कपूर साहब और ख्वाजा अहमद अब्बास की जोड़ी ने हमें कुछ ऐसे बेहतरीन नगीने दिए कि हम चाहकर भी कभी उन्हें भुला नहीं सकते। और देखिए ना, इन दोनों की दोस्ती का आलम ये कि जहां राज कपूर साहब हमें छोड़ करके गए 2 जून 1988 को, उससे ठीक एक साल पहले 1987 में 1 जून को ख्वाजा अहमद अब्बास साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज भले ही ये दोनों बड़े नाम हमारे साथ नहीं हैं, फिर भी इनकी फिल्में, इनका म्यूज़िक, इनका आर्ट हमेशा हमारे साथ रहने वाला है।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
0: दस बजकर 36 मिनट और ठीक 33 सेकेंड्स। आप हैं ज्योति के साथ और प्रोग्राम रजनीगंधा में सुन रहे हैं कुछ ऐसे गाने जो कभी हो ही नहीं सकते पुराने। स्टे ट्यून्ड।

0: 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो, मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूं, अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा।
2: मर कर भी तुमको

अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। 100.7 FM रेनबो पर हम घूम रहे हैं यादों की गलियों में, सुनते हुए कुछ दिलचस्प अफसाने और साथ ही ऐसे सदाबहार गाने जो कभी हो नहीं सकते पुराने, प्रोग्राम रजनी गंधा में। और आज इस प्रोग्राम में आपकी हम सफर है, आपकी अपनी दोस्त ज्योति मिश्रा।

0: दादी।
1: वो यहीं पर।
2: यहीं?
1: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

टाइम हुआ है 10:55 और ठीक 37 सेकंड्स और ये वक्त है रजनीगंधा के फर्स्ट पार्ट को वाइंड अप करने का. इस गाने के बाद एक छोटा सा न्यूज ब्रेक और फिर सजेगी रजनीगंधा की ये महफिल. बस थोड़ा सा इंतजार.

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार और सुनिए मुख्य समाचार। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278

71 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं बल्कि तीव्र गति से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। वाराणसी मंडल में वृक्षारोपण अभियान 2026 के तहत 1,85,00,000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान जुलाई के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा और इसमें 28 विभागों के साथ आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। जीरो फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट अभियान के अंतर्गत अमरोहा में आज शाम नेशनल हाईवे पर नो पार्किंग में खड़े वाहनों के विरुद्ध पुलिस क्षेत्राधिकारी धनोरा, परिवहन अधिकारी, यातायात प्रभारी और थाना गजरौला टीम द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 15 चालान किए गए तथा लगभग 1,20,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। एक वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की गई। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे रात्रि 12 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर। फिर रात को फुर्सत के वो पल,
1: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. Gyarah bajkar 4 minute aur theek 24 seconds. Ek baar phir aapke saath hai aapki apni dost Jyoti Mishra. Lekar program Rajni Gandha ka dusra part. तो क्या आप भी हैं तैयार मेरे साथ वहां तक चलने के लिए जहां तक हवा चले और जहां तक घटा चले।

11:09 मिनट और ठीक 45 सेकंड्स आप है रजनीगंधा में आज ज्योति के साथ। अगला गाना है 1968 की फिल्म किस्मत से, संगीत ओपी नैयर साहब का। और जब कभी भी ओपी नैयर साहब का जिक्र होता है तो मन में चंचल धुनों की आहट खुद ब खुद होने लगती है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी फनकार की पहचान उसकी आइडेंटिटी सिर्फ उसकी एक तरह की धुनों से नहीं हो सकती, बल्कि उसकी वर्सटैलिटी, उसकी विविधता भी होती है। 1968 की फिल्म किस्मत में नैयर साहब ने अपनी उसी विविधता का खूबसूरत परिचय दिया। तेज रिदम और थिरकती धुनों के लिए मशहूर इस संगीतकार ने यहाँ सुरों को ठहराव दिया, एहसासों को नजाकत दी और खामोशी को भी गुनगुनाने का हुनर बख्श दिया। एस एच बिहारी के दिलनशी अल्फाज और नैयर साहब की धनी सधी हुई धुन और बना एक ऐसा नगमा जो सुनने वाले के दिल में धीरे धीरे धीरे धीरे उतरता है और फिर वहीं पर ठहर जाता है। तो और इंतजार नहीं कराऊंगी, सुनाती हूँ आपको ये खूबसूरत गाना आंखों में कयामत के का।

हर एक रात को महताब देखने के लिए, हर एक रात को महताब देखने के लिए मैं जागता हूँ तेरा ख्वाब देखने के लिए।

जिस तरह शाम का हो गुमा सुबह पे, जिस तरह शाम का हो गुमा जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

0: रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: रात धीरे धीरे गहरा रही है। इस सफर में आप अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं ना? कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मेरे पास आपको सुनाने के लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो हैं ही, कुछ सुपरहिट नंबर्स भी।

मेरे संग संग चलते हुए आप आ गए हैं उस मोड़ पर जहां घड़िया कह रही है कि भाई रात गहरा रही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरे पास बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने को, ढेर सारे गाने और इंटरेस्टिंग बातें भी। ये सॉन्ग जो अभी आपने सुना था, ये था 1985 की फिल्म बाबू से, और इस फिल्म में थे दीपक पराशर और रति अग्निहोत्री। रति अग्निहोत्री यानी कि एक ऐसा चेहरा जिसने लंबे अरसे तक हिंदी फिल्मी दुनिया पर राज किया। वैसे उनकी पहली फिल्म, पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी पता है आपको? जी हाँ, मैं जानती हूँ, हिंदी फिल्मों के चाहने वाले कैसे भूल सकते हैं रति अग्निहोत्री की पहली फिल्म यानी एक दूजे के लिए को, 5 जून 1981। हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज एक ऐसी तारीख जब एक प्रेम कहानी ने पूरे देश की धड़कनों पर अपना नाम लिख दिया था। यही वो तारीख थी जबकि एक दूजे के लिए हुई थी रिलीज। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाई बल्कि प्यार की भाषा को एक नया एहसास भी दिया। निर्देशक के बालाचंदर अपनी चर्चित तेलुगु फिल्म मारु चरित्र की कहानी को हिंदी दर्शकों तक लेकर आए और उनके साथ साथ आए कमल हासन, रति अग्निहोत्री, माधवी और एसपी बाला सुब्रमण्यम भी। इन सब की ये पहली हिंदी फिल्म थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दक्षिण से आई हुई ये प्रेम कहानी पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर इस तरह से राज करेगी। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने इसे सिर आंखों पर बिठा लिया। रिजल्ट ये कि एक दूजे के लिए ना सिर्फ एक हिट फिल्म है बल्कि ये एक ऐसी याद है जो कि उस एरा की आज भी मेमोरीज को उतना ही फ्रेश महसूस कराती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इसी फिल्म का एक ऐसा गीत जिसके सुरों में मोहब्बत है, 16 बरस की मासूमियत है और दिल को छू लेने वाली एक खामोश सी कसक भी।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: आ की तुझ बिन इस तरह ए दोस्त घबराता हूँ मैं, आ की तुझ बिन इस तरह ए दोस्त घबराता हूँ मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूँ मैं।

11:42 और ठीक 52 सेकेंड्स, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा, आज ज्योति मिश्रा के साथ।

0: जान हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

मेरे साथ चलते चलते आप उस मोड पर आ गए हैं जब आपकी पलकें भी नींद से थोड़ी सी बोझिल तो हो रही होगी, है ना। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप मीठे मीठे संगीत को सुनने के बाद सोते हैं तो ख्वाब भी अच्छे आते हैं और नींद भी सुकून भरी आती है। तो चलिए इसी बात पर एक और बेहद खूबसूरत गाना आपकी नजर करती हूँ। रफी साहब और लता दीदी की आवाज में प्रोफेसर फिल्म का ये खूबसूरत सॉन्ग

11:52 हो गए हैं और साथ में हो गए हैं 25 सेकंड्स भी। आप बने हुए हैं ज्योति के साथ, रजनीगंधा के इस मीठे मदमाते मदहोश करते सफर में, सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो पर।

रात के 12 बजने वाले हैं और ये वक्त है कि अब आपसे विदा ली जाए। उम्मीद करती हूँ आज का रजनीगंधा आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए FM रेनबो सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी जिंदगी को रजनीगंधा के फूलों की तरह महकाते रहिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती की डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्ष से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, इन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पशु संरक्षण एवं पशु कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। अवैध पशु परिवहन के मुद्दे पर जिलाधिकारी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रात्रिकालीन विशेष निगरानी और पुलिस के सहयोग से नियमित चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। अब सुनिए।

मौसम का हाल। लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग एक डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा और ये सामान्य था। सूर्योदय 5:12 पर और सूर्यास्त 6:57 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे प्रातः 7:00। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। मध्यरात्रि के 12:02 और ठीक 20 सेकंड्स हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। प्रातः 5:50 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।